मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948, वैशाख माह की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 मई 2026। सुबह के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

वैशाख माह की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 मई 2026, सुबह के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा सुरक्षा, SME, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का

0: भी जिक्र किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें तथा मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरका परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई 6ठे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जाने, हिए तराजू तौल के तब मुख बाहर आने।

प्रभु तेरी महिमा परम अपार, जाको मिलत नहीं कोई पारा, सकल जगत को आप रजा में सबका पालनहारा।

0: घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। प्रीति बहुत संसार में नाना विधि की सो होए, उत्तम प्रीति सुजानिए हरि नाम से जो होए।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। विचार बिंदु कार्यक्रम में लीजिए सुनिए धर्म के संबंध में विचार।
1: एक था बिच्छू, नदी में बहा जा रहा था वो। एक साधु ने देखा तो हाथ बढ़ाकर खींच लिया। बिच्छू ने तुरंत उन्हें डंक मार दिया। हाथ हिला और बिच्छू फिर पानी में गिर पड़ा। साधु ने उसे फिर हाथ बढ़ाकर खींच लिया। बिच्छू ने फिर डंक मार दिया। पानी में वो फिर गिरा। साधु ने उसे खींच लिया तो बिच्छू ने फिर डंक मार दिया। फिर वो पानी में गिरा तो साधु ने उसे खींचा। उसने फिर डंक मारा पर साधु ने फिर उठा लिया। एक आदमी ने पूछा, बाबा आप ये क्या करते हैं? बिच्छू बार बार काट लेता है, फिर भी आप बार बार उसे उठा लेते हैं। मरने न दीजिए दुष्ट को। साधु बोले, बेटा डंक मारना उसका धर्म है, बचाना मेरा धर्म। वो अपना धर्म नहीं छोड़ता तो मैं ही अपना धर्म क्यों छोड़ दूं? हर प्राणी का अपना अपना धर्म होता है, हर मनुष्य का अपना अपना धर्म होता है, हर चीज का अपना अपना धर्म होता है। डंक मारना बिच्छू का धर्म है, दया करना आदमी का, जलाना आग का धर्म है, बुझाना पानी का, खुशबू देना फूल का धर्म है, स्नेह देना माँ का। क्षिति जल पावक गगन समीरा, सबका अपना अपना धर्म है। पशु और पक्षी, चर और अचर, सबका अपना अपना धर्म है। सब अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। हमारा जो धर्म है उसका हम पालन करें, ये हमारा कर्तव्य है। इस तरह देखें तो धर्म का अर्थ होता है

0: कर्तव्य। पर धर्म इतना ही नहीं है, धर्म का अर्थ इससे कहीं व्यापक है। धर्म में कर्तव्य तो आता ही है, टिकाऊपन भी आता है, पवित्रता भी आती है, विश्वास भी आता है, श्रद्धा भी आती है। मतलब धर्म बहुत व्यापक शब्द है, उसके भीतर वे सब गुण आ जाते हैं जो हर मनुष्य में होने ही चाहिए, जैसे सत्य, प्रेम, करुणा, क्षमा, इंद्रियों का संयम, स्वच्छता, पवित्रता, नम्रता आदि। धर्म का अर्थ है हर प्राणी से प्रेम। धर्म का अर्थ है ऐसा आचरण जिससे अपने को भी लाभ हो, दूसरों को भी। धर्म का अर्थ है सदाचार, अच्छा आचरण। धर्म का अर्थ है सत्य, जीवन में ईमानदारी बरतना, चोरी नहीं करना, किसी को सताना नहीं, किसी को धोखा नहीं देना। धर्म का अर्थ है संयम, अपने को काबू में रखना, किसी भी इंद्रिय को इधर उधर भटकने न देना, दूसरों को क्षमा करना। धर्म का अर्थ है करुणा, सब पर दया करना, खुद कष्ट उठाकर भी दूसरों को सुख पहुंचाना। धर्म शब्द बहुत व्यापक है, उसका ठीक ठीक पर्याय मिलना कठिन है। अंग्रेजी में उसे रिलिजन कहते हैं। रिलिजन लैटिन भाषा का शब्द है, उसका अर्थ होता है फिर से बांधना या संबंध जोड़ना। धर्म का पूरा अर्थ उसमें नहीं आता। इस्लाम शब्द सल्म शब्द से बना है, उसका अर्थ होता है शांति, ईश्वर की शांतिपूर्ण स्वीकृति, उसके लिए आत्मत्याग करना, ईश्वर की शरणागति, अहंकार को मिटाना और सर्वात्म भाव स्वीकार करना। वेद में धर्म शब्द आता है सबको धारण करने वाली वस्तु के लिए, सबको एक सूत्र में बांधने वाली वस्तु के लिए। रिलिजन का भी वैसा ही अर्थ है, इस्लाम भी उसी दिशा में जाता है। घट घट में बसे हुए तत्व को जानना, आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना ही तो धर्म है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को पा लेता है वो सब कुछ पा लेता है।
1: धर्म के संबंध में विचार, अभी आप सुन रहे थे विचार बिंदु कार्यक्रम में। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कृषि जगत कार्यक्रम में सुनिए अनिल कुमार से जय कृष्ण नारायण की बातचीत। विषय है कृषि रसायनों के प्रयोग में सावधानियां।

0: किसान भाई खेती बाड़ी में बहुत से कीटनाशी बहुत से रसायनन के प्रयोग होते हैं, लेकिन कोनो भी रसायन हो के प्रयोग में निश्चित रूप से कुछ सावधानी बरते के चाहिए ताकि कोनो हानि न हो पावे स्वास्थ्य के प्रति और ठीक ढंग से फसलन पर उकर असर पड़े। आज जोन बातचीत का विषय है कृषि रक्षा रसायनों के प्रयोग में सावधानियाँ, ये पे जानकारी देव दे विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच में श्री अनिल कुमार जी अलबट है। आप विशेषज्ञ बैठे भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत हो। अनिल कुमार जी, अपने किसान भाई बदे आपसे हम जानल चाहब कि कृषि रक्षा रसायन कौन कौन से हैं और उनके प्रयोग में सावधानियां का बाटी जो उन किसान भाई अपने खेतन में प्रयोग करते हैं।
1: किसान भाइयों, कृषि रक्षा रसायन का प्रयोग मुख्य रूप से 6 स्थितियों में किया जाता है।
0: जी
1: भूमि शोधन के रूप में, बीज शोधन के रूप में, कीटों के नियंत्रण के लिए, रोगों के नियंत्रण के लिए और खरपतवार नियंत्रण के लिए तथा अन्न भंडारण में सुरक्षित रखने के लिए।
0: जी जी
1: इन
0: मतलब
1: छह स्थितियों में किसान भाई

0: बौधा या मुख्य रूप से इन्हीं स्थितियों में रसायनों का प्रयोग किया जाता है।
1: जी जी, तो क्रम से के बताएं कि कैसे कैसे हमें सावधानी बरतें हैं।
0: ध्यान देने योग्य बात यह है कि चाहे जिस स्थिति में कृषि रक्षा रसायन का प्रयोग करना हो तो बहुत ही सोच समझकर सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। यदि हम सावधानी नहीं रखेंगे तो किसान भाई जन धन का नुकसान उठाना पड़ सकता है। मुख्य रूप से कीटों के नियंत्रण के प्रयोग में जब हम रसायनों का प्रयोग करें तो क्या क्या सावधानी रखें, किसान भाई इस चीज़ को विशेष ध्यान दें। कीटनाशकों का प्रयोग तभी करना चाहिए जबकि नासी जीवों की संख्या
1: जी
0: आर्थिक क्षति स्तर के पार न कर जाए। माने ये देख लें कि जब हम रसायन का प्रयोग करने जा रहे हैं कीटनाशी नियंत्रण हेतु,
1: हाँ,
0: तो कीटों का प्रकोप हमारे जो रसायन प्रयोग करने जा रहे हैं उससे अधिक,
1: हाँ,
0: अगर नुकसान मालूम पड़ता है तो ही प्रयोग करें,
1: बिल्कुल
0: अन्यथा न करें।
1: हाँ,
0: कीटनाशकों का प्रयोग केवल आवश्यकता होने पर ही करना चाहिए।
1: जी जी,
0: केवल उन्हीं कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए जो सिर्फ हानिकारक कीटों को मारते हैं।
1: हाँ,
0: हमारे फसल के
1: लाभदायक
0: कीट
1: हैं
0: उनको न मारते हों। कीटों का जैविक नियंत्रण कारकों का कोई नुकसान न कर पाए,
1: हाँ,
0: ऐसे
1: हाँ,
0: कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए
1: जी।
0: एक से अधिक कीटनाशकों को एक साथ मिलाकर के प्रयोग नहीं करना चाहिए,
1: मतलब एक साथ कई कीटनाशकों के प्रयोग से अपने किसान भाई बचें जी।
0: कीटनाशकों का प्रयोग सही समय पर करना चाहिए
1: जी।
0: देख लें किसान भाई कि इस समय हमारे खेत में कीटों का प्रयोग अधिक है जो नुकसान अधिक पहुंचा सकते हैं, तभी करें। पहले या बाद में करने से इसका कोई फायदा नहीं होगा। कीटनाशकों के छिड़काव में पानी की सही मात्रा का प्रयोग करें। पानी की मात्रा कम होने पर छिड़काव नहीं सही हो पाता है तथा नुकसान उठाना पड़ता है। कीटनाशकों के प्रयोग के समय हवा के बहाव को ध्यान में अवश्य रखें।
1: जी जी,
0: हवा के विपरीत दशा में अगर हम कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे तो वो छिड़कने वाले आदमी के
1: चेहरा पे
0: पड़कर के नुकसान कर
1: जी,
0: सकता
1: है, स्वास्थ्य के लिए हानिकर हो
0: जी, जी जी।
1: हवा के रुख ही सन देख लें कि अपनी तरफ हवा ना आवत हो बल्कि
0: जी,
1: उल्टा जात हो
0: जी
1: जी।
0: छिड़काव के बाद जब कीटनाशकों का प्रयोग कर लें तो हाथ पैरों को साबुन से धोना चाहिए, स्नान करना चाहिए ताकि हमारे शरीर के ऊपर किसी प्रकार से कीटनाशक का प्रभाव पड़ा हो,
1: हाँ,
0: तो साफ हो जाए। तो
1: कभी हाथ में भी दस्ताना वगैरह कुछ लगाओ चाहिए।
0: जी जी जी, कीटनाशकों के प्रयोग के समय बीड़ी,
1: हाँ,
0: या लोग तंबाकू का सेवन एकदम नहीं
1: करें,
0: करना
1: बिल्कुल
0: चाहिए।
1: न करें।
0: कीटनाशकों का छिड़काव करते समय आंख पर चश्मा,
1: हाँ,
0: तथा मुंह पर कपड़ा,
1: हाँ,
0: अवश्य बांधना चाहिए। केवल उन्हीं कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए जो कि भारत सरकार की रजिस्ट्रेशन कमेटी से पंजीकृत हों।
1: हाँ हाँ, सरकार द्वारा जो संस्तुत कीटनाशक है वही का प्रयोग करें,
0: या निकट के विश्वविद्यालय या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित हों।
1: जी,
0: कीटनाशकों को खरीदते समय उन पर लगे लेबल, ISI आदि चिन्हों के बनने व असर समाप्त होने की तिथि को अवश्य पढ़ लेना चाहिए।
1: एक्सपायरी डेट जरूर देख ले भैया,
0: हाँ, कि हमारे प्रयोग करने का भी इसका दिनांक, तारीख, तिथि है कि नहीं,
1: हाँ, हाँ,
0: और लेबल में ISI या सरकार द्वारा प्रमाणित ये दवा है कि नहीं।
1: बहुत से दुकानदार भैया पुरानी दवा भी रखे रहते हैं कि फायदा कमाए बदे, ऐसे देख ले चाहिए कि एक अवधि खत्म हो कि अभी हो।
0: हाँ, पर्यावरण के लिए जो कीटनाशक उपयुक्त तो हों,
1: हाँ,
0: उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए।
1: जी जी,
0: क्योंकि बहुत से ऐसे कीटनाशक हैं जो हमारे पर्यावरण में प्रदूषण फैलाते हैं और हमारे जन धन पशुधन सबको नुकसान पहुंचाते हैं।
1: जी जी,
0: दूसरी स्थिति आती है कि किसान भाई खरपतवार नियंत्रण हेतु भी रसायनों का प्रयोग करते हैं।
1: जी,
0: तो खरपतवार नियंत्रण करने हेतु जब रसायनों का प्रयोग करें तो किसान भाई क्या क्या सावधानी रखें। रसायन का घोल बनाने के लिए साफ पानी का प्रयोग हमेशा करना चाहिए।
1: जी जी,
0: यदि साफ पानी नहीं रहेगा तो आपके रसायन के घोल की गुणवत्ता खराब हो सकती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और वो
1: मतलब गंदा या माटी वाला पानी न रहे।
0: जी, रसायन का घोल बनाने के पूर्व कंटेनर या पैकेट जिसमें वो हम रसायन खरीद रहे हैं,
1: जी,
0: यदि घोल के रूप में है तो कंटेनर में है,
1: हाँ,
0: यदि पाउडर के रूप में है तो पैकेट के रूप में प्राप्त होगा,
1: हाँ,
0: उनके लीफ प्लेट उस पर

0: लगा रहता है, उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए
1: हाँ
0: कि ये दवा सही है कि नहीं है, तभी
1: जी
0: उसका प्रयोग करना चाहिए।
1: हाँ
0: रसायन का घोल बनाते समय हाथ में दस्ताना, आंख पर चश्मा, नोज मास्क, नाक पर कपड़ा बांध लें, नोज मास्क नहीं उपलब्ध है तो टोपी एवं संपूर्ण शरीर को ढकने वाला कपड़ा प्रयोग करना चाहिए, एवं हवा के विपरीत बैठकर या खड़े होकर घोल नहीं बनाना चाहिए।
1: जी
0: दवा को अच्छी तरह पानी में घोलने के लिए लकड़ी के डंडे का प्रयोग करना चाहिए। रसायन का छिड़काव हवा के विपरीत नहीं करना चाहिए, एवं हाथ में दस्ताना, आंख पर चश्मा, नोज मास्क, टोपी एवं संपूर्ण शरीर को ढकने वाले कपड़े तथा जूते का प्रयोग करना
1: जी
0: चाहिए।
1: जी लड़का के दिला भी आसपास न रहे।
0: जी जी छिड़काव करते समय धूम्रपान अथवा कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। कंटेनर या पैकेट जिसमें हमने
1: बर्तन भैया कैसन रहे चाहिए जोने में कि ओके घोल बनावल जाए।
0: कंटेनर या पैकेट
1: हाँ
0: जिसमें अवशेष दवा बच जाती है, हम प्रयोग करते हैं
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: कुछ दवाएं हमारी बच जाती हैं,
1: जी
0: उसको अच्छी तरह से बंद कर स्टोर में हवादार सूखे स्थान पर बच्चों से दूर रखना चाहिए।
1: मतलब जहाँ लड़का के देला न पहुँच पावे। हाँ
0: बर्तन जैसे हम दवा छिड़कते हैं तो हमारे कई प्रकार के स्प्रेयर आते हैं,
1: हाँ
0: पीठ पर रखने वाला आता
1: हाँ
0: है, पैर
1: हाँ
0: से चलाने वाला आता है।
1: जी जी
0: पीठ पर रखने वाला स्प्रेयर बहुधा बहुत ही सामान्य होता है, जो एक ही आदमी आसानी से प्रयोग कर
1: जी
0: सकता
1: जी
0: है।
1: हाँ
0: उसमें 15 लीटर पानी आता है।
1: हाँ
0: पहले हमको अपने स्प्रेयर को, मशीन को अच्छी तरह से
1: चेक
0: साफ
1: कर लो
0: सफाई
1: चाहिए
0: कर लेना
1: जी
0: चाहिए, उसके नोजल और सब चेक कर लेना चाहिए कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तभी उसके अंदर घोल बना करके दवा का प्रयोग करना। दवा के प्रयोग के बाद खाली कंटेनर या पैकेट को घरेलू उपयोग में कभी नहीं लाना चाहिए। दवा के प्रयोग के बाद खाली कंटेनर या डिब्बा को नष्ट कर ऊंचे स्थान पर जमीन में गाड़ देना चाहिए।
1: शाम के ये छिड़काव करें चाहिए कि सुबह। हाँ
0: नहीं, सुबह तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, दोपहर के बाद करना चाहिए,
1: अच्छा अच्छा
0: क्योंकि सुबह जो है मधुमक्खी या हमारे जो लाभदायक कीट हैं वो
1: हाँ
0: फसलों पर ज़्यादा आते हैं।
1: बिल्कुल भैया। भैया अनिल कुमार जी, आप कृषि रक्षा रसायनों के प्रयोग में सावधानियां पे किसान भाइयों के बहुत अच्छी जानकारी देना। आपका जानकारी देव देव बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अनिल कुमार से जय कृष्ण नारायण की बातचीत। विषय था कृषि रसायनों के प्रयोग में सावधानियां। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर अमिताभ उपाध्याय को। विषय है एड्स जानकारी ही बचाओ।
1: तो नमस्कार, आज के कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं और हम HIV एड्स पर आधारित विषय आपके लिए लाए हैं। उसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित कर रखा है डॉक्टर अमिताभ उपाध्याय को। आप वरिष्ठ त्वचा एवं एड्स रोग विशेषज्ञ हैं प्रयागराज में। डॉक्टर साहब का स्वागत है स्टूडियो में।
2: सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन, प्रणाम।
1: तो डॉक्टर साहब, एक टर्म है HIV, क्या है?
2: HIV को अगर हम विस्तृत रूप में देखें, इसका फुल फॉर्म देखें, तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अगर इसको हिंदी में परिवर्तित करें, ह्यूमन मीन्स मानव, इम्यूनो मीन्स प्रतिरोधी क्षमता, शरीर की जो रोग से लड़ने की क्षमता होती है, डेफिशिएंसी मतलब क्षरण, और वायरस मतलब विषाणु, यानी वो विषाणु जो शरीर में प्रवेश करता है तो मानव की प्रतिरोधी क्षमता को दिन पे दिन क्षरित करता रहता है, उसका क्षरण करता है,
1: इम्यूनिटी कम करता है। जी, तो एक दूसरा टर्म है एड्स। HIV एड्स में कोई रिलेशन है या आपस में कोई तालमेल है इनका?
2: ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आम जनता में HIV और एड्स
1: एक ही चीज
2: दोनों को समकक्ष रखा जाता है, एक ही सिक्के का दो पहलू माना जाता है भी, पर इसमें बहुत फर्क है।
1: जी,
2: जब मानव के शरीर में ये वायरस प्रवेश करता है जिसको हम HIV कहते हैं, तो मानव HIV पॉजिटिव कहलाता है, यानी कि वो इस वायरस के

0: प्रभाव से ग्रसित है।
1: ग्रसित है जी।
0: ये वायरस मैंने जैसा बताया करता क्या है कि शरीर में धीरे धीरे धीरे धीरे रोग से लड़ने की क्षमता को कम करता रहता है, और एक समय ऐसा आता है जबकि पीड़ित व्यक्ति किसी भी रोग से लड़ने में अपने को अक्षम असहाय पाता है। वो अवस्था अगर मोटे तौर पे कहें तो ये एड्स होती है। हालांकि एड्स की कई परिभाषाएं हैं, पर एक आम जनता के लिए समझने की बात यही है कि जब रोग से लड़ने की क्षमता इतनी प्रभावित हो जाए कि किसी रोग से ना लड़ पाए, बहुत सामान्य रोग भी उसको परेशान करता रहे, प्रभावित करता रहे, तो वो अवस्था एड्स की अवस्था कहलाती है।
1: तो इसका फुल फॉर्म शायद एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी है
0: बिल्कुल सही बताया आपने, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम।
1: जी,
0: एक्वायर्ड मतलब जो हम अर्जित करते
1: कर
0: हैं,
1: चुके हैं।
0: इम्यूनो मीन्स प्रतिरोधी क्षमता, डेफिशियंसी में क्षरण, और सिंड्रोम मतलब जब ये कई अंगों को एक साथ प्रभावित करे। इस वायरस का प्रभाव लगभग शरीर के हर अंग पे पड़ता है। जब कई अंग एक साथ प्रभावित होना शुरू होते हैं उस बिंदु पे हम कहते हैं कि ये सिंड्रोम है,
1: अच्छा, एड्स से पीड़ित व्यक्ति है
0: एड्स से पीड़ित व्यक्ति है।
1: तो इसका संक्रमण होता कैसे है?
0: इसके संक्रमण के चार मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण कि असुरक्षित यौन संबंध का होना।
1: जी
0: तो इसे समझना क्या है हमको कि जब भी आपका एक्सपोजर हो, कहीं पे शारीरिक संबंध बनता हो, तो पूरे प्रिकॉशन के साथ इसको करें। दूसरा चीज, किसी का ब्लड की ट्रांसफ्यूजन हुआ हो और वो ब्लड ऐसा हो जो कि एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति का हो, तो ये 100% पक्का है कि जिसको ये ब्लड दिया गया है उसको एचआईवी हो ही जाएगा।
1: तो डॉक्टर साहब, जो ब्लड वाली एजेंसियां होती होंगी तो उनका भी तो दायित्व बनता है कि वो चेक करके ब्लड दें।
0: बिल्कुल, मैं यही बताने वाला था आपको कि जब भी आपको ब्लड लेना हो तो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक से ही लें। इधर उधर से खरीदेंगे तो उसमें ऐसे कई इन्फेक्शन के मिलने की, एचआईवी के अलावा कई इन्फेक्शन जो कि ब्लड के थ्रू जाते हैं
1: जी
0: वो भी आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। तो जब भी ब्लड ले हमेशा वहां से ले जो सरकार के द्वारा अधिकृत की गई हो। तीसरा कारण है, यदि माँ पॉजिटिव है
1: हाँ,
0: तो माँ से बच्चे में ये ट्रांसमिट हो सकता है।
1: अच्छा।
0: पर इस बात को याद रखना चाहिए कि हर पॉजिटिव माँ अपने बच्चे को पॉजिटिव नहीं पैदा करती है। 100 पॉजिटिव माताएं हैं तो 35 में ही आने की चांसेस रहते हैं।
1: अच्छा।
0: अब सरकार ने हर उस महिला को जो कि अपने गर्भावस्था के दौरान सरकारी अस्पताल में जा रही है तो उसका एचआईवी का टेस्ट किया जाता है, यह मालूम करने के लिए कि अगर उसको एचआईवी है तो कम से कम बच्चे को हम बचा सकें। एक कारण मैं और
1: पॉजिटिव।
0: बता दूं जो बहुत महत्वपूर्ण है, और खासतौर नॉर्दर्न स्टेट्स में
1: जी,
0: और हमारे यूपी में भी कई बार
1: जरूर।
0: देखने में आया है कि गांव में जो डॉक्टर्स हैं एक ही इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं कई
1: अच्छा,
0: मरीजों को सुई
1: बारी
0: देने
1: बारी
0: के
1: से।
0: लिए। अगर कोई पॉजिटिव व्यक्ति का ब्लड उस इंजेक्शन में आया है और अगले व्यक्ति में गया उस इंजेक्शन के थ्रू, तो उसके पॉजिटिव होने के भी चांसेस
1: चांसेस
0: रहते
1: बढ़
0: हैं।
1: जाते हैं जी।
2: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अमिताभ उपाध्याय को। विषय था एड्स, जानकारी ही बचाओ।

7 बजे सुनिए श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। फिल्मों से लिए गए भजन का आनंद लीजिएगा 7:10 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 7:30 पर पंडित कार्तिक कुमार का सितार वादन, 12:15 पर उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का ख्याल गायन और 10:30 पर संगीता शंकर का वायलिन वादन सुनवाया जाएगा। 8:45 पर सुनेगा कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। 9:50 पर और 7:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा।

10:05 पर कार्यक्रम होगा वॉइस ऑफ प्रयागराज। आज का विषय है साइबर सुरक्षा और युवाओं की जागरूकता। 10:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनेगा NCERT। 11:00 सुनिए एक ही कलाकार पर आधारित फिल्म संगीत का

12:30 पर श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम होगा आपकी पसंद। 1:15 पर गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में जायका के साथ सुनिए भोर। दोपहर 2:30 पर लोकगीत का कार्यक्रम सुनेगा। शाम 5 बजे नन्हे मुन्ने बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया। 5:15 पर युवजन का कार्यक्रम होगा युवाड़ी। 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में कमलेश चंद्र यादव और साथी के गाए लोकगीत के साथ सुनेगा अनिल कुमार श्रीवास्तव का लोकभाषा कविता पाठ। 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में सुनिए विश्व संग्रहालय दिवस पर विशेष बातचीत। 8 बजे वार्ता सुनवाई जाएगी, डॉक्टर अमिताभ उपाध्याय से की गई बातचीत, विषय है एड्स का टीकाकरण। 8:30 पर कानून और हम कार्यक्रम होगा, गजलों पर आधारित कार्यक्रम सुनेगा कहकशा। 9:30 पर ये थी रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः सुरेश चंद शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गतरात्रौ गोथेनबर्ग इत्यत्र स्वीय स्वीडिश समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यमुना साकं संवादं विहितवान्। श्री मोदी द्विदिवसीय स्वीडन यात्रान्तर्गतं गतदिने गोथेनबर्ग इत्यत्र संप्राप्तवान्। भारत स्वीडन देशयोः संबंधेषु मोदिनः असाधारण योगदानाय दूरदर्शी नेतृत्व सम्माने च प्रधानमंत्री श्री मोदी रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रेड क्रॉस इत्यनेन सम्मानेन सभाजितवान्। प्रधानमंत्री मोदी सह प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्तांतर्गतम उभौ नेतारौ भारत स्वीडन संबंधानां समेषां पदक्षेपाणां समीक्षामपि कृतवन्तौ। उभौ नेतारौ व्यापार निवेश प्रविधि नवाचार हरित परिवर्तनम अंतरिक्ष रक्षा अनुसंधानम समेत्य नैकेषु विषयेषु चर्चितवन्तौ।

0: तौ स्वीय संबोधने श्री मोदी आतंकवादम आलोचयन नैकेषु विषयेषु विस्तृतेण वक्तव्यं प्राकटितवान्। आतंकवादं विरुध्य संघर्षे स्वीडिश प्रधानमन्त्रिणः समर्थनाय आभारमपि श्री मोदी प्रकाशितवान्।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना स्वीडिश समवायाः आमन्त्रिताः। गोथेनबर्ग इत्यत्र प्रमुख स्वीडिश समवाय प्रमुखैः सह वार्तान्तर्गतं श्रीमोदी स्वीडिश समवायान् विनिर्माण हरित हाइड्रोजन अभियानं स्वच्छोर्जा अन्येषु क्षेत्रेषु च स्वीयोपस्थिति संवर्धनाय आग्रहमपि कृतवान्। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य स्वीय यात्रायाः चतुर्थे चरणे नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। भारत नॉर्डिक शिखर

0: में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना स्वीडिश समवायाः आमन्त्रिताः गोथेनबर्ग इत्यत्र प्रमुख स्वीडिश समवाय प्रमुखैः सह वार्तान्तर्गतं श्रीमोदी स्वीडिश समवायान् विनिर्माण हरित हाइड्रोजन अभियानं स्वच्छोर्जा अन्येषु क्षेत्रेषु च स्वीयोपस्थिति संवर्धनाय आग्रहमपि कृतवान्। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी अद्य स्वीय यात्रायाः चतुर्थे चरणे नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय अथ द्विपक्षीय वार्ताभ्यः श्रीमोदी अद्य नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नॉर्वे इत्यत्र एषा प्रथमा यात्रा स्यात्। श्रीमोदी राजा हेराल्ड पंचम इत्यमुना अथ रानी सौम्या इत्यनया साकं च मेलनं कुर्यात्। श्रीमोदी तत्रत्य प्रधानमन्त्रिणा जोनास गहरस्टोरे इत्यमुना साकं द्विपक्षीयां वार्तां कुर्यात्। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वे केरलम शासनस्य शपथग्रहणम् अद्य स्यात्। कांग्रेस दलस्य नेता वीडी सतीशन अद्य तिरुवनन्तपुरम इत्यत्र शपथवचनं स्वीकुर्यात्। कांग्रेस दलेन सतीशन इत्यसौ केरल प्रदेशस्य अग्रिम मुख्यमंत्री रूपेण समुद्घोषितः। कांग्रेस दलस्य नेतृत्व युतेन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक ग्रंथि युतेन तत्र शासन विरचनं स्यात्। केन्द्रीयः गृह सहकारिता मन्त्री अमितशाहः गुजरात प्रदेशस्य गांधीनगरे 700 कोटि मितानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। स्वीय द्विदिवसीय यात्रावधौ गतदिने गांधीनगर नगर निगमस्य 100 कोटि मितानां विकास कार्याणां शुभारम्भमपि श्रीशाहः विहितवान्। एतत् पूर्वं प्रथमे दिने श्रीशाहः सूचना केन्द्रस्य उद्घाटनं च कृतवान्। श्रीशाहः एआई तथा डीपटेक इत्येतौ भविष्यस्य अर्थव्यवस्थायाः मुख्य स्तंभौ इति वर्णितवान्।
2: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
1: अन्ते च क्रीडा वार्तासु आईपीएल इत्येतस्यां क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये द्वन्द्वं स्यात् इति वार्ताः।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्मों से लिए गए भजन का ये कार्यक्रम। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ से मसाल फिल्म का ये खूबसूरत सा भजन जयदेव अख्तर के

लंका से विदा होने की घड़ी है। पुष्पक विमान उत्तर दिशा में उड़ रहा है। ऊंचे सिंहासन पर सीता सहित श्री राम विराजमान हैं। वे जनक नंदिनी को वे स्थान दिखाते हैं जहां मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण आदि का वध हुआ, वो स्थल जहां से सेतु बांधा गया, वो भी जहां रामेश्वर महादेव की स्थापना की गई।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। आज आपने इसका 391वां भाग सुना। संगीत सतीश भाटिया का था। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्मों से लिए गए भजन। लता मंगेशकर की आवाज में सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का ये खूबसूरत सा भजन बोल पंडित नरेंद्र शर्मा के संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए मसाल फिल्म का ये भजन, लता मंगेशकर की आवाज, जयदेव अख्तर के बोल और संगीत हृदयनाथ मंगेशकर का।

लता मंगेशकर के गाए इस खूबसूरत भजन के साथ ही फिल्मों से लिए गए भजन का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, ये सिर्फ उनका नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के नव नियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को किया विभागों का आवंटन। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बने एमएसएमई विभाग के मंत्री। प्रदेश में अनुदेशकों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर देगी सरकार। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत, 5 घायल। अब समाचार विस्तार से। स्वीडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। ये किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को स्वीडन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वीडन का सर्वोच्च पुरस्कार मिलना सिर्फ उनका सम्मान नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है।
1: यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।

0: स्वीडन में मिला सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक मिला यह 31वां वैश्विक सम्मान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया। नवनियुक्त मंत्रिमंडल मंत्रियों में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई विभाग सौंपा गया है। मनोज कुमार पांडे को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग आवंटित किया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान राज्य मंत्री के तौर पर पदोन्नत किए गए अजीत पाल सिंह को खाद्य सुरक्षा और औषध प्रशासन विभाग के साथ साथ राजनीतिक पेंशन विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई है, जबकि सोमेंद्र तोमर को सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षा दल विभाग का प्रभार सौंपा गया है। नवनियुक्त चार राज्य मंत्रियों को भी विभाग आवंटित कर दिए गए। कृष्णा पासवान को पशुपालन एवं दुग्ध विकास विभाग, सुरेंद्र दिलेर को राजस्व विभाग, हंसराज विश्वकर्मा को लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और कैलाश राजपूत को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग सौंपा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन वहां के सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण 2026 के तहत भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश का ऐसा राजनीतिक दल है जो देश को सुरक्षा, संस्कृति, सुशासन और समृद्धि को जोड़ने का काम कर रही है। श्री योगी ने कहा कि केंद्र और भाजपा शासित राज्य सरकारों ने राष्ट्र प्रथम की भावना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की संकल्पना के अनुरूप अपने कार्यक्रमों को तैयार किया है। इससे देश के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन सपनों को भी साकार किया है, जो उन्होंने अंत्योदय की बात, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन की योजना का लाभ मिलना चाहिए। देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को एक एक आवास मिल जाना, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा मिल जाना, 10 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हो, ये समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को समृद्धि के शिखर तक पहुँचाने के अभियान का क्रम है।
0: कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान और सांसद रवि किशन शुक्ल सहित कई पार्टी पदाधिकारी और प्रमुख जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत 24,717 अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रूपये प्रतिमाह किए जाने के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मानदेय बढ़ाने के साथ ही राज्य सरकार अनुदेशकों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ देने जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है हर बच्चा शिक्षा हासिल करे, ताकि विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सके।
2: जब साफ नियत से कोई सरकार कार्य करती है, स्पष्ट नीति हो, तो परिणाम आने में देर नहीं लगती। प्रदेश के अंदर जो ड्रॉप आउट रेट था लगभग 17-18% के आसपास था, और आज हम इसको घटाते घटाते 3 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं, और हमारा मानना है इसको 0 तक पहुंचाना है। हर बच्चा पढ़ेगा तब विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार हम कर पाएंगे।
0: केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद और प्रदेश के राज्य मंत्री संजय गंगवार ने कल पीलीभीत में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन वितरित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री प्रसाद ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के कामों में हमेशा पारदर्शिता रही है और सरकार ने जो कहा उसे करके दिखाया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने कल से सीएनजी की कीमतों में 1 रूपये की बढ़ोतरी कर दी। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रूपये, जबकि गाजियाबाद और नोएडा में ये 88.70 रूपये हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं।

0: मथुरा सहित समूचे ब्रजमंडल में एक माह तक चलने वाला पुरूषोत्तम मास मेला कल से शुरू हो गया। एक रिपोर्ट।
1: मथुरा समेत समूचे ब्रजमंडल में एक माह तक चलने वाला अधिक मास मेला शुरू हो गया है। चहु और 84 कोस परिक्रमा का उत्साह और राधे राधे की गूंज सुनाई दे रही है। आस्था और भक्ति में डूबे लाखों श्रद्धालु मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन में 84 कोसी परिक्रमा कर रहे हैं। SP ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए परिक्रमा मार्ग गोवर्धन, द्वारकाधीश और श्री कृष्ण जन्मस्थली समेत प्रमुख मंदिरों को सुपर जोन और सेक्टरों में कर भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई है और पूरे क्षेत्र की CCTV कैमरों और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा।
0: प्रदेश के विभिन्न जिलों में कल हुए 3 अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हैं। हमीरपुर के मौदहा क्षेत्र के छिरका गांव के पास हाईवे पर खड़े ट्रक और कार की टक्कर में हुई दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये सभी बागेश्वर से दर्शन कर घर वापस जा रहे थे। हमारे फतेहपुर प्रतिनिधि ने बताया कि वहां के रिंद नदी में नहाने गए 4 युवकों की डूबने से मौत हो गई, जबकि अन्य 2 को गोताखोरों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं शाहजहांपुर जिले के कांट इलाके में कल सुबह डंपर और ऑटो की टक्कर में दंपत्ति सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में 20 मई से कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। साथ ही विभाग द्वारा कल और 20 मई को प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में दिन के समय कुछ स्थानों पर तेज लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच प्रदेश में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और लू को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि संवेदनशील जिलों में विशेष निगरानी रखी जाए। सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित किए जाए। मुख्यमंत्री द्वारा अस्पतालों में दवाओं, बेड और डॉक्टरों की उपलब्धता बनाए रखने के साथ एम्बुलेंस सेवाओं को भी सक्रिय करने का निर्देश दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, यह सिर्फ उनका नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को किया विभागों का आवंटन। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बने MSME विभाग के मंत्री। प्रदेश में अनुदेशकों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर देगी सरकार। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत, 5 घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंडित कार्तिक कुमार का सितार वादन राग अहीर भैरव। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं उस्ताद निजामुद्दीन खान, तानपुरे पर लीना कार्तिक कुमार।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित कार्तिक कुमार का सितार वादन राग अहीर भैरव। इनके साथ तबले पर संगत किया उस्ताद निजामुद्दीन खान, तानपुरे पर लीना कार्तिक कुमार। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। समूह स्वरों में सुनिए ये देशभक्ति गीत।
1: मुक्ति के संघर्ष का

0: संघर्ष का आधार।
1: आप सुन रहे थे समूह स्वरों में ये देशभक्ति गीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय

0: और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
1: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक की एक संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
2: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय UDF मंत्रिमंडल की घोषणा की।
6: कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए UDF कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई जयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर

0: 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।
2: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल VA वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर है 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट UG प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने HD देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है।

0: रक्षा, खनिज और एआई में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स। 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। होर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ। नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा। अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जंचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। एनडीए सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृहमंत्री का ये बयान हिंदुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृहमंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और एनडीए की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नवभारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्य बल के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने होंगे।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. India and Sweden decide to elevate their bilateral ties to strategic partnership. Prime Minister Modi invites Swedish companies to enhance their presence in India under Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission initiatives. Congress leader V.D. Satishan to be sworn in as Chief Minister of Keralam today. Southwest monsoon likely to hit Keralam coast on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Rajasthan Royals by 5 wickets in Delhi. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi held talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg last night. Prime Minister Modi was awarded Sweden's highest honour, the Royal Order of the Polar Star, Degree Commander Grand Cross, in recognition of his exceptional contributions to bilateral ties and his visionary leadership. The award is the highest distinction that can be given to a head of government. This is Prime Minister Modi's 31st international honour. During the delegation-level talks, the two leaders reviewed the full spectrum of India-Sweden relations and agreed to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership, marking a major milestone in the relationship. The two leaders also agreed to identify new opportunities in the spirit of the India-EU strategic partnership and recently concluded India-EU FTA for the benefit of their people. We have more details on this from our correspondent in Sweden covering the Prime Minister's visit.
3: Central to the visit was the adoption of a joint action plan which aims to double bilateral economic exchange.

0: your questions on X using the hashtag AskAIR. On to sports. In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Rajasthan Royals by 5 wickets at Arun Jaitley Stadium, Delhi last night. Chasing a target of 194 runs set by Rajasthan Royals, Delhi Capitals scored 197 for 5 in 19.2 overs. KL Rahul was the top scorer with 56 runs. For Delhi Capitals, Mitchell Starc took 4 wickets, which was later adjudged player of the match. And now for a look at today's newspapers, it's over to Neera Arakul.
1: Thank you, Shagun. Sweden confers its highest honour on PM Narendra Modi. The Royal Order of the Polar Star Degree Commander Grand Cross is Prime Minister Modi's 31st international award, is a top headline in the Pioneer, while the Asian Age headlines trade to chips. India inks 14 Netherlands pacts, lifts ties, Modi jettin, hold talks, adopt strategic partnership roadmap. The statesman mentions metro to run extra train trips to encourage use of public transport. This capacity expansion aims to ensure uninterrupted service and efficient passenger management. UAE nuclear plant attacked by drone, testing Iran troops, writes the Hindustan Times. While the Times of India states drone attack sparks fire at UAE nuclear plant. In an editorial titled Diversification Gains, the Hindu commends India's export performance in April 2026, underscoring the attempts by the government and industry to diversify in terms of crisis. And finally, the Indian Express writes HPV vaccination sees uptick, 1,100 girls receiving the shot. The figure reflects a slow but steadily accelerating start to one of the country's most important public health drives in recent years in preventing cervical cancer. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Neera. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. India and Sweden decide to elevate their bilateral ties to strategic partnership. Prime Minister Modi invites Swedish companies to enhance their presence in India under Make in India National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission initiatives. Congress leader V.D. Satheeshan to be sworn in as Chief Minister of Keralam today. Southwest monsoon likely to hit Keralam coast on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Rajasthan Royals by 5 wickets in Delhi. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टर्सन कोटनबर्ग से दोतरफा बातचीत की। भारत और स्वीडन ने अपने दोतरफा ताल्लुकात को दिफाई शराकतदारी तक ले जाने का फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म ने स्वीडन की कंपनियों को मदऊ किया है कि वो मेक इन इंडिया माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन के कौमी मिशन और अहम मादनियात के कौमी मिशन इकदाम के तहत भारत में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतीशन को आज केरलम के वजीर आला के ओहदे का हलफ दिलाया जाएगा। इम्कान है कि जुनूब मगरबी मानसून इस महीने की 26 तारीख को केरलम के साहिल पर पहुंच जाएगा, जो मामूल की तारीख से 6 दिन पहले है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल रात गोटेनबर्ग में स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत की। वो इस मुल्क के दो रोजा दौरे पर कल गोटेनबर्ग पहुंचे थे। जनाब मोदी को स्वीडन के आला तरीन एजाज रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से नवाजा गया। उन्हें यह एजाज दोतरफा ताल्लुकात में उनके गैर मामूली तआवुन और उनकी दूरंदेश क्यादत को तस्लीम करते हुए दिया गया है। यह अवार्ड आला तरीन इम्तियाज है जो किसी सरबराह हुकूमत को दिया जाता है। यह वजीर आजम मोदी का 31वां बैन अलावामी एजाज है। वफद की सतह की बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने भारत स्वीडन ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लिया और दोतरफा ताल्लुकात को दिफाई शराकतदारी तक ले जाने से इत्तेफाक किया, जो इन ताल्लुकात में एक बड़ी पेशरफ्त है। उन्होंने तिजारत और सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और इख्तिरा, माहौल के लिए साजगार राहदारी, खला, उभरती हुई टेक्नोलॉजी, दिफा और सलामती

0: से नशर किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह छत्तीसगढ़ के दो रोजा दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। रियासत के अपने दौरे में जनाब शाह रायपुर और बस्तर में कई प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह अपने छत्तीसगढ़ दौरे के पहले दिन आज सुबह रायपुर में हंगामी खिदमात डायल 112 के तहत नई गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वो बस्तर के लिए रवाना होंगे, जहां जिले के नेतानार गांव में अवामी सहूलत मरकज के इफ्तिताह करेंगे। इस मरकज का मकसद दूर दराज के इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों की हुकूमत और डिजिटल खिदमात तक रसाई को आसान बनाना है। इसके बाद जनाब शाह जगदलपुर पहुंचेंगे और अमर वाटिका पर शहीदों को खराज अकीदत पेश करेंगे। जनाब शाह का जगदलपुर की बादल एकेडमी में दोपहर में शहीदों के अफराद खानदान, हिफाजती अहलकारों, मावनवाजों के तशद्दुद से मुतासर अफराद और मुख्तलिफ मकामी बरादरियों के नुमाइंदों से मुलाकात का भी प्रोग्राम है। वजीर दाखिला शाम को लोक सकाफती प्रोग्राम बस्तर के संग में मौजूद रहेंगे। मरकजी वजीर दाखिला कल 19 मई को जगदलपुर में वस्ती जोनल काउंसिल की 26वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। इस मीटिंग में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के वज़राला शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ को मानवाजों से पाक करार दिए जाने के बाद जनाब शाह का रियासत का यह पहला दौरा है। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को साल 2026 के लिए पद्म अवार्ड अदा करेंगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत दाखिला ने कहा कि सदर जमहूरिया राष्ट्रपति भवन में मुनक़द होने वाली पहली शहरी एजाज से मुतालिक तकरीब के दौरान सिविल इन्वेस्टिचर तकरीब में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड अदा करेंगी। इस साल भारत सरकार ने मजमूई तौर पर 131 पद्म अवार्ड का ऐलान किया है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा 79वीं आलमी सेहत असेंबली में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए। ये 6 रोजा तकरीब आज से जिनेवा में शुरू होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब नड्डा ने कहा कि यह असेंबली 165 मुल्कों के वज़राए सेहत, मुअज्ज़ज़ अफराद और अवामी सेहत माहिरीन को यकजा करेगी, जहां मुस्तहकम ज्यादा शमूलियाती और लचकदार सेहत देखभाल निज़ाम के तहत मुश्तरका आलमी अज़्म की यकीन दहानी कराई जाएगी। मगरिब वस्ती रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में कल आग लगने के वाकये की जांच के लिए आला इंतजामी ग्रेड सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है। आग लगने का वाकया ट्रेन के एक मुसाफिर कोच और एक लगेज ब्रेक और जनरेटर कार में उस वक्त पेश आया जब ट्रेन मध्य प्रदेश के लूनी, रिचा और विक्रमगढ़ अलौत स्टेशनों के दरमियान थी। भारत ने मुत्तहिदा अरब अमारात के बारख न्यूक्लियाई मरकज को निशाना बनाकर किए गए हमले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। एक बयान में वजारत खारजा ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाइयां नाकाबिले कबूल हैं और कशीदगी के खतरनाक फैलाव की नुमाइंदगी करती हैं। नई दिल्ली ने सब्र तहमुल की अपील करते हुए बातचीत और सिफारतकारी की फौरी जरूरत पर जोर दिया है। इससे पहले कल मुत्तहिदा अरब अमारात के अज़दफरा के बारख न्यूक्लियाई मरकज के अहाते में ड्रोन हमला किया गया, जिससे मरकज की अंदरूनी हदूद के बाहर इलेक्ट्रिकल जनरेटर में आग लग गई। भारत के महकमे मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के 1 जून की मुकर्रर तारीख से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम पे आ जाने का इम्कान है। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि जुनूब मगरबी मानसून की अगले 2 से 3 दिन के दौरान जुनूब मशरकी बहरे अरब, खलीज बंगाल, अंडमान जजायर और अंडमान समंदर के हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए मौसमी हालात साजगार हैं। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि अंडमान और निकोबार जजायर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, साहिली कर्नाटक, केरलम और माहे में आज शदीद बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने मजीद कहा कि लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी इसी तरह के मौसमी हालात रह सकते हैं। महकमे मौसमियात ने मगरबी उत्तर प्रदेश में आज गर्मी की शदीद लू चलने की पेशगोई की है। दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कल शाम खेले गए इस दिलचस्प मैच में जीत के जरिए दिल्ली कैपिटल्स ने प्लेऑफ की अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 194 रन के निशाने के लिए खेलते हुए 19 ओवर्स और 2 गेंदों में 197 रन बनाए।

0: इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल पॉइंट्स टेबल में 8वें मकाम से 7वें मकाम पर पहुंच गई है और प्लेऑफ की दौड़ में शामिल है। एक दीगर मैच में धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। इस तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर शानदार 222 रन बनाए। जवाब में 223 रन के लिए खेलते हुए पंजाब किंग्स मुकर्रा ओवर्स में 8 विकेट खोकर 198 रन ही बना सकी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाली आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम के नीदरलैंड्स दौरे की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, भारत और नीदरलैंड्स के दरमियान दो तरफा तालुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के स्वीडन पहुंचने पर उन्हें आला तरीन एजाज से सरफराज किया गया। रोजनामा प्रताप ने जजों की तादाद बढ़ाने की खबर को नुमाया तौर पर शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजों की तादाद 34 से बढ़ाकर 38 करने की मरकजी काबीना के फैसले को मंजूरी दे दी है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर दाखिला अमित शाह के गुजरात दौरे की खबर को सुर्खी बनाया है। अमित शाह ने कहा कि गुजरात टेक्नोलॉजी के मैदान में भी मुल्क की क्यादत करेगा। अखबारात की कुछ अहम खबरें, बेंगलुरु मुंबई वंदे भारत स्लीपर सर्विस जल्द शुरू होगी, अश्विनी वैष्णव का बयान। अमेरिका से चीन 200 से ज्यादा तैयारी खरीदेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के जौहरी पावर प्लांट पर ड्रोन हमला। ईरान ने अब नए हुरमुज से गुजरने वाले बहरी जहाजों के लिए टोल लगाने का मंसूबा बनाया।
0: और आखिर में खास खबर एक बार फिर, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टरसन गोटेनबर्ग से दोतरफा बातचीत की। भारत और स्वीडन ने अपने दोतरफा ताल्लुकात को दिफाई शराकत दारी तक ले जाने का फैसला किया। वजीर आजम ने स्वीडन की कंपनियों को मदद किया है कि वो मेक इन इंडिया, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन के कौमी मिशन और अहम मादनियात के कौमी मिशन इकदाम के तहत भारत में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतीशन को आज केरलम के वजीर आला के ओहदे का हलफ दिलाया जाएगा। इम्कान है कि जनूब मगरबी मानसून इस महीने की 26 तारीख को केरलम के साहिल पर पहुंच जाएगा, जो मामूल की तारीख से 6 दिन पहले है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से शिकस्त दी। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी दिल्ली।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 870-001-4242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242।
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त नीलम सिंह। श्रोताओं जुड़ जाइए इस कार्यक्रम में अपने सुविचार के साथ और लिख भेजिए हमें अपने सुंदर से विचार। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद यानी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के अनुसार संग्रहालय में ऐसी अनेक चीजें सुरक्षित रखी जाती हैं जो मानव सभ्यता की याद दिलाती हैं। श्रोताओं प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। ये वर्ष 1983 में 18 मई को ये मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने संग्रहालय की विशेषता एवं महत्व को समझते हुए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य था जन सामान्य में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता तथा उनके कार्यकलापों के बारे में संग्रहालयों में अपने इतिहास

को अपनी प्राचीन समृद्धि परंपराओं को जानने और समझने का। संग्रहालय में रखी वस्तुएं हमारी सांस्कृतिक धरोहर तथा प्रकृति को प्रदर्शित करती है। संग्रहालय भरोसेमंद सार्वजनिक स्थान है जहां लोग कहानियां, वस्तुओं और एक दूसरे से मिलते हैं। दुनिया भर के समुदायों के भीतर उनके बीच संवाद, समझ, समावेश और शांति को बढ़ावा देते हैं। संग्रहालय एक विभाजित दुनिया को एकजुट करता है।

श्रोता, हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की। तो हम बताते चलें कि श्रोताओं, हर बड़े शहर में कम से कम एक सरकारी म्यूजियम जरूर है और हर म्यूजियम के पास अपनी कहानी है, बस उसे सुनने वाला चाहिए। जी हाँ, 18 मई को ज्यादातर म्यूजियम में फ्री एंट्री होती है।

हम आपको बता दें कि हमारे भारत में 1000 से ज्यादा संग्रहालय हैं, लेकिन कुछ संग्रहालय फेमस स्पेशल क्यों हैं? जैसे अहमदाबाद में कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल में 500 साल पुराने कपड़े शाही कढ़ाई के लिए रखे हुए हैं। खुजराहो पुरातत्व संग्रहालय है जो मंदिरों की मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं। अमृतसर पार्टीशन म्यूजियम 1947 के बंटवारे की कहानी बयां करते हैं। ये बात करते करते अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर हमारे श्रोता भी जुड़ चुके हैं और हम अब पढ़ते हैं आपके विचार जो आपने हमें फेसबुक के माध्यम से लिख भेजा है, अपना सुंदर सुविचार। नीरा त्रिपाठी जी लिखती हैं कि मुस्कुराहट वो हीरा है जिसे आप बिना खरीदे पहन सकते हैं। जब तक ये हीरा आपके पास है, आपको सुंदर दिखने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सुंदर विचार आपने भेजा है नीरा त्रिपाठी जी ने। अगला विचार लिखते हैं ऋतिक, चंद्रकला, गणेश, काशीनाथ, संगीता, आरोही, प्रियांशी, दयानंद कॉलेज भवानी सेठ सोलापुर से। इन्होंने लिखा है कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत शब्दों में नहीं बल्कि व्यवहार में होती है, क्योंकि मीठी बातें हर कोई कर लेता है, लेकिन मुश्किल समय में साथ निभाने वाले लोग, सच्चे दिल बहुत कम ही मिलते हैं। बहुत ही सुंदर विचार आपने लिख भेजा है। अगला विचार है दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा जी का। इन्होंने लिखा है कि वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, वक्त से सिर्फ और सिर्फ सीखा जाता है। अगला विचार है सोनू राजपाल, काजल, सीमा, मनस्वी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी। ये लिखते हैं मुरादाबाद से। सिर्फ इन्होंने नमस्कार लिखा है। बहुत ही अच्छा है कि आप हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं और आपने हमें नमस्कार लिख भेजा है। हम कोशिश करेंगे कि आप अगली बार हमें सुंदर विचार अपने लिख कर भेजें। जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।

चलते चलते हम आपको ये बता दें कि ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है प्रतिदिन सुबह 8:45 पर कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कुमार सानू चित्रक सिंह की आवाज, बोल जावेद अख्तर के संगीत, अनु मलिक का, फिल्म का नाम विरासत।

पंकज उदास अनुराधा पौडवाल की आवाज में सुनी, बोल इब्राहिम अश के, संगीत राजेश राशन का, फिल्म का नाम बाहर आने तक।

बाहर आने तक। अभी आपने सुना इस फिल्म का ये गीत। पंकज उदास अनुराधा पौडवाल की आवाज़ थी, अब्राहिम अश्क के बोल थे और संगीत राजेश रोशन का था। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बरेली और सीतापुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नाजिया अंजुम का।
1: बरेली में अब कोई भी फरियादी अपनी समस्या का समाधान पाए बिना वापस नहीं लौटेगा। ये संभव हुआ है ऑनलाइन मॉनिटरिंग के माध्यम से। बरेली जिले में सभी तहसीलों की 10 से 12 के बीच जनता दर्शन की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसमें सभी तहसीलदारों BDO SDM को 10 से 12 के बीच अपने दफ्तर में बैठना है, जिसकी मॉनिटरिंग जिला अधिकारी बरेली अपने ऑफिस से करते हैं। यही नहीं, अगर जिला अधिकारी कार्यालय में किसी तहसील का कोई मामला आता है तो जिला अधिकारी बरेली संबंध अधिकारी से सीधे जुड़कर उस व्यक्ति की समस्या का समाधान करते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से जनता दर्शन की लाइव मॉनिटरिंग के आदेश को बरेली जिले में बखूबी पूरा किया जा रहा है। जिलाधिकारी कार्यालय की भी मॉनिटरिंग लखनऊ से की जाती है। इसके साथ ही बरेली जिले की सभी तहसीलें बरेली जिला मुख्यालय से जुड़ती हैं, जिसमें हर फरियादी को अपनी समस्या का समाधान मिलता है। जनता दर्शन के दौरान 10 से 12 के बीच जिलाधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी जनसुनवाई में मौजूद रहते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या अधिकारियों के सामने रखते हैं। जिलाधिकारी बरेली का कहना है कि जनता दर्शन का उद्देश्य आम आदमी की समस्याओं का समयबद्ध और निष्पक्ष समाधान करना है, ताकि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। लाइव मॉनिटरिंग के चलते अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा रही है और हर शिकायत की प्रगति पर नजर रखी जा रही है।
2: मुख्यमंत्री कार्यालय से यूपी के 75 जिलों के जो जिलाधिकारी के कार्यालय में जो जनता दर्शन कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, उसकी लाइव मॉनिटरिंग की जाती है, जिसमें सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी ये देखते रहते हैं कि जनता दर्शन में आने वाले जो हमारे फरियादी हैं, शिकायतकर्ता हैं, उनकी शिकायतों का किस प्रकार से सुनवाई हो रही है, किस प्रकार से आम जनमानस के प्रति व्यवहार है और किस प्रकार से उनकी उचित गुणवत्ता के साथ उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए और उससे जो रिजल्ट प्राप्त हो रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जिला प्रशासन कह सकते हैं कि एक नया नवाचार किया है। हम लोगों ने अपने यहाँ भी एक बड़ी स्कीम के माध्यम से जितने भी हमारे 6 तहसीलों के SDM हैं, उनके कार्यालय, जो हमारे पास 15 विकास खंड हैं, उनके विकास खंड अधिकारी के कार्यालय और 19 हमारे पास जो हैं वो नगर पालिका और नगर निगम के EO के कार्यालय हैं, उन सभी को हमने अपने यहाँ जोड़ते हुए उनकी भी लाइव मॉनिटरिंग प्रारंभ किया है। तो लाइव मॉनिटरिंग के दौरान कार्य के जो आम जनमानस के प्रति उनकी किस प्रकार का व्यवहार है, किस प्रकार से शिकायतों को सुन रहे हैं, किस प्रकार से समस्या का समाधान कर रहे हैं, इस पे लगातार हम लोग नजर रख रहे हैं और यही वजह है कि कार्य की जो गुणवत्ता है लगातार उच्चतर होती जा रही है।
1: बरेली में धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाई मिलने जा रही है। गत दिनों उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह

0: नाथ कॉरिडोर में कराए जा रहे कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। जिले में 98 करोड़ की लागत से सभी नाथ मंदिरों का कायाकल्प कराया जा रहा है, जिसमें त्रिवटी नाथ, धुपेश्वर नाथ, अलकनाथ विशेष रूप से शामिल हैं। इन मंदिरों में सरकार द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है ताकि धार्मिक पर्यटन को एक नई दिशा मिल सके। एक कार्यक्रम में पहुंचे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि पर्यटन को प्रदेश में नई ऊर्जा मिल रही है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा ईंधन बचाने की अपील पर बोलते हुए कहा कि ये राष्ट्र हित का काम है। बरेली जिले में जल्द ही इको फ्रेंडली नगर वन बनने वाला है, जिसका शिलान्यास गत दिनों वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने किया। ये नगर वन शहरवासियों के लिए एक प्राकृतिक रमणीय स्थल बनने जा रहा है, जिसमें प्रकृति का खास ध्यान रखा जाएगा। इस नगर वन में बच्चों के लिए किड जोन भी विकसित किया जाएगा, जिससे बच्चे यहाँ आकर प्रकृति को समझ सके। सबसे बड़ी बात ये है कि इस इको फ्रेंडली नगर वन में सब कुछ प्राकृतिक ही प्रयोग किया जाएगा, कॉन्क्रीट और ईंट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। रोहिलखंड विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए दिव्यांग विद्यालय दिशा पब्लिक स्कूल में गत दिनों गुजरात दिवस का आयोजन धूमधाम से किया गया। स्कूली बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुति देकर कार्यक्रम को और भी शानदार बनाया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनाना आसान है, लेकिन बच्चों को सही दिशा देना, हुनर सिखाना और आत्मनिर्भर बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने विश्वविद्यालय को समाज से जुड़ते हुए कम से कम 5 गांव गोद लेकर उन्हें विकसित करने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी केवल किताबों तक सीमित नहीं है, उन्हें गांव में जाकर महिलाओं, बच्चों और किसानों की समस्याएं सुननी चाहिए, उनके समाधान में भागीदारी निभानी चाहिए। टीबी मुक्त भारत अभियान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक 4 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्यपाल ने कहा कि हर विश्वविद्यालय को राज्यों की स्थापना दिवस मनाने चाहिए, जिससे छात्रों को देश की विविधता और विकास मॉडल की जानकारी मिले। उन्होंने अपने गुजरात कार्यकाल का अनुभव साझा करते हुए बताया कि ग्रामीण महिलाओं बड़े स्तर पर परीक्षण अभियान चलाया गया, जिसमें 1.5 करोड़ महिलाओं की स्क्रीनिंग हुई और हजारों को समय से इलाज मिला। बरेली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सीतापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दीपक श्रीवास्तव का।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में सीतापुर स्थित पवित्र तीर्थ स्थल नैमिषारण्य को भव्यतम स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में पौराणिकता और नवाचार को समाहित करते हुए नैमिष स्थित पुरानी धर्मशाला को आधुनिक शिल्प ग्राम इंटीग्रेटेशन सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। खास बात यह है कि विरासत भवन की मूल संरचना को सुरक्षित रखते हुए उसे आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। प्रदेश सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 372 करोड़ रुपए की मंजूरी देते हुए पहली किस्त के रूप में 2.98 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि नैमिषारण्य के इस इंटरप्रिटेशन सेंटर में श्रद्धालुओं को स्थानीय इतिहास, धार्मिक महत्व और सांस्कृतिक विरासत की विस्तृत जानकारी मिलेगी। इसके लिए भवन के भीतर अलग अलग थीम पर आधारित गैलरियां बनाई जाएंगी, जिनमें कॉस्मिक ऑर्डर, जीवन का विकास, सभ्यता का उदय, महाकाव्य और ज्ञानोदय जैसे विषयों को रोचक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। परियोजना के तहत पूरे परिसर का समग्र विकास किया जाएगा, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। योजना अंतर्गत आधुनिक प्रवेश लाबी, आकर्षक एम्फी थिएटर, मूर्तिकला मार्ग और स्वच्छ शौचालय ब्लॉक विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही मौजूदा भवन का नवीनीकरण और नई इमारत का निर्माण किया जाएगा, जिससे इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि पूरे क्षेत्र का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वातावरण और अधिक सजीव व आकर्षक बन सके। अपर मुख्य सचिव पर्यटन, संस्कृत एवं धर्मार्थ कार्य विभाग अमृत अभिजात ने बताया कि नैमिषारण्य जैसे पवित्र तीर्थ स्थल का समग्र विकास प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया यहाँ श्रद्धालु आधुनिक

की व्यापक जानकारी मिल सकेगी। इससे न केवल धार्मिक पर्यटन को नई गति मिलेगी बल्कि क्षेत्र में सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्राप्त होगी। सीतापुर के अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में स्वगणना 2027 के तहत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर सेल्फ सर्वे कराया गया। साथ ही सभी विभागों

0: प्रेरित करने के निर्देश दिए गए। नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु एवं विधायक मिश्रित रामकृष्ण भार्गव ने आम जनमानस मानस से अपील की कि जनगणना 2027 में अपनी जनगणना संबंधी सूचनाएं डिजिटल माध्यम से निःशुल्क दे सकते हैं, जिससे जनगणना का कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न हो सकता है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन बहुत ही हर्ष उल्लास और उत्साह के साथ बाबा जंगली नाथ मंदिर के प्रांगण में आयोजित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर में रुद्र अभिषेक किया गया, जिसका सजीव प्रसारण सभी आगंतुकों ने देखा। महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर इस पर्व को समारोह पूर्वक मनाया। जनपद सीतापुर में पुलिस लाइन परिसर से कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा बाबा जंडलीनाथ मंदिर में समाप्त हुई, जहां सभी गणमान्य जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को बाबा जंडलीनाथ का अभिषेक एवं पूजन अर्चन संपन्न कराया गया। सभी अतिथियों ने श्रद्धालुओं को संबोधित करने के साथ सजीव प्रसारण का अनुसरण किया। अंत में जिलाधिकारी द्वारा सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। संचालन राज शर्मा जिला व्यायाम शिक्षक ने किया। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद सीतापुर वैभव त्रिपाठी एवं बड़े संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग। पहली
1: बार सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।

एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्स और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

0: जो कि सवाल सही नहीं है।
1: जी, यानी जवाब इन्होंने गलत दिया है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और अगला सवाल जो है टीम छाया गीत के लिए है। साल 1919 में किस कानून को काला कानून कहा गया है जो पारित हुआ था?
0: आपके ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी है माउंटबेटन प्लान, और ऑप्शन सी है विधवा विवाह कानून।
2: सर ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट।
1: ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट। आप लोग क्या कहते हैं, सही है? नहीं, ऑडियंस ने मोहर लगा दी है।
0: हाँ।
1: तो आपका ये सवाल का जवाब पूरी तरह से सही है।
0: जोरदार तालियां होनी चाहिए।
1: अब हम चलते हैं टीम आबशार की तरफ। सवाल बहुत बढ़िया है, आजादी से रिलेट करता हुआ सवाल है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा किसने दिया था?
0: ऑप्शन देने की बारी नहीं आ रही है, वो बोल रहे हैं सुभाष चंद्र बोस।
1: जवाब बिल्कुल सही है।
0: टीम आबशार का ये जवाब बिल्कुल सही है।
1: 10 पॉइंट मिलते हैं आपको। और टीम रजनीगंधा, आपके लिए भी सवाल बड़ा खूबसूरत सा है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए?
0: ऑप्शन आपके हैं 30 साल, 35 साल या 40 साल। 35 ईयर बता रहे हैं जमशेद।
1: 35 साल। आप लोग क्या कहते हैं, सही है गलत है? और अब बारी आती है फिर एक बार टीम हवा महल की तरफ। एक बार फिर चलते हैं। टीम हवा महल, आपका सवाल स्टेट से है, राजनीति से है। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है?
0: आपके ऑप्शन है 243, 243, 245, 245 या 250, 250।
3: सर 243।
0: 243 बता रहे हैं।
1: अब आप क्या कहेंगे,
0: सही जवाब है या गलत? आप लोग बताएं।
1: देखिए हमने तो कुछ नहीं कहा, आपके साथियों ने कहा ये जवाब गलत है। भाई सही जवाब जो है वो है 250।
0: टीम हवा महल नेगेटिव में।
1: और हम आगे बढ़ते हैं, सवाल आता है टीम छाया गीत की तरफ। और सवाल ये है कि देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? और ऑप्शन आपके पास है जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ या जस्टिस बी आर गवई।
2: सर फर्स्ट।
0: फर्स्ट जस्टिस सूर्यकांत। क्या लगता है आप लोगों को, है सही है? ऑडियंस,
1: ऑडियंस ने जो है मोहर लगा दी तो मानना पड़ेगा
0: जी।
1: तो ये जवाब पूरी तरह से है सही। और एक बार फिर चलते हैं टीम आबशार की तरफ। और टीम आबशार, आपसे सवाल है, हवा की शुद्धता यानी प्योरिटी, इसको प्रदूषण मापने का इंडेक्स क्या है?
0: ऑप्शन ए AQI, दूसरा ऑप्शन है AIQ या ऑप्शन सी है PQI।
4: AQI।
1: AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स।
0: बिल्कुल सही है जवाब।
1: और आप चलते हैं टीम रजनीगंधा की तरफ। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा जीरो पर आउट होने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है?
0: ऑप्शन ए है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी है रिकी पोंटिंग और ऑप्शन सी है मुथैया मुरलीधरन।
1: जी
4: सर ऑप्शन बी।
0: ऑप्शन बी है रिकी पोंटिंग। क्या लगता है ऑडियंस को, गलत है? आप में से कोई जवाब देना चाहेगा?
5: मुथैया मुरलीधरन।
0: मुथैया मुरलीधरन, बिल्कुल सही जवाब है आपके लिए। टीम रजनीगंधा के लिए माइनस पॉइंट।
1: और अगला सवाल एक बार फिर टीम हवा महल से है, और सवाल है कि इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है?
0: आपके ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी है चेन्नई या ऑप्शन सी है बेंगलुरु।
3: बेंगलुरु।
0: अहो जोरदार तालियां होनी चाहिए टीम हवा महल।
1: इसी तरह से आगाज हो गया टीम हवा महल का।
0: टीम छाया गीत की तरफ चलते हैं हम लोग।
1: और टीम छाया गीत, आपके लिए सवाल है, ओलंपिक खेलों में भारत को सबसे ज्यादा मेडल किस खेल में मिले हैं?
0: आपके ऑप्शन है कुश्ती, आपके ऑप्शन बी है बैडमिंटन

0: ऑप्शन सी है हॉकी।
1: सर ऑप्शन सी हॉकी।
2: तो ये जवाब पूरी तरह से है सही।
0: बिल्कुल सही जवाब,
2: क्योंकि अकेले हॉकी में इंडिया को 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, यानी कुल 13 मेडल मिले हैं हॉकी में। अब आप पूछेंगे अगला सवाल, टीम आबशार से क्या कहते हैं आप?
0: लखनऊ का फेमस सिकंदराबाग जो आपका बना हुआ है, इसको किस नवाब ने बनवाया था?
2: ऑप्शन है
0: आसिफुद्दौला, नवाब शुजाउद्दौला या वाजिद अली शाह।
2: वाजिद अली शाह। ऑडियंस क्या कहती है? और ये जवाब पूरी तरह से सही है।
0: ये बिल्कुल, अगला सवाल आप ही के सब्जेक्ट से है
2: और टीम रजनीकंदा से।
0: रजनीकंदा के लिए
2: जी,
0: प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है लाइपेज, ऑप्शन बी है एमाइलेज और ऑप्शन सी है ट्रिप्सिन।
3: ऑप्शन सी ट्रिप्सिन।
0: क्या लगता है जमशेद भाई, सही है?
2: हाँ, सवाल का जवाब तो बिल्कुल सही है। और अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। टीम हवा महल से है अगला सवाल, और सवाल है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीटों की संख्या कुल कितनी है? और आपके ऑप्शन है
0: 400, 402 या 403।
2: 403 और सही जवाब है 403। और उसके बाद हम चलते हैं एक बार फिर टीम छाया गीत की तरफ, कि इनमें से उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है,
0: क्लासिकल डांस कौन सा है इनमें से उत्तर प्रदेश का?
2: कुचिपुड़ी, कथकली या फिर कथक?
0: कथकली।
2: जवाब आया है कथकली। सही जवाब है कथक। फिर हम पहुंचते हैं टीम आबशार की तरफ। इनमें से भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया, जगत प्रकाश नड्डा या फिर राजनाथ सिंह?
3: बी
2: यानी जेपी नड्डा सही जवाब। और आपको मिलते हैं 10 नंबर।
0: जोरदार तालियां दीजिए टीम आबशार के लिए अगेन।
2: और अब हम आखिरी सवाल की तरफ चल रहे हैं साहब, यानी बूझो तो जाने राउंड का
0: आखिरी सवाल
2: है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? और ऑप्शन आपके हैं 14 या फिर 15 में या फिर अनुच्छेद 16 में।
3: सर ऑप्शन ए आर्टिकल 14।
0: आर्टिकल 14 टीम रजनीकंदा ने जवाब दिया है।
2: बिल्कुल सही जवाब, आर्टिकल 14। इस राउंड के बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस टीम को कितने मार्क्स मिले हैं।
4: टीम हवा महल को मिले हैं 10 नंबर, छाया गीत को 25 और आबशार को 40 सबसे ज्यादा, और रजनीगंधा को 25।
2: और अभी टीम हवा महल के पास चांस है, और अगला राउंड हमारे पास आ गया है, और आवाज की दुनिया में आपको बताना है कुछ सवाल आकाशवाणी से रिलेट करते हुए होंगे।
0: अच्छी बात यह है कि इस राउंड में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
2: तो शुरुआत फिर एक बार हम हवा महल टीम से करें।
0: जी सर, करिए आप।
2: आकाशवाणी की स्थापना कब हुई थी?
0: ऑप्शन ए 1936 या ऑप्शन बी 1938।
5: 1936।
0: क्या कहेंगे आप लोग?
2: और सही जवाब है 1936। अभी एक स्लोगन था आकाशवाणी का, अभी आपने डॉक्यूमेंट्री देखी। और टीम छाया गीत के लिए सवाल है कि आकाशवाणी का स्लोगन क्या है?
0: आपके ऑप्शन ए है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये ऑप्शन बी है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय।
1: सर
0: पहला ऑप्शन पहला ऑप्शन बता रहे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, क्या कहेंगे आप लोग? गलत है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय।
2: और अगला सवाल टीम आबशार के लिए, आप बताइए किस साल में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम दिया गया? और ऑप्शन है 1947 या फिर साल 1957।

0: 1957.
1: बिल्कुल सही जवाब.
2: राइट.
1: आकाशवाणी लखनऊ FM का जो चैनल है उसका स्लोगन क्या है? धड़कन लखनऊ की या फिर शान लखनऊ की?
0: सर बी ऑप्शन.
2: ऑप्शन बी
0: शान लखनऊ की.
1: यहाँ पर हम आपसे कहेंगे धड़कन लखनऊ की. अगला सवाल है टीम हवा महल से. टीम हवा महल हमारा चैनल है प्राइमरी चैनल. आपको बताना है कि हमारा प्राइमरी चैनल किस फ्रीक्वेंसी पर सुना जाता है. मीडियम वेव 747 किलो हर्ट्ज या फिर मीडियम वेव 750 किलो हर्ट्ज.
2: 750 का ऑप्शन चुना है टीम हवा महल ने.
1: तो सही जवाब क्या है शम्स साहब?
2: 747 किलो हर्ट्ज. मीडियम वेव 747 किलो हर्ट्ज इज द राइट आंसर.
1: आपका जवाब गलत होता है. विविध भारती चैनल को सुनने के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी बैंड का इस्तेमाल करते हैं? AM मोड पर या फिर FM मोड पर?
2: FM मोड पर. टीम छाया गीत का ये जवाब FM मोड पर.
1: विविध भारती चैनल सुनने के लिए हम इस वक्त FM मोड पर जाते हैं यानी फ्रीक्वेंसी मोड पर. विविध भारती को किस फ्रीक्वेंसी पर सुना जा सकता है? 98.6 या 101.6?
0: सर बी
2: 101.6.
1: ऑडियंस सही जवाब. और अब टीम रजनीगंधा के लिए सवाल है कि आकाशवाणी लखनऊ के FM चैनल का नाम क्या है?
2: आपके ऑप्शन है FM रेनबो या ऑप्शन बी है रेडियो मिर्ची.
0: सर ऑप्शन ए.
2: ऑप्शन ए FM रेनबो.
1: बिल्कुल सही जवाब FM रेनबो. टीम हवा महल की तरफ चल रहे हैं. FM रेनबो के गजलों के प्रोग्राम का नाम क्या है?
2: ऑप्शन है आपके आबशार या कहकशां.
3: आबशार.
2: आबशार
1: तो बिल्कुल सही जवाब है
2: जी
1: आबशार. टीम छाया गीत प्राइमरी चैनल पर उर्दू प्रोग्राम का वक्त क्या है?
2: आपके ऑप्शन है 9:30 पर और बी है ऑप्शन 9:30 पर.
4: रात में नौ बजकर तीस मिनट
2: का जवाब 9:30 पर प्राइमरी चैनल पर आप आकाशवाणी का उर्दू प्रोग्राम सुन सकते हैं. तो आपका ये जवाब गलत है.
1: हम एक बार फिर चलते हैं टीम आबशार की तरफ. FM रेनबो की फ्रीक्वेंसी क्या है?
2: 98.7 या 100.7?
0: B 100.7.
2: राइट
1: 100.7.
2: यस.
1: टीम रजनीगंधा आकाशवाणी एक संस्था होती है जैसे आपका चल रहा है कॉलेज वैसे आकाशवाणी का एक पेरेंट संस्था है जिससे आकाशवाणी चलती है.
2: ऑप्शन
1: प्रसार भारती या फिर NSD?
0: सर ए प्रसार भारती.
1: ए प्रसार भारती बिल्कुल सही जवाब है ये.
2: राइट आंसर
1: प्रसार भारती. और एक बार फिर टीम हवा महल
2: आकाशवाणी के प्रोग्राम को रेडियो पर सुनने के अलावा आप अपने स्मार्टफोन पर किस ऐप के जरिए सुन सकते हैं? आकाशवाणी AIR या न्यूज ऑन AIR?
1: न्यूज ऑन AIR. सही जवाब न्यूज ऑन AIR.
2: सही जवाब है टीम हवा महल के लिए. न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप रेडियो के प्रोग्राम सुन सकते हैं हमारे आकाशवाणी लखनऊ के प्रोग्राम सुन सकते हैं.
1: और अब सवाल है टीम छाया गीत के लिए क्या प्राइवेट चैनल FM में न्यूज का प्रसारण कर सकते हैं या न्यूज ब्रॉडकास्ट कर सकते
2: सवाल
1: हैं?
2: ऑप्शन है हाँ कर सकते हैं ऑप्शन बी नहीं कर सकते हैं.
4: जी सर कर सकते हैं.
1: प्राइवेट FM चैनल न्यूज को प्रसारित कर सकते हैं उनको अनुमति है और आपने कहा हाँ
2: यानी कि गलत जवाब.
1: टीम आबशार सवाल है
2: आकाशवाणी का सबसे लंबा चलने वाला प्रोग्राम कौन है? ऑप्शन ए है माटी की सुगंध. ऑप्शन बी है मन की बात.
0: मन की बात
1: सही जवाब है. मन की बात.
2: मन की बात जोरदार तालियां.
1: और माइक टीम रजनीगंधा की तरफ सवाल है आकाशवाणी लखनऊ की स्थापना कब हुई?

0: थी? ऑप्शन है
1: 1938 और 1947.
2: 1938.
0: तो बिल्कुल सही जवाब. और इसी के साथ हमारे दो राउंड खत्म होते हैं, बूझो तो जाने और राउंड आवाज की दुनिया.
1: अब हम अपने जजेस से कहेंगे कि यहाँ पर टोटल स्कोर करके आप बता दें और एक टीम यहाँ से एलिमिनेट की जाएगी. मैं चाहता हूँ मोहतरम जनाब सुभाष खन्ना सर आए और टीम का रिजल्ट बताएं.
0: और आपको बता दें कि इस राउंड के बाद जिसके मार्क्स सबसे कम होंगे वो टीम यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी.
3: जो हमारी हवा महल है उन्होंने टोटल 40 अंक अर्जित किए हैं. उन्होंने पहले में भी 40 यानी चारों सही और दूसरे राउंड में भी आपने चारों सही जवाब दिए हैं. और अगली टीम है रजनीगंधा, उसने सेकंड राउंड में 30 अंक अर्जित किए हैं और पहले में 25, टोटल 55 आपके हैं. और आबशार ने टोटल 80 अंक अर्जित किए हैं. आपको बहुत बधाई, आपने सबसे बेहतरीन खेला. तो ये तो रहे अंक. और प्रथम मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि आपने यहां सहभागिता की. तो बड़े दुख के साथ मैं बता रहा हूं कि यहां जो एलिमिनेट टीम हो रही है वो है छाया की टीम. आपने टोटल 35 अंक अर्जित किए हैं लेकिन आपने पार्टिसिपेशन किया और लगातार आपने जवाब दिया और बहुत बेहतरीन.
0: तो ये दो राउंड के बाद जो बताया हमारे सुभाष खन्ना सर ने, तो यानी एक टीम हमसे अलग होगी, वो टीम है छाया गीत. और बाकी के तीन टीमें हमारे साथ रहेंगी, टीम हवा महल, टीम आबशार और टीम रजनीगंधा.
4: सामाइन, ये थी क्विज प्रोग्राम की पहली किस्त. अगली किस्त जल्द ही आपके सामने होगी. फिलहाल इजाजत दें, आसिफ इकबाल को आदाब.
5: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से उर्दू प्रोग्राम नशर किया जा रहा था. मीडियम वेव 401.4.
6: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है. मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम. इस कार्यक्रम में आज की कलाकार हैं ममता त्रिपाठी. इनके स्वर में सुनिए ये भजन

आज कोई आ रहा है। ममता त्रिपाठी के गाए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

आज कोई आ रहा है। ममता त्रिपाठी के गाए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत की। श्री मोदी दो दिन के स्वीडन दौरे पर कल गोथेनबर्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार किसी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत स्वीडन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की प्रशंसा की। गोथेनबर्ग पहुंचने के तुरंत बाद श्री मोदी ने प्रवासी भारतीय समुदाय से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। श्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 वर्ष बाद नॉर्वे की ये पहली यात्रा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि स्वीडन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले उद्योगपतियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत में गहरी रुचि दिखाई है। यूरोपीय उद्योगपतियों के गोलमेज सम्मेलन के बाद विदेश मंत्रालय के पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ उद्योगपतियों ने हाल के वर्षों में भारत में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का उल्लेख किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया के दो देशों के दौरे पर रहेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये दौरा दोनों देशों के साथ भारत मित्रता के दायरे को और बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरे का उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग को बढ़ाना और रक्षा औद्योगिक साझेदारी को मजबूत करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक

0: स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। श्री सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। शपथ लेने वाले 21 मंत्रियों में सतीशन सहित 14 विधायक पहली बार मंत्री बन रहे हैं। राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को मंत्रियों की सूची सौंपने के बाद श्री सतीशन ने कहा कि यूडीएफ मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक साथ शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को जन्मदिन की बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एचडी देवेगौड़ा ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन के दौरान देश के लिए बेहतरीन योगदान दिया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने एचडी देवेगौड़ा को धरती का सपूत बताया। श्री शाह ने कहा कि किसानों और ग्रामीण भारत के लिए उनके आजीवन समर्पण ने देश पर अमिट छाप छोड़ी है। भारत ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में 1 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक जीते हैं। जियांग शान में छठे संस्करण की तुलना में भारत की ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज।

साइबर सुरक्षा और युवाओं की जागरूकता, जी हाँ, आज का सबसे जरूरी टॉपिक, क्योंकि युवा ही सबसे ज्यादा ऑनलाइन है और सबसे ज्यादा टारगेट भी वही होते हैं। श्रोताओं, साइबर सुरक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो कंप्यूटर, सर्वर, मोबाइल डिवाइस और नेटवर्क को दुर्भावनापूर्ण हमलों, साइबर अटैक से बचाती है। युवाओं के लिए डिजिटल साक्षरता और साइबर जागरूकता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये इंटरनेट का सबसे अधिक उपयोग करते हैं और अक्सर ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार यही बन जाते हैं। साइबर सुरक्षा और युवाओं की जागरूकता डिजिटल युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग का सबसे अधिक उपयोग करते हैं, इसलिए साइबर ठगी, फिशिंग और ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग जैसे खतरों से बचने के लिए साइबर स्वच्छता का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। युवाओं के लिए आवश्यक साइबर सुरक्षा के बारे में बात करेंगे इस प्यारे से गीत के बाद।

वापस आते हैं अपने विषय पर, युवाओं के लिए आवश्यक साइबर सुरक्षा। तो श्रोताओं, सबसे पहले सभी सोशल मीडिया, ईमेल, बैंकिंग एप्स के लिए मजबूत अलग अलग पासवर्ड का उपयोग करें। किसी भी लुभावने विज्ञापन, अनजान नंबर से आए मैसेज या लॉटरी के लिंक पर क्लिक न करें। सोशल मीडिया पर अपनी लोकेशन, जन्मतिथि, आधार या बैंक डिटेल्स जैसी संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक ना करें। ऑनलाइन गेमिंग में अज्ञात लोगों के साथ बातचीत में सतर्क रहें। साइबर बुलिंग यानी धमकाने या प्रताड़ित करने का शिकार होने पर तुरंत माता पिता या साइबर पुलिस की मदद लें। आप सोचने में अपना वक्त जाया ना करें। तुरंत किसी भी साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें या 1930 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।

युवाओं को जागरूक होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज के युवा अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा ऑनलाइन बिताते हैं। स्कूल, दोस्त, शौक, ऐप्स और प्लेटफॉर्म जो व्यक्तिगत डेटा एकत्र और साझा करते हैं, इस तरह के संपर्क से साइबर सुरक्षा से जुड़े कई तरह के जोखिम और जिम्मेदारियां पैदा होती हैं, जिनके बारे में माता पिता, शिक्षक और स्वयं युवाओं को जागरूक होना बेहद ज़रूरी है और उन्हें शारीरिक सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता के समान गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्रतिदिन, हर दिन, हर समय हम उनसे, उनके साथ रहते हैं।

श्रोताओं, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने बच्चों की डिजिटल और दैनिक जीवन में सक्रिय रूप से शामिल रहें और खुलकर संवाद करें। आज के युवाओं की ऑनलाइन खतरे के बारे में उनकी सोच और उनके वास्तविक व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर है। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये साइबर अनुभव बच्चों को कितना विचलित कर सकते हैं। उनके लिए तर्कसंगत और सुरक्षित निर्णय लेना कठिन हो जाता है। इसका असर न केवल उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, बल्कि भविष्य में उनके रिश्तों और जीवन के अवसरों पर भी पड़ सकता है। ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग में भारी वृद्धि के साथ आज के युवाओं के लिए यह समझना आवश्यक है कि ऑनलाइन साइबर सुरक्षा के क्या जोखिम है और हम कैसे बच सकते हैं।

0: डिजिटल दुनिया में आत्मविश्वास, ज्ञान और दूसरों के प्रति सम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाया जाए उन्हें। क्यों? क्योंकि उनका ऑनलाइन से जुड़े रहना हर वक्त एक बहुत ज़रूरी समय हो गया है। ऐसा करके हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आज के युवा जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बने जो ऑनलाइन सुरक्षित, जिम्मेदार और जागरूक हों।
1: जलवा जलवा

श्रोताओं, अपनी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए छोटे छोटे कदम उठाकर और साइबर सुरक्षा खतरों के बारे में जानकारी रखकर आप एक सुरक्षित ऑनलाइन अनुभव का आनंद ले सकते हैं। आज हमने बात किया साइबर सुरक्षा और युवाओं की जागरूकता पर। जी हाँ, आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ प्रयागराज।

0: Buyur.
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और आपके मित्र अजीत का भी नमस्कार और जोहार।
2: बिना संघर्ष के सफलता बिना नमक के भोजन की तरह होती है। इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी लेकिन ये स्वादिष्ट नहीं लगेगी।
3: श्रोताओं, ये सुंदर विचार हमें भेजा था बिहार से वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने। बिल्कुल सच कहा है, बिना श्रम के सफलता का सच्चा आनंद नहीं मिलता
2: जी।
3: आप दोनों का धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
3: और भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं,
2: गुरुवार 23 अप्रैल को सुविचार को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपने जानकारी देते हुए एक दोहा का उदाहरण दिया। इस दोहे में कबीरदास जी विश्वास को न तोड़ने की सीख देते हैं। दोहा इस तरह से था, रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे, जुरे गांठ परे जाए।
3: आपने आगे लिखा है, आपके द्वारा इस दोहे के रचनाकार कवि का नाम कबीरदास बताया गया। वास्तव में इस दोहे को रहीम ने लिखा है, न कि कबीरदास जी ने। धन्यवाद और आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार। कृष्ण कुमार जी, आपको भी हमारा विशेष धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रमों को बड़ी बारीकी से सुनते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं।
3: तो हम कहना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है हमेशा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया संदेश भेजते रहिए। अगला संदेश सुनते हैं जो हमें मिला है।
2: गाँव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी।
3: और बेगूसराय बिहार से हमें संदेश मिला है इकबाल मोगा, देव, अजय मोगा और अहमद मोगा का। लिखते हैं,
2: आज की प्रस्तुति कल्पना चावला जो सितारों में खो गई हमें बहुत अच्छी लगी। आपको साधुवाद।
3: और आप सबको हमारा हार्दिक आभार। आइए बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
2: इस प्रश्न का उत्तर है, नीली वेल को आकार में समुद्र का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। इसका वजन लगभग 100 से 150 टन का होता है, यानी किलोग्राम के अनुसार ये 1 लाख से 1.5 लाख किलोग्राम की होती है
3: जी। और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, थर्मल लैग किसे कहते हैं।
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। गर्मियों में सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है। सुबह से सूर्य के ताप के कारण धरती गर्म होती रहती है और 12 बजे सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी पड़ती हैं
3: जी।
2: बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसीलिए उनका ताप कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान यानी 12 बजे के बाद भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है, जिसे थर्मल लैग कहते हैं।
3: और हमारा तीसरा प्रश्न था कि प्रकृति

0: को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है?
1: इसका उत्तर है साथियों, प्रकृति जलवायु के अनुसार हर मौसम में वही उपज देती है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसके अनेक उदाहरण हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि गर्मी के मौसम में जो फल आते हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है ताकि हमें गर्मी के मौसम में इसका लाभ मिले।
0: और हमारा अगला प्रश्न श्रोताओं प्राथमिक उपचार से संबंधित था। हमारा प्रश्न था कि लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीले करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है?
1: तो साथियों इसका उत्तर भी जान लेते हैं। लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से सांस लेने में आसानी होती है और शरीर का रक्त संचार आसानी से हो पाता है।
0: और अब हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न, हमारा प्रश्न था बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टी में और क्या क्या कर सकते हैं?
1: इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे विद्यार्थी कोई भी शास्त्रीय नृत्य या वाद्य यंत्र सीख सकते हैं, जैसे हारमोनियम, तबला या बांसुरी।
0: जी विमरेश जी, ये सचमुच एक बड़ी अच्छी सलाह है। तो श्रोताओं अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
0: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमें भेज सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित ये कार्यक्रम बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करें और उसकी सुंदरता का अनुभव करें। कार्यक्रम एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें एक बच्ची आकाश में बादलों को ध्यान से देखकर उनके विभिन्न आकारों में पशु पक्षियों की छवि की कल्पना करती है।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू?
3: वी आर फाइन सर।
4: आई एम फाइन।
5: आई एम गुड सर।
2: फाइन, गुड। ओके, सो टेल मी, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट?
6: आई लाइक प्लेइंग सर।
7: आई लाइक पेंटिंग सर।
2: वेरी गुड। एनीवन एल्स?
8: सर, आई लाइक सिंगिंग।
9: आई लाइक प्लेइंग विद माय पेट्स।
2: ओह, दैट्स ग्रेट। नाउ टेल मी, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
3: Yes, sir.
7: We like.
2: Lovely butterflies?
3: Yes, sir.
2: And lovely colorful chirping birds?
3: Yes, sir. We like it.
2: That's very nice, children.
7: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
2: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it? The rivers, the mountains, and the green trees.
3: Yes, sir.
2: Okay, so let me tell you the story of a sweet child like you.
3: Like us?
2: Would you like to listen?
3: Yes, sir.
7: We love to listen the story.
2: To know what the child did, you have to listen to a beautiful poem. After listening to the poem, you will know what the child did. Okay?
3: Okay, sir.
2: Very good. Now I am going to read this poem. You have to repeat after me, okay?
3: Okay, sir.
7: We love to recite it.
2: As I lie on my back.
3: As I lie on my back.
2: Looking up at the sky.
3: Looking up at the sky.
2: I see a big white bear. Looking down at me.
3: Looking down at me.
2: As I lie on my back.
3: As I lie on my back.
2: Looking up at the sky.
3: Looking up at the sky.
2: I see a ship sailing.
3: I see a ship sailing.
2: On a white sea.
3: On a white sea.
2: As I lie on my back. Looking up at the sky.
3: Looking up at the sky.
2: I see an elephant.
3: I see an elephant.
2: Waving its trunk at me.
3: Waving its trunk at me.
2: As I lie on my back.
3: As I lie on my back.
2: Looking up at the sky.
3: Looking up at the sky.
2: Oh, it's fun. It's fun to me.
3: To see whatever I want to see.
2: So children, you have

0: Did you like the song?
1: Yes, sir, it was lovely.
0: So, children, here is something to do for you, okay?
1: Okay, sir.
0: Sit outside your home or go to any park and see the clouds go by. And tell your friends what you have observed.
1: Okay, sir. It will be lovely.
2: It will be good.
0: Yes. And one thing more. Notice the colors of the clouds and you will find that the clouds also have different colors from time to time.
1: Yes, sir.
3: I have seen rainbow.
4: It has 7 colors.
0: So, children, whenever you see the clouds, they have different
1: shapes.
0: Yes, shapes. And they have different
1: colors.
0: Very nice.
5: Show of Clouds. You were just listening to this program. Program coordinator, Professor Rajendra Pal. Technical coordinator, Bati Lang Lingdo. Child singer, Angel. Child artists, Soham, Vedika, Vanya, Navya, Riddhi and Lavish. Sound recordist, Mayank Kumar. Assistance in production, Kusum Lata. Directed and produced by Ajit Horo. This program was brought to you by CIETNCERT, New Delhi, India. अभी आपने सुना कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम. अगले कार्यक्रम का शीर्षक है तुलसी गौड़ा.
6: ये कार्यक्रम जंगल की एनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली महान आदिवासी पर्यावरण विशेषज्ञ तुलसी गौड़ा के जीवन, उनके पर्यावरण पर शोधों और वृक्षों को बचाने के उनके प्रेरणादायक अभियान की जानकारी देता है. विशेष रूप से मातृ वृक्षों पर उनकी खोज के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है.
7: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहनी
8: तुलसी गौड़ा, 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका.
9: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती.
10: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा.
7: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
11: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है.
12: ये आकाशवाणी

0: प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण।
0: यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। देश भर में प्रसन्नता की लहर।
2: आठ नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम में वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसीगौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता के मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाईं।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों में करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते।

0: हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो दो दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए। हाँ
1: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
0: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
1: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
0: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
0: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
1: अच्छा,
0: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ,
1: अरे ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
0: देखो, पहली बात तो ये कि पौधों में भी जीवन होता है।
1: बिल्कुल होता है।
0: और मुझे लगता है कि वे भी दुख सुख अकेलापन का अनुभव कर सकते हैं, इसीलिए यदि उन्हें उचित दूरी पर आसपास रखा जाए तो वे बेहतर ढंग से बढ़ते हैं।
1: ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात है तुलसी जी,
0: है ना?
1: जी।
0: और उचित दूरी पर आसपास लगाए जाने से वे एक दूसरे के साथ नमी और पोषण को साझा कर सकते हैं।
1: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
0: हाँ, बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
2: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
0: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
2: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
3: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
2: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
4: तुलसी जी, अक्सर मात्र

0: पेड़ों या मात्र वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मात्र वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
1: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
0: अच्छा।
1: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
0: अच्छा।
1: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
0: अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि मातृ वृक्ष मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
1: बिल्कुल सही सुना है आपने। मातृ वृक्ष गोंद की तरह मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं।
0: अच्छा।
1: और आंधी तूफान के समय दूसरे पेड़ों को गिरने या उखड़ने से बचाते हैं।
0: अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने।
1: इतना ही नहीं, यदि कई मातृ वृक्ष आसपास हों, तो छोटे पेड़ों के लिए आसपास की नमी को बनाए रखकर प्राकृतिक ग्रीन हाउस बनाते हैं। वे छोटे और युवा पेड़ों को नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करके उन्हें पालते हैं, समझे?
0: जी, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
1: हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है, ठीक है ना?
0: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत धन्यवाद।
2: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
3: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुलसी गौड़ा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, पूनम एस कुदेसिया और अंजलि, आलेख अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800044559। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तुलसी गौड़ा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

नमस्कार श्रोताओं, मैं शुभ्रा श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम एक ही कलाकार में। आज की इस महफिल को हम सजा रहे हैं गजल गायकी की उस मधुर दिलकश आवाज के नाम जिसने अपने गीतों और गजलों से करोड़ों दिलों को छुआ। जी हां, हम बात कर रहे हैं मशहूर गजल गायक पंकज उधास की। 17 मई 1951 को गुजरात के राजकोट में जन्मे पंकज उधास ने भारतीय संगीत जगत में गजलों को नई पहचान दी। उनकी गायकी में नज़ाकत भी है, मिठास भी और दर्द का एहसास भी। फिल्मी गीत हों या गैर फिल्मी गजलें, उनकी आवाज़ हर अंदाज में दिल को छू जाती है। तो आइए शुरू करते हैं पंकज उधास की यादगार आवाज़ से सजी ये संगीत यात्रा।

पंकज उदास की आवाज में नाम फिल्म का ये गाना आपने सुना। ये गीत केवल एक गाना नहीं बल्कि विदेश में बसे हर भारतीय की भावनाओं का आईना बन गया था। पंकज उदास की भावपूर्ण आवाज ने इस गीत को अमर बना दिया। दोस्तों, पंकज उदास का जन्म गुजरात में राजकोट के पास चारखड़ी जैतपुर में एक जमींदार चारण परिवार में हुआ था। वे तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके पिता का नाम केशुभाई उदास और माँ का नाम जीतूबेन उदास था। उनके सबसे बड़े भाई मनहर उदास ने बॉलीवुड में हिंदी पार्श्व गायक के रूप में सफलता प्राप्त की थी। उनके दूसरे बड़े भाई निर्मल उदास ने भी एक प्रसिद्ध गजल गायक और रहे हैं और तीनों भाइयों में सबसे पहले गायकी का काम उन्होंने ही शुरू किया था। उन्होंने सर BPTI भावनगर से शिक्षा प्राप्त की थी। अपने बचपन में उदास अपने पिता को दिलरुबा वाद्य बजाते देखते थे। संगीत में उनकी और उनके भाइयों की रुचि को देखते हुए उनके पिता ने उन्हें राजकोट में संगीत अकादमी में दाखिला दिलाया। उदास ने शुरू में तबला सीखने के लिए खुद को नामांकित किया, लेकिन बाद में गुलाम कादिर खान साहब से हिंदुस्तानी मुखर शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। इसके बाद उदास ग्वालियर घराने

दोस्तों, पंकज उदास ने 1980 और 90 के दशक में गजल गायकी को घर घर तक पहुंचाया। उनकी आवाज में एक अपनापन था जो सीधे दिल तक उतर जाता है। आइए बात करते हैं इनके अवार्ड्स की और आपको बताते हैं इन्होंने कितने सारे अवार्ड

प्राप्त किए। 2006 में पंकज उधास को गजल गायकी के करियर में सिल्वर जुबली पूरा करने के उपलक्ष्य में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2006 में ही 2005 के सर्वश्रेष्ठ गजल एल्बम के रूप में हसरत को कोलकाता में प्रतिष्ठित कलाकार अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2004 में लंदन के वेम्बली कॉन्फ्रेंस सेंटर में इस प्रतिष्ठित स्थान पर प्रदर्शन के 20 साल पूरे करने के लिए विशेष सम्मान प्रदान किया गया। 2003 में इन सर्च ऑफ मीर नामक सफल एल्बम के लिए एमटीवी इमेज अवार्ड दिया गया। 2003 में ही गजल को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाने के लिए न्यूयॉर्क के बॉलीवुड म्यूजिक अवार्ड में स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2003 में ही गजल और संगीत उद्योग में योगदान के लिए दादा भाई नौरोजी इंटरनेशनल सोसाइटी द्वारा दादा भाई नौरोजी मिलेनियम अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2002 में मुंबई में सहयोग फाउंडेशन द्वारा संगीत क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिया गया। 2002 में ही इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा सम्मानित किया गया। 2001 में मुंबई शहर के रोटरी क्लब द्वारा एक गजल गायक के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वोकेशनल रिकॉग्निशन अवार्ड दिया गया। दोस्तों, इनके अवार्ड्स की लिस्ट तो बहुत ही लंबी है, जिसको बताते बताते तो पूरे कार्यक्रम का समय ही चला जाएगा, मगर हाँ, इनकी आवाज़ दिल में इस तरह उतरती है कि जी करता है बस सुनते ही रहें और सुनते ही रहें।

पंकज उधास और साधना सरगम की आवाज़ में ये गाना आपने सुना मोहरा फिल्म से। दोस्तों, पंकज उधास की गायकी की खासियत ये रही है कि उन्होंने कभी भी ऊंचे सुरों का दिखावा नहीं किया, बल्कि सादगी और एहसास से दिल जीत लिया। गजल गायक के रूप में अपना करियर बनाने के लिए उन्होंने उर्दू भी सीखी। उनकी पहली गजल एल्बम आहट 1980 में रिलीज हुई। यहां से उन्हें सफलता मिलनी शुरू हो गई और 2009 तक वे 40 एल्बम रिलीज कर चुके हैं। 1986 में उदास को नाम फिल्म में अपनी कला का प्रदर्शन करने का एक और अवसर प्राप्त हुआ, जिससे उनको काफी प्रसिद्धि भी मिली। वे पार्श्व गायक के रूप में उन्होंने अपना काम जारी रखा। वे साजन, ये दिल लगी और फिर तेरी कहानी याद आई जैसी कुछ फिल्मों में भी दिखाई दिए। बाद में उदास ने सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर आदाब अर्ज है नाम से एक टैलेंट हंट कार्यक्रम की शुरुआत भी की।

पंकज उधास की गजलों की सबसे बड़ी ताकत रही उनकी साफ उर्दू अदायगी और भावपूर्ण प्रस्तुति। यही वजह है कि उनकी गजलें नई पीढ़ी को भी उतनी ही लोकप्रिय हैं जितनी की पुरानी पीढ़ी को पसंद आती थी। तो दोस्तों, इनके इसी खूबसूरत से गाने के साथ एक ही कलाकार कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हमारे आज के कलाकार थे पंकज उधास।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पहला गाना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में ऐतराज फिल्म से। इस गाने में संगीत निर्देशन किया है हिमेश रेशमिया ने, शब्द रचना समीर की।

श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम का अगला गाना सुनिए। समीर का लिखा, नदीम श्रवण का संगीतबद्ध किया, राज फिल्म से, आवाज अलका याग्निक की।

दोस्तों, अब हम आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में राज रिबूट फिल्म का ये गाना, जिसे लिखा है कौशर मुनीर ने, संगीत से सजाया है जीत गांगुली ने।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम का अगला और आखिरी गाना हम आपको सुनवा रहे हैं राहत फतेह अली खां और श्रेया घोषाल की आवाज़ में दबंग फिल्म से। संगीत है साजिद वाजिद का, शब्द रचना फैज़ अनवर की।

श्रोताओं, इसी गाने के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन की अपनी दो दिन की यात्रा के बाद नॉर्वे के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के सम्मान में स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर वे उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन आज से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी डी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
1: वडचेरी दामोदर मेनोन सतीशन नियम वी स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याज विश्वस्तुम।
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। घरेलू

0: Chidambaram Stadium. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. In the latest standings, Sunrisers Hyderabad are currently placed third with 14 points from 12 matches, having won 7 matches so far and remain firmly in the playoff race. In tennis, Jannik Sinner won the Italian Open title in Rome after defeating Casper Ruud of Norway 6-4, 6-4 in the final. And with that, we end this news bulletin.
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे दिन में 12:15 पर उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का ख्याल गायन और रात 10:30 पर संगीता शंकर का वायलिन वादन। दिन में 1:15 पर गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में बहनें जायका के अंतर्गत सुनेंगी मटका कुल्फी और तरह तरह के आइसक्रीम के बारे में। 2:30 पर लोकगीत सुनिएगा प्रेमचंद, संगीता राय और प्रेम शंकर पांडे से। शाम 5:00 नन्ही दुनिया कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने सुनेंगे आओ जाने क्या है बिग बैंग थ्योरी।

शाम 5:15 बजे युवाणी कार्यक्रम में युवा साथी सुनेंगे आकाशवाणी के 90 साल के उपलक्ष्य में विशेष रूपक घर आंगन की चहकती चिड़िया। शाम 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे अनिल कुमार श्रीवास्तव का कविता पाठ और कमलेश चंद्र यादव और साथियों से लोकगीत। 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत राजेश प्रसाद की वार्ता होगी, विश्व संग्रहालय दिवस पर विशेष बातचीत।

7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुजाता सिंह से गीत और भजन सुनिएगा। रात 8 बजे डॉक्टर अमिताभ उपाध्याय से की गई भेंटवार्ता सुनिएगा। एड्स का टीकाकरण कितना लाभकारी, भेंटकर्ता मोहम्मद शमीम।

रात 8:30 पर कानून और हम कार्यक्रम के अंतर्गत अधिवक्ता श्री धीरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव की वार्ता होगी। सीनियर सिटीजन एक्ट के प्रावधान।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर में।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का राग हिंडोला सारंग में ख्याल गायन।

राग हिंडोला सारंग में ख्याल गायन, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज में। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आपकी पसंद, प्रस्तुति मधु कुमार की।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मधु का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ प्रसन्नचित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम इन खूबसूरत सी पंक्तियों के साथ। आज जो पसंद है कल नापसंद भी हो सकता है। आज का सुकून कल का दर्द बन सकता है, क्योंकि ज़रूरतें बदलती हैं, लोग बदलते हैं, सपने बदलते हैं, एक जैसा हमेशा नहीं रहता। जी हाँ, कोई भी चीज़ जब एक जैसी नहीं रहती तो फिर क्यों हम परेशान हों, क्यों अपने आप को यूँ गमों में डुबो दें। कोई ज़रूरत नहीं है, बस खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और देखिए, आज का ये जो प्रोग्राम है थोड़ा विशेष है। अब आप पूछेंगे भाई विशेष क्यों है? वो ऐसे कि जब आपकी पसंद के मैं संदेशों को पढ़ रही थी तो एक के बाद एक जिन पुराने गीतों की फरमाइश हुई ना, तो ये कार्यक्रम कुछ पुराने गीतों को लेकर ही बन गया। तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करें और जल्दी से चलते हैं अपने इन गीतों की तरफ। और बहुत ही खूबसूरत सा गीत, पहला गीत जो आ रहा है वो है सेहरा फिल्म से, और इस गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की है। नरसिंहगढ़ से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्रांगी, सुखरी कला से अमित जंगल, शकुन आरषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि, नई दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सीटी दीवाना। तो चलिए चलते हैं आपके इस गीत की तरफ। फिल्म का नाम है सेहरा।

दोस्तों, अजीब दुनिया है ये। यहाँ के लोग आपकी अच्छाइयों को भूल जाते हैं, पर आपकी एक गलती को उम्र भर याद रखते हैं। तो फिर ठीक है, जब अच्छा करके भी दुखी मिलना है तब निभाने का शौक छोड़ देना चाहिए। और हम आ गए हैं अपने अगले गीत की तरफ। फिल्म का नाम है आस का पंछी और इस गीत की फरमाइश आई है संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से वारिस अली खान, शहनाज खान, कांकेर से फागु राम यादव, ज्योति ओजस्वी, मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा, पीहू, राजेश कुमार, प्रीति और कार्तिक, डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी और तानिया, हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और इनके परिवार के अन्य सदस्य। तो चलिए चलते हैं अपने इस गीत की तरफ। फिल्म का नाम है आस का पंछी।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद संदेशों पर आधारित। ये कार्यक्रम प्रत्येक सोमवार और बृहस्पतिवार को प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आप हमें इस नंबर पर अपने संदेश और अपनी पसंद के गानों को भेज सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, 8004926250, 8004926250। ध्यान रखिएगा, इस पर आपको कॉल नहीं करनी है, इस पर आपको सिर्फ अपने संदेश और संदेशों के साथ अपनी पसंद के गानों को लिखना है। तो देखिए, ऐसा ही एक गाना आ गया है। फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने। बात तो अभी हो रही थी तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, और ये गीत आ गया देखो रूठा ना करो बात नजरों की सुनो। तो फिर इस गीत की फरमाइश जिन्होंने की है उनके नाम भी आपको बता देते हैं। ये हैं नैनी से प्रदीप, अनिल, विशाल, प्रहलाद, अरुण, संजय, रवि और पवन। मेरठ से दिग्दर्शन, कविता, कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई। बरकाकाना से अफजल ताज, शाहीन, सुल्ताना, सोनू और निप्पी सहानी। करनाल से सुधीर, नूतन, संदीप, जगदीप, प्रजापति, प्रतिमा शर्मा और इशिता शर्मा। डब्बाली से तानिया, लकी और इनके परिवार के अन्य सदस्य। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का तेरे घर के सामने, इस फिल्म का ये गीत।

किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि सजा ये है कि बंजर जमीन हूं मैं, सजा ये है कि बंजर जमीन हूं मैं, जुर्म ये है कि बारिशों से इश्क हो गया। कितनी खूबसूरत सी बात कही है। और हम आ गए हैं अपने अगले खूबसूरत से गीत की तरफ। फिल्म का नाम है अनाड़ी, आवाज़ है लता जी की, और इस गीत की फरमाइश हमें आई है डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिजे, राधिका, बेबी, अनिष्का और तन्मय, किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम और चांदनी नाज, लक्षनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू और इनके परिवार के अन्य सदस्य, जसपुर से रियासत हुसैन, नजमा बेगम, रिफाकत और मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर और इनके परिवार के अन्य सदस्य। तो चलिए सुनते हैं अनाड़ी फिल्म का ये गीत।

अगले गीत की फरमाइश हमें आई है छत्तीसगढ़ से बालकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, उमेश प्रमिला वर्मा, कीर्तिनगर से मानसी गौरव और इनके परिवार के अन्य सदस्य, विदर्भ से संतोष खड़से, विनोद खड़से, भिलाईगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल, सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, औरंगाबाद से अनिल कुमार घोटके, वैशाली, प्राजक्ता, वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश। और आप सबने जिस गीत की फरमाइश की है वो है दूर गगन की छाँव में। बहुत ही खूबसूरत सा गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, लेकिन उससे पहले ये पंक्तियाँ जो जिंदगी के सच को बयां करती हैं। दिल टूटने के बाद भी आदमी पहले जैसा कभी नहीं रहता, हंसता तो है महफिलों में पर अंदर से कुछ नहीं कहता, सब पर भरोसा करना छोड़ देता है, अब हर किसी पे दिल नहीं रहता। जो एक बार सच में टूट जाए वो अंदर से जिंदा नहीं रहता। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हैं, इसीलिए सब सोचते हैं किसी ऐसे जहां में चला जाए जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद, प्रस्तुति थी मधु कुमार की। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। इस दौरे में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय वार्ता और तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शामिल है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे

0: मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। इस दौरे में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय वार्ता और तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शामिल है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद गृहमंत्री बस्तर के लिए रवाना हो गए, जहां वे नेतानार गांव में सीआरपीएफ कैंप परिसर में स्थापित जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर होने से एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। प्रधानमंत्री ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 133 अंक की गिरावट के साथ 75,105, निफ्टी 60 अंक लुढ़ककर 23,584 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has left.

0: ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस अवार्ड से नवाजा। ये स्वीडन का किसी भी सरबराह ममलकत को दिया जाने वाला सबसे बड़ा एजाज है। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर आजम ने कहा कि स्वीडन का आला तरीन एजाज हासिल करना सिर्फ उनके लिए एजाज नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए एजाज है। ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अब तक मिला 31वां आलमी एजाज है। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अपनी सरकारी रिहायशगाह पर कैबिनेट मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में रियासत के मजमूई तरक्की, गुड गवर्नेंस और अवामी सहूलियात की तौसी से मुतालिक मुख्तलिफ अहम तजावीज पर फैसले किए गए। इससे कबल वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने कल अपनी काबीना में नए मुकर्रर करदा और तरक्की पाने वाले वज़रा को कलमदान तफवीज किए। नए मुकर्रर करदा वज़रा में साबिक बीजेपी रियासती सदर भूपेंद्र चौधरी को माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSME का महकमा सौंपा गया है। मनोज कुमार पांडे को खुराक और शहरी सप्लाई का महकमा दिया गया। अजीत पाल सिंह, जिन्हें काबीना में तौसी के दौरान वजीर ममलकत के ओहदे पर तरक्की दी गई है, उन्हें फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के साथ साथ पॉलिटिकल पेंशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। सोमेंद्र तोमर को मिलिट्री वेलफेयर और सूबाई डिफेंस फोर्स के महकमे का चार्ज दिया गया है। चार नए मुकर्रर करदा वज़राए ममलकत को भी कलमदान दिए गए। कृष्णा पासवान को हैवानात और दूध की तरक्की का महकमा, सुरेंद्र दिलेर को रेवेन्यू का महकमा, हंसराज विश्वकर्मा को छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबारी इदारों की वजारत और कैलाश राजपूत को तवानाई और इजाफी तवानाई के जराए का महकमा सौंपा गया। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के जरिए मुनक्किदा इंस्ट्रक्टर एजाजी तकरीब और चेक तकसीम प्रोग्राम में शिरकत की। इस तकरीब का निकाह तालीमी साल 2026-27 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत 24,717 पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर्स के एजाजिया को 9,000 से 17,000 रुपए माहाना करने के लिए किया गया था। इस मौके पर वज़ीर-आला ने कहा कि एजाजिया में इजाफे के साथ साथ रियासती हुकूमत असातिज़ा को 5 लाख रुपए तक के हेल्थ इंश्योरेंस कवर का फायदा फराहम करने जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का इरादा है कि हर बच्चा तालीम हासिल करे ताकि तरक्की याफ्ता भारत का अज़्म पूरा हो सके।
1: जब साफ नियत से कोई सरकार कार्य करती है, स्पष्ट नीति हो, तो परिणाम आने में देर नहीं लगती। प्रदेश के अंदर जो ड्रॉप आउट रेट था लगभग 17-18% के आसपास था, और आज हम इसको घटाते घटाते 3 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं, और हमारा मानना है इसको 0 तक पहुंचाना है। हर बच्चा पढ़ेगा तब विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार हम कर पाएंगे।
0: लखीमपुर खीरी जिले में आज सुबह हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में कम अज कम 9 अफराद जां बहक हो गए। जिला हेडक्वार्टर से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती हाईवे पर अदालीसपुर गांव के करीब यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर सामने से आ रही एक गाड़ी से टकरा गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव काम शुरू कर दिया। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर शदीद रंज का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी जिले में पेश आने वाले सड़क हादसे में जानी नुकसान इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला है। मेरी ताजियत सोगवार खानदान के साथ है। वज़ीर-आला ने मकामी इंतजामिया को जख्मियों और मुतासरीन को फौरी और मुनासिब इमदाद फराहम करने की हिदायत दी। महकमा मौसमियात ने मशरकी उत्तर प्रदेश के शुमाल मशरकी हिस्सों में 20 मई से कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। साथ ही महकमे ने 19 और 20 मई को रियासत के मशरकी और मगरबी हिस्सों में दिन के वक्त कुछ मकामात पर तेज लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दरमियान रियासत में लगातार बढ़ रही जबरदस्त गर्मी और लू के मद्देनजर वज़ीर-आला ने इंतजामिया को चौकन्ना रहने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से मुतासिर मरीजों के इलाज के लिए मुनासिब इंतजाम किए जाएं। वज़ीर-आला ने अस्पतालों में अदवियात, बेड और डॉक्टरों की दस्तियाबी को बरकरार रखते हुए एम्बुलेंस सर्विसेज को फ़ाल रखने की भी हिदायत दी है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
2: हम आकाशवाणी मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर ये आंका

0: के ये आहिस्ता चलते पल, जब वक्त जरा ठहर सा जाता है और दिन की भाग दौड़ के बीच दिल अपने लिए कुछ पल चुरा लेता है, ऐसे सुकून भरे पलों में जब दिन की रफ्तार थोड़ी थम सी जाती है और खामोशी भी कुछ कहने लगती है,
1: जब धूप की आंच और मन की हल्की सी तन्हाई मिलकर एक खूबसूरत एहसास बुनती है और दिल चाहता है कि कुछ ऐसा सुनने का जो सिर्फ शब्द ना हो बल्कि अनुभव बनकर दिल में उतर जाए।
0: कुछ ऐसी बातें जिनमें रिश्तों की खुशबू हो, अपनापन हो और वो एहसास हो जो वक्त के साथ और भी गहरे और अनमोल होते चले जाते हैं। तो इन्हीं खूबसूरत एहसासों को साथ लेकर दोपहर 1:15 से 2 बजे तक हम हैं आपके साथ। तो 45 मिनट के इस खूबसूरत साथ के लिए स्वीकार करिए निकहत
1: और दीप्ति का प्यार भरा नमस्कार। और आपके लिए हम लेकर आए हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम गृहलक्ष्मी, जहां हर बात में अपनापन है और हर एहसास में कोई नई कहानी।
0: बिल्कुल। और दीप्ति, देखो भाई, दोपहर भले ही तप रही हो लेकिन हमारे दिल में उमंगे कम नहीं है, है ना?
1: बिल्कुल।
0: हम तो हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते और चहकते रहेंगे। वो इसलिए क्योंकि हमारे कार्यक्रम पर तो ना गर्मी का असर होता है, ना ठंड का और ना ही बरसात का। मौसम का तो बस हम अपने ही ढंग से मजा लेते हैं, क्यों?
1: बिल्कुल, कितनी अच्छी बात कही। इसीलिए तो हम बहनों को ऐसी बातों से तरोताजा किए रहते हैं जो उनके मन को भाती है, गुदगुदाती है और नए नए अनुभवों से रूबरू कराती है।
0: बिल्कुल।
1: कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी हम अपने इस कार्यक्रम में अपनी बहनों के लिए लाते हैं।
0: हाँ।
1: जिससे बातों ही बातों में पति की बात बहनों तक पहुंच
0: जाए।
1: जाती।
0: बिल्कुल। और देखो, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, अक्सर ना उसे लोग एक जैसा ही समझ लेते हैं, एक जैसा मान लेते हैं, और वो है अकेलापन और एकांत।
1: सही।
0: जब भी कहीं कोई अकेला होता है ना, तो उसे एकांत समझ लिया जाता है, जबकि ये सही नहीं है। इन दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं। तो आज हम अपनी इस चर्चा के माध्यम से इन दोनों में, यानी अकेलापन और एकांत में, फर्क समझने की कोशिश करेंगे। तो अकेलापन और एकांत के बीच का जो अंतर है ना, वो दोनों को नदी के दो किनारों के समान बना देता है। और अकेलेपन का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से अकेला होना नहीं है, बल्कि ये लोगों से घिरे होने पर भी एक तरह का जो अलगाव है वो महसूस करना है। अकेलापन हमें दूसरों से और यहाँ तक कि खुद से भी अलग थलग महसूस कराता है, जबकि एकांत अपने अंतर्मन से गहरा जुड़ाव बनाने में मदद करता है। एकांत में रहना हमारे खुद से एक मुलाकात है, खुद के साथ होना है। एकांत में हम भागदौड़ भरे जीवन की समीक्षा कर सकते हैं, अपने कार्यों का लेखा जोखा कर सकते हैं, यानी खुद को साधने का एक साधन है एकांत, है ना?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए कहा जाता है कि भीड़ में खो जाना आसान है, पर खुद को पाल लेना ही असली सुकून है।
0: बिल्कुल।
1: अकेलापन हमेशा किसी की तलाश में रहता है, किसी की कमी महसूस कराता है और अकेला व्यक्ति हमेशा निराश, उदास, ऐसे ही कुछ बना रहता है।
0: हाँ।
1: जबकि एकांत स्वयं का अपने होने का आनंद है।
0: हाँ।
1: खुद को जानने का एक जरिया है। एकांत में रहने से व्यक्ति उदास नहीं बल्कि वो खुश होता है, क्योंकि उसे कुछ मिल रहा है, वो
0: उसे
1: अपने
0: आनंद
1: आप को
0: मिल रहा है, खुशी
1: खोज
0: मिल
1: रहा
0: रही
1: है।
0: है।
1: बिल्कुल,
0: हाँ।
1: प्रसन्नता मिल रही है, मन शांत रहता है, नए नए पॉजिटिव जो थॉट्स हैं वो आते हैं और जीवन में सुख और आनंद, जो पहले ही कहा उसका
0: हाँ
1: अनुभव
0: हाँ
1: हम करते
0: हाँ बिल्कुल
1: हैं।
0: बिल्कुल सही कह रही हो। और देखो, अकेलापन ना अक्सर ऐसा होता है कि हम भीड़ में भी है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई साथ है ही नहीं।
1: सही।
0: एक गहरा सन्नाटा दिल में पसर जाता है और अपनों की मौजूदगी में भी कुछ अच्छा नहीं लगता। यानी परिवार के सभी लोग साथ हैं,

0: अपने साथ हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है, हम अकेले हैं, है ना। तो ये तन्हाई, ये अकेलापन एक मजबूरी का नाम है, लेकिन एकांत तो एक सुकून भरा किनारा है जहाँ शोर नहीं है, जहाँ शून्यता नहीं है, बल्कि खुद से संवाद की एक अवस्था है।
1: क्या बात है।
0: और देखो, जब हम एकांत में होते हैं ना, तो ये वो अनमोल पल होते हैं जहाँ हमारे विचारों को ईंधन मिलता है।
1: क्या बात, बहुत सुंदर बात।
0: अपने भीतर झांकने के प्रयास में हमारी अपने भीतर आस्था बढ़ती है, नई आशाएं जन्म लेती हैं। तो एकांत अकेलापन की तरह कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि ये वो दर्पण है जहां हम खुद का होना सीखते हैं।
1: बहुत सही, बहुत ही सुंदर बातें आपने कही। और अगर दूसरी तरफ हम अकेलेपन की बात करें, तो उसका शिकार व्यक्ति दुखों के अथाह सागर में डूबा रहता है। ये स्थिति व्यक्ति को उसके क्रिएटिविटी, उसकी रचनात्मकता से दूर कर देता है, उसको खत्म कर देती है। उसमें जो सीखने की, जो उसको अकेलेपन में चीखने की होता है कि वो किस
0: आवाज
1: तरह
0: तो गूंजती
1: उसके
0: है।
1: मतलब वो गूंजती तो है, लेकिन वो उसमें अपने आप को खुद को खो रहा है, वो अपने आप को नहीं सुन पा रहा है, लेकिन उसने दुख की कोई एक उसके
0: मतलब
1: वो अब
0: कहने
1: ये समझ रहा है कि अब दुख में उसका कोई भी साथी नहीं रह गया है। वो अपने ही दुखों, अपनी ही परेशानियों को दूसरों से बांटना तो चाह रहा है, लेकिन इतना उसके अंदर भाव आ चुका है उस अकेलेपन का कि वो उसको रोक ही नहीं पा रहा है।
0: मतलब उसको
1: है
0: ऐसा करने से रोक देता है, यानी अपनी जो
1: बिल्कुल,
0: परेशानियां हैं, अपने जो प्रॉब्लम्स हैं,
1: वो
0: वो
1: अपने
0: दूसरों
1: में
0: से
1: खोता
0: शेयर
1: जा
0: नहीं कर
1: रहा
0: रहा,
1: है।
0: शेयर नहीं कर
1: वो
0: पाता है।
1: एकांत और अकेलेपन के मतलब अंतर नहीं कर रहा है और उस अथाह सागर में डूबता जा रहा है। अकेलापन हमारे सुंदर जीवन को अवसाद जैसे विकृत मनोरोग का भी शिकार बना देता है, जिसे उबरना तो मुश्किल तो नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं होता है। जबकि एकांत में जब हम होते हैं ना, तो जीवन की ये जो लोग हैं,
0: माया
1: मोह
0: है,
1: माया, अहंकार है, इसे छुटकारा पाके दुखों के संसार से मुक्त होकर ज्ञान के मार्ग पर अनवरत यात्रा करना रहता है।
0: बिल्कुल। और देखो, अकेलापन अक्सर एक अभिशाप जैसा लगता है ना, लेकिन एकांत तो बस खुद को जानने का अवसर है। अकेलेपन में इंसान बस बाहर की ओर ही देखता रहता है, लेकिन एकांत में वो भीतर की अनजानी राहें परखता है। अकेलेपन में दुनिया का अभाव और पीड़ा का वास है, लेकिन एकांत में खुद के वजूद का बहुत मीठा एहसास है।
1: सही है।
0: तो बस हम यही कहेंगे कि दोनों में, यानी अकेलापन और एकांत में, अंतर सिर्फ दृष्टिकोण का है। इस जीवन की रीत में अकेलापन अगर अंधेरी रात है, तो एकांत सुबह की धूप। अकेलापन बाहर की दुनिया से कट जाने का डर है, जबकि एकांत अपने ही भीतर का खजाना पाने का दर है।
1: हाँ,
0: तो
1: तो इस
0: दीप्ति, हाँ देखो, हम लोग लगातार बात किए जा रहे हैं अकेलेपन की, एकांत की, लेकिन भाई देखो, इस वक्त ना तो हम अकेले में हैं और ना ही एकांत में हैं, हम तो
1: हम
0: अपनी
1: तो मिस
0: श्रोता बहनों के साथ हैं। और
1: कर
0: जब हम अपनी बहनों के साथ होते हैं तो बातें तो होती ही हैं, लेकिन साथ ही गीत संगीत अगर ना सुना जाए, सुनवाया जाए, तो अधूरा सा
1: थोड़ा सा
0: लगेगा।
1: अधूरा लगता है।
0: तो चलो मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।
1: बिल्कुल।

0: ऐसा समा ना होता। कैसा लगा ये गीत दीप्ति?
1: बहुत, ये तो फेवरेट है। हाँ? बहुत बहुत बहुत सुंदर
0: बहुत खूबसूरत, मतलब तुम्हें भी पसंद आया और उम्मीद करते हैं कि हमारी बहनों को भी जरूर पसंद आया होगा, है ना। तो ऐसे ही खूबसूरत समा में, इन गर्मियों के मौसम में तो जाने की सबकी इच्छा होती है ना, जहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं हो, खूबसूरत नजारा हो।
1: 40 डिग्री जा रहा है टेम्परेचर, और ऐसे भी अब बच्चों की छुट्टियां अभी तो खैर नहीं पड़ी है, पड़ने वाली है,
0: होने वाली है। तो इन फुर्सत के कुछ पलों को सुकून के साथ हम सभी गुजारना चाहते हैं और इन छुट्टियों को यादगार भी बनाना चाहते हैं। तो भाई इन सब के लिए कहीं दूर तफरी पर क्यों ना आप निकले। वैसे तो देखो हम सभी इन छुट्टियों में घूमने फिरने की प्लानिंग करते ही हैं, क्योंकि मौज मस्ती और फैमिली के साथ ट्रैवलिंग का अपना एक अलग ही मजा होता है। तो बहनों अगर आप गर्मी की इन छुट्टियों में परिवार के साथ कहीं घूमने जाना चाह रही हैं, तो बहुत सारी ऐसी बेहतरीन जगह हैं जहाँ का सुहावना मौसम और खूबसूरत नज़ारे आपको गर्मी से राहत दिलाते हैं और परिवार के साथ एक सुकून भरा अनुभव भी आपको देते हैं।
1: तो ऐसी ही कुछ बेहतरीन जगहों के बारे में हम आपको बताएंगे, जहां अगर आप अपने परिवार के साथ घूमने जाएं तो आपको ठंडक तो पहुंचेगी ही, साथ ही आपकी जो यादों की एल्बम है ना वो भी भर जाएगी।

0: बिल्कुल। तो अगर आप पहाड़ों के इस शांत और मनमोहक का
1: सैर
0: सैर
1: करना
0: करना
1: चाहते हैं तो
0: चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश में बसा शहर मनाली यहाँ पर जाने की सबसे खूबसूरत जगह हो सकती है। पहाड़ी हवा, बर्फ से ढकी चोटियाँ और हरी भरी झाड़ियाँ,
1: घाटियां। हाँ
0: घाटियाँ, इसे आज भी गर्मियों की छुट्टियों के लिए सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन में से एक
1: एक
0: बना
1: माना
0: दिया
1: जाता
0: है।
1: है,
0: बिल्कुल।
1: बिल्कुल सही कह रही हो। और ये जो तुम बता रही हो,
0: और व्यास नदी के तट पर बसा ये शहर नेचर लवर और एडवेंचर के शौकीन जो लोग होते हैं उनके लिए तो
1: हाँ
0: स्वर्ग की तरह है।
1: बिल्कुल।
0: अगर आप यहाँ घूमने जाएं तो
1: हाँ
0: सोलंग
1: सोलंग वैली
0: वैली
1: में
0: और एडवेंचर स्पोर्ट्स और रोहतांग पास का भी
1: मजा
0: खूब
1: ले
0: मजा ले
1: सकते
0: सकते
1: हैं, बिल्कुल। और
0: हैं।
1: देखो, समर वेकेशन के लिए शिमला जाना भी बेहतरीन आइडिया होगा। यहाँ की आबोहवा और खूबसूरत मौसम हमेशा ही यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। तो यहाँ अगर आप घूमने जाती हैं तो हलचल भरी मॉल रोड पर जरूर सैर करें, हस्तशिल्प की खरीदारी करें। यहाँ अगर आप अपने परिवार के साथ घूमने जाएंगे तो यकीन मानिए कि आपका जो वेकेशन है काफी यादगार बीतेगा।
0: हाँ, और अगर आप दक्षिण भारत में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो केरल के मुन्नार आपके लिए बेहतरीन जगहों में से हो सकती है।
1: हाँ
0: पश्चिमी घाट पर बसा ये खूबसूरत हिल स्टेशन अपने चाय के बागानों और हरियाली के लिए मशहूर है। यहाँ का मौसम गर्मियों में भी काफ़ी ठंडा और सुहावना बना रहता है। झरने, पहाड़, नेशनल पार्क इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं।
1: और दीप्ति, बात करें कर्नाटक के कूर्ग की, तो कूर्ग को स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है।
0: बहुत खूबसूरत जगह है।
1: कॉफी के बागानों और हरियाली से घिरी यह जगह गर्मियों में राहत देने का काम करती है। यहाँ आप एबी फॉल्स, जंगल ट्रैकिंग और खूबसूरत व्यू पॉइंट्स का आनंद ले सकते हैं। और देखो, पश्चिम बंगाल का खूबसूरत हिल स्टेशन दार्जिलिंग, परिवार के साथ अगर आप छुट्टियां बिताना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगी कि दार्जिलिंग आप जरूर जाइए।
0: हाँ
1: बहुत ही प्यारा शहर है, यहाँ के विशाल चाय के बागान काफी चर्चित हैं। आप परिवार के साथ पहुंचकर इस हिल स्टेशन के प्राकृतिक दृश्यों का लुत्फ उठाइए। बच्चों को यहाँ के फेमस टॉय ट्रेन में घुमाना और टाइगर हिल दिखाना बिल्कुल ना
0: बिल्कुल। और
1: भूलें।
0: उत्तराखंड के नैनीताल की बात करें तो यहाँ मौजूद जिम कार्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे विशाल राष्ट्रीय उद्यान है। बच्चों को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि
1: बिल्कुल
0: यहाँ खूबसूरत वन्य जीवों के साथ सुंदर पेड़ पौधों की बहुत सारी प्रजातियां देखने को मिलती हैं। अपने परिवार के साथ आप यहाँ एडवेंचर जंगल सफारी में जा सकते हैं। जिम कार्बेट में आपके बच्चों को कई एडवेंचर एक्टिविटीज़ में भी शामिल होने का मौका मिलेगा।
1: बिल्कुल
0: इसके साथ ही नैनीताल की प्राकृतिक खूबसूरती तो आप सभी
1: देखने
0: जानते
1: लायक है
0: हैं
1: यहाँ
0: और
1: पर
0: देखने
1: तो। और
0: लायक
1: देखो, मेघालय का जो शिलोंग शहर है ना, घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है दीप्ति। ये जो शहर है अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है। यहाँ की ठंडी हवाएं, झीलें और झरने गर्मियों में लोगों को काफी राहत देते हैं। और उमियम लेक और एलिफेंट फॉल्स यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। इसके अलावा यहाँ का म्यूजिक और लोकल जो मार्केट है वो भी लोगों को बहुत आकर्षित करता है।
0: और मुझे लगता है कि इतनी अच्छी जानकारियां आप दे रही हैं
1: बिल्कुल,
0: तो लोगों को नोट तो कर लेना
1: और नोट कर रहे हैं, मुझे पता है कि हमारी
0: चाहिए।
1: जो बहनें जरूर नोट कर रही होंगी, क्योंकि बच्चों
0: हाँ
1: की कुछ बच्चों की तो छुट्टियां हो भी गई हैं और कुछ बच्चों
0: बिल्कुल।
1: की छुट्टियां भी आगे होने वाली हैं। तो सभी की कुछ ना कुछ तो प्लानिंग है कि कहीं भाई कहाँ घूमने जाना है, कहाँ घूमने नहीं जाना है इस
0: पहले से प्लानिंग हो
1: बार।
0: चुकी है
1: तो इसी
0: तो
1: प्लानिंग के तहत वो जरूर नोट कर रही होंगी, समझ
0: हाँ
1: रही होंगी, सुन
0: सही
1: रही
0: है।
1: हूँ कि
0: हाँ,
1: हो सकता
0: आगे
1: हम।
0: की अगर डेस्टिनेशन की बात करने से पहले थोड़े से सुझाव हैं परिवार को कि जब भी आप जाएं तो पहले से ही जो होटल्स हैं
1: बुक
0: और
1: कर लें।
0: जगहें हैं उनके बारे में आप पूरी डिटेल ले लें
1: हाँ
0: कि आप कैसे वहाँ जा सकते हैं, कैसे स्टे कर सकते हैं वहाँ का, जो भाई बिना खाए तो पिए
1: हाँ
0: तो
1: खाना
0: बीत
1: पीना
0: नहीं
1: कैसा
0: सकता
1: है?
0: है ना, तो हम कहाँ अच्छे से खा सकते हैं, रह सकते हैं और घूमने के लिए कौन सी व्यवस्थाएं सबसे अच्छी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके सफ़र को सबसे ज़्यादा
1: आसान बना देगा
0: आसान
1: और
0: भी बनाएगा
1: खूबसूरत
0: और
1: भी
0: खूबसूरत
1: बनाएगा।
0: भी बनाएगा।
1: और भाई आगे बढ़ते हैं, हम डेस्टिनेशन की बात कर रहे थे कि कहाँ कहाँ घूमने हम जा सकते हैं। तो मसूरी की बात करें ना दीप्ति, तो उत्तराखंड के गढ़वाल में मौजूद मसूरी एक पुरानी जगह है जो हमेशा से ही टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता रहा है।
0: बिल्कुल।
1: इसे क्वीन ऑफ हिल स्टेशन भी कहा जाता है। गर्मी से राहत पाने के लिए ये जगह बेस्ट है और यहाँ कई ऐसी जगह हैं जिसे हर उम्र के लोग पसंद करते
0: बिल्कुल।
1: हैं।
0: और ऊटी

0: बात करें तो यहाँ का जो
1: ब्लू माउंटेन की रानी के नाम से मशहूर
0: है, यहाँ का जो सनसेट है वो अधिकतर लोग देखने जाते हैं, हम लोग भी गए थे। ये दक्षिण भारत का सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशन है। यहाँ के जो चाय बागान है, जो टॉय ट्रेन है, वो
1: बच्चों
0: को
1: बहुत पसंद आती है,
0: बहुत पसंद आती है।
1: तो यही कहूंगी कि जब भी आप ऊटी जाएं तो भाई बच्चों का खास तौर पर ख्याल रखें और टॉय ट्रेन में यात्रा करना बिल्कुल ना भूलें। और परिवार के साथ घूमने के लिए तो भाई अंडमान और निकोबार भी एक बेहतरीन पर्यटक स्थल है। यहाँ की सदाबहार वन और खूबसूरत जो रेतीले समुद्र तट है ना, वो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सेलुलर जेल भी यही है जिसे इतिहास में काला पानी की सजा के लिए जाना जाता है। बच्चे यहाँ के जो भारत के इतिहास के बारे में भी जान सकेंगे। और रॉस आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड भी यहाँ पर देखने लायक है। यहाँ की जो जगह है वो तो देखने लायक है।
0: वैसे गर्मियों के मौसम में आप लद्दाख भी जा सकते हैं।
1: हाँ?
0: सबसे अच्छा माना जाता है वहाँ पर मई और सितंबर के बीच का महीना।
1: हाँ?
0: यहाँ की सड़कें खुल जाती हैं इस महीने में और लोग जो है यहाँ पे खूबसूरत पहाड़ों, झीलों और बौद्ध मठों का आनंद ले सकते हैं। पेंगोंग लेक, मुमरा वैली, लेह की शांत वादियों में यहाँ पर प्रमुख आकर्षण केंद्र है यहाँ के। और यहाँ की ठंडी हवाएं, शांत माहौल इस सफर मतलब इस समर वैकेशन को आपको बहुत ही खास बना देता है।
1: और देखो राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है अगर उसकी बात करें तो वो है माउंट आबू।
0: वाह वाह वाह।
1: रेगिस्तान की भीषण गर्मी से राहत पाने का एक बेहतरीन विकल्प है। यहाँ का सुहावना मौसम इसे भारत में गर्मियों में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक बनाता है। यहाँ अगर आप जाएं तो शांत और झील की सैर जरूर करें और बारीकी से नक्काशी किए गए जो दिलवारा मंदिर है उसको भी आप जरूर देखें। नौका विहार का भी आनंद लें और राजस्थानी हस्तशिल्प की खरीदारी जरूर करें।
0: और अगर आपको मनोरम झीलों, खूबसूरत वादियों का मजा लेना है तो परिवार के साथ श्रीनगर जाएं।
1: बिना इसके जिक्र किए तो
0: अधूरा रह जाता है भाई। यहाँ आप अपने परिवार के साथ डल झील की सवारी करें, सोनमर्ग में घुड़सवारी भी यहाँ कर सकते हैं और भी बहुत सी चीजें हैं जो यहाँ पर आप घूम सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। ट्यूलिप के गार्डन है, शालीमार बाग है, परी महल है, चश्मे शाही है, यहाँ के जो मेन है ये अट्रैक्शन है। आप वहाँ जाइए और उस घूमते घूमते हमारा ये प्यारा सा गीत भी सुनिए।

0: तो भाई हम तो बात ही कर रहे थे कि कहाँ कहाँ आप घूमने जा सकती हैं, लेकिन यहाँ बैठे बैठे ही हमने कश्मीर की सैर कर ली, उसकी खूबसूरत वादियों को नज़ारा भी देख लिया इस गीत के माध्यम से। और देखो दीप्ति, हम लोग अब इस गीत से पहले बात कर रहे थे ना कि कौन कौन से हिल स्टेशन है जहाँ पर हम गर्मी की छुट्टियों में जा सकते हैं, गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए ठंडी ठंडी हवाएं हमें मिलेंगी वहाँ पर, लेकिन इन ठंडी हवाओं को लेना तो अच्छी बात है, लेकिन बिना ठंडी ठंडी चीजें खाए क्या अच्छा लगेगा ठंडी हवाओं का आनंद?
1: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं भाई।
0: तो ठंडी चीजें जैसे कि मटका कुल्फी है या आइसक्रीम है, ये ना खाएं तो हमारी जो
1: गर्मी
0: सफर है, गर्मी है
1: वो सफल नहीं होगी,
0: बिल्कुल भी अच्छे से बीतेगी ही नहीं। तो कुछ मटका कुल्फी की रेसिपी और आइसक्रीम की रेसिपी भी हम अपने श्रोताओं से शेयर करेंगे, लेकिन उसके पहले हम सुनते हैं हमारा जो सेगमेंट है भोर, तो इसका जो विषय है अफवाहों के जन कल्याण के कदम, इस विषय पर हम सुनते हैं नेहा गुप्ता और तनु आर्य की बातचीत।

0: तनु,
1: जी
0: आपने कभी ऐसा देखा है कि जैसे मोबाइल के जरिए या किसी व्यक्ति के जरिए अगर हम एक ही बात को दो चार बार सुनते हैं तो हम उन बातों के साथ बहने लगते हैं
1: जी
0: बिना ये सोचे कि असल में इस बात से पहले हम क्या थे। और शायद मन मस्तिष्क में इस तरह की स्थिति जो है क्रिएट करने लगते हैं या कर लेते हैं असल में, और उसी अनुसार उस रेस में जो कि किसी और व्यक्ति की दी हुई है हम गुलाम बन जाते हैं,
1: बिल्कुल
0: है ना?
1: जी
0: कभी देखा आपने?
1: जी कई बार देखा है, और ऐसा ये अब और ज़्यादा होने लगा है क्योंकि प्रचार प्रसार के माध्यम बहुत हो गए हैं। और जब इस तरीके की कोई एक बात आती है तो दूसरा इंसान उसको अपने तरीके से कैश करने की कोशिश करने लगता है।

0: और वो उन बातों को बढ़ावा देने लगता है बिना ये सोचे कि इसमें हकीकत कितनी है या इसका क्या असर पड़ेगा हमारे समाज पर या हम सब पर।
1: बिल्कुल दोस्तों, जीवन में अचानक से अगर कोई बदलाव होता हो, जब किसी ने कोई बात कही, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि दो चार बार बात, तो एक बार ठहरना ज़रूरी है। हम ठहरें और ये सोचें कि इस खास तरीके के प्रचार से पहले हम कैसे थे, और ये प्रचार का दौर जब बीत जाएगा, किसी बात का अस्तित्व, कहते हैं कि बातें भी ख़त्म हो जाती हैं, उसके बाद क्या होगा? अगर हम इस तरह के गुण अपने अंदर विकसित कर लेते हैं, तो यकीन मानिए, कहते हैं ना कि दुनिया की कोई ताकत हमें हिला नहीं सकती, ना अपना गुलाम बना सकती है।
0: बिल्कुल नेहा जी, और यहाँ पर हमें अपने पाठ्यक्रम की पहली लाइन याद रखनी चाहिए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।
1: जी
0: जो भी परिस्थिति होगी उसमें हम सब एकजुट होके एक तरीके से रहेंगे। और सपोज़ कोई चीज़ अगर हम जैसा ही अफवाहों में सुनते हैं कि अब ये चीज़ अवेलेबल नहीं होगी, तो किसी के लिए नहीं होगी ना। उसको संचित करके या बीच वालों को फायदा पहुंचा के हम कहीं ना कहीं समाज को ही एक दिक्कत में डाल रहे हैं।
1: हाँ, अब जैसे सुधीर श्रोताओं, जैसे तनुजी ने कहा कि मान लीजिए समाज में ऐसी कोई बात हुई कि अमुक चीज़ ख़त्म हो गई है या ख़त्म हो जाएगी, हमने अपना सारा काम धाम छोड़ करके, जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ज़रूरी है, जिस काम में हम लगे हुए हैं, उसको भी हम त्याग देते हैं और हम उसी रेस में कि वो ख़त्म होने वाला है, वो ख़त्म हो जाएगा, उस रेस में शामिल हो गए, है ना? तो आप ज़रा देखिए कि हमारे अंदर का वो गुण कहाँ गया कि हम पहले छानबीन करेंगे, हम उसका रास्ता निकालेंगे, एक ऐसा रास्ता जो हमारी भलाई तो करता ही हो, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम किसी और के लिए भी ये रास्ता जो है बना सकते हैं, दिखा सकते हैं, है ना?
0: मतलब उसका एक अल्टरनेटिव प्लान
1: हाँ
0: है ना।
1: जी, आप ठंडे दिमाग से ज़रूर सोचिए। कई बार हम स्वार्थी हो जाते हैं, हम दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं कि वो व्यक्ति जो पंक्ति के बिल्कुल आखिरी छोर पर या आखिरी जो स्थान है उस पर खड़ा है, मेरे इस स्वार्थ से उसको कैसा लग रहा होगा, वो इंसानियत का नज़ारा कैसे देख रहा होगा, आखिर वो क्या कर रहा होगा उस वक्त
0: बिल्कुल
1: जब
0: नेहा
1: मैं
0: जी,
1: अपने पास अपनी मुट्ठी में चीजों को लेने की कोशिश करती होंगी।
0: बिल्कुल नेहा जी, यही जो आपने कहा ना, यही इसका सलूशन है कि हम पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को देखें। हमारे पास तो इतने हम प्रिविलेज्ड हैं कि हमारे पास उसके ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, लेकिन अफवाहों की वजह से पैनिक करके हम उस इंसान के लिए और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ा देते हैं जो शायद सिर्फ उसी पे निर्भर था, या शायद हमारे पास ऑलरेडी इतना रहता है कि काफ़ी दिन तक उस परिस्थिति के गुजरने तक हमारा काम चलता रहेगा, उसका नहीं चल सकता था, लेकिन हमने और ज़्यादा चीज़ों का संचय करके उसके लिए चीज़ें और ख़राब कर दी।
1: और देखिए सुधीर श्रोताओं, ये बात बौद्ध धर्म में भी लिखी हुई है, गांधी जी भी कहते हैं कि इस धरती पर हमेशा से ही ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध रही हैं, अगर आप लालची बनेंगे तो ये लालच किसी और की बजाय उस व्यक्ति को ही खोखला करती है।
0: बिल्कुल।

भोर के अंतर्गत अभी आप सुन रही थी अफवाहों के जन कल्याण के कदम, इस विषय पर नेहा गुप्ता और तनु आर्य की बातचीत। तो दीप्ति, जैसा कि हमने कहा था कि भाई ठंडी ठंडी चीज़ें अगर हम ना खाएं

0: गर्मी के इस मौसम में, तो गर्मी का ये मौसम ही हमें अधूरा सा
1: सही कह
0: लगेगा
1: रही हैं।
0: है ना। तो हम पूरी तरह से, अगर देखो वैसे तो हर मौसम अपने आप में खास होता है, गर्मी के मौसम का भी हम अपने तरीके से लुत्फ ले सकते हैं, ठंडी ठंडी जगहों पर घूमने घूमने जाकर, ठंडी ठंडी चीज़ों का आनंद लेकर खाकर उसका। तो जैसा कि आपने कहा था कि आज हम मटका कुल्फी या कुछ आइसक्रीम की रेसिपीज अपने श्रोताओं के साथ शेयर करेंगे, तो मटका कुल्फी गर्मी के मौसम में ठंडी और मलाईदार कुल्फी हर किसी की पहली पसंद बन जाती है
1: क्या
0: ना। और
1: बात है।
0: सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने के लिए बाजार से कोई खास सामान लाने की जरूरत नहीं है, घर पर ही रखी हुई बेसिक चीजों से आप झटपट इस कुल्फी को तैयार कर सकती हैं। तो पता है मटका कुल्फी जो मैं बनाती हूँ जिस तरीके से मैं वो शेयर कर रही हूँ, तो इसके लिए हमें चाहिए फुल क्रीम दूध 1 लीटर, आप क्वांटिटी घटा बढ़ा सकती हैं। चीनी आपको लेना है 1/2 कप, स्वाद के अनुसार अपनी, जितना भी आप मीठा चाहती हैं उतना। मिल्क पाउडर आप ले लीजिए 4 बड़े चम्मच, बारीक कटे हुए काजू बादाम और पिस्ता। इलायची पाउडर आपको लेना है 1 छोटा चम्मच, केसर के धागे 10 या 12 गुनगुने दूध में भीगे हुए, और 4 से 5 मिट्टी के छोटे छोटे से मटके कुल्फी जमाने के लिए। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें तो इकट्ठे होने के बाद हम शुरू करेंगे इसको बनाना। तो सबसे पहले आप एक भारी तले वाली कढ़ाई में दूध डालकर तेज आंच पर उबाल लीजिए। जब दूध में उबाल आ जाए तो गैस की आंच जो है वो आप मीडियम कर दें, और दूध को तब तक पकाइए जब तक कि वो आधा ना हो जाए। यानी अगर आपने 1 लीटर दूध लिया है तो 1/2 लीटर पक करके होना चाहिए, उसका आधा हो जाए। और कढ़ाई के जो किनारों पर जमने, जब हम लोग दूध को पकाते हैं ना दीप्ति देर तक पकाते रहते हैं, तो किनारे के लिए मलाई जम जाती है। हाँ, तो जमने खुरच कर बार बार हम उसको दूध में मिला दें, ये कर दें, तो इससे क्या होगा ना, जो कुल्फी है एकदम दानेदार और मलाईदार बनेगी। और जब दूध पककर आधा हो जाए तो इसमें आप मिल्क पाउडर थोड़ी से ठंडे दूध में घोलकर, ताकि गांठ ना पड़े, वो डाल दें, और चीनी डाल दें, इसे अच्छी तरह से आप मिला लीजिए। ठीक है, और फिर 5 मिनट और पका लीजिए। अब इसे गाढ़े दूध में भीगा हुआ केसर, इलायची पाउडर और बारीक कटे हुए जो काजू बादाम और पिस्ता थे ना, वो हम डाल दें। सभी चीजों को मिलाकर 2 मिनट तक और उबालें और फिर गैस को बंद कर दें। कुल्फी के इस तैयार मलाईदार मिश्रण को आप रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दें, और जब ये ठंडा हो जाए तो इस मिश्रण को मिट्टी के छोटे से मटके में आप डाल दीजिए, ऊपर से थोड़े से कटे हुए पिस्ता से सजा दीजिए, और मटकों को आप एल्यूमिनियम फॉइल में अच्छी तरह से कवर कर दें, ताकि कुल्फी के ऊपर बर्फ के जो क्रिस्टल्स हैं वो ना जमे। अब इन्हें कम से कम 7 से 8 घंटे या फिर रात भर के लिए फ्रीजर में जमाने के लिए रख दें। आपकी ठंडी ठंडी सोंधी खुशबू और मलाईदार मटका कुल्फी तैयार है। फ्रीजर से निकाल लीजिए और घर में सभी लोगों को सर्व कीजिए और तारीफ पाइए।
1: कितनी सुंदर बात है और कितनी अच्छी रेसिपी आपने दी। और हाँ। कुल्फी का एक जो देखिए, इसे क्यों कुल्फी इतनी अच्छी लगती है हमको, क्योंकि आइसक्रीम हम जब खाते हैं ना तो वो पिघलने लगती है।
0: हाँ।
1: और उसको हमको खाना पड़ता है जल्दी जल्दी, लेकिन हाँ। कुल्फी इसको इतने अच्छे तरीके से दूध को उबाला जाता है फिर
0: हाँ।
1: जमाया जाता है
0: हाँ।
1: वो पिघलती नहीं है
0: हाँ।
1: वो मुंह में बस घुलती
0: घुलती
1: है,
0: जाती है।
1: इसलिए इसको स्लो फूड का बहुत बेहतरीन उदाहरण भी माना जाता है। तो श्रोताओं, हमारे पास आइसक्रीम भी है और आइसक्रीम हम बनाएंगे आज वेनिला की। तो इसके लिए आप तैयार हो जाइए कस्टर्ड पाउडर के साथ। ये आइसक्रीम बहुत ही गाढ़ी लाजवाब बनती है। कुछ फुल क्रीम जो है, फुल क्रीम दूध 2 कप लीजिए, कस्टर्ड पाउडर उसमें 2 बड़े चम्मच चीनी डाल दीजिए स्वाद अनुसार, फ्रेश क्रीम या जो भी है आपके पास, इलायची
0: मलाई
1: हाँ, वनीला एसेंस, ये सारी चीज़ें आपकी इंग्रेडिएंट्स हैं जो
0: घर मौजूद रहते हैं,
1: घर पर आपके मौजूद रहते हैं। और अब उसको पैन में दूध उबाल लीजिए, और उबलते हुए दूध में उसको 1/2 गुनगुना दूध निकाल लीजिए पहले ही,
0: 1/2 कप
1: हाँ, 1/2 कप निकालिए। अब इस दूध में कस्टर्ड पाउडर को अच्छी तरह मिलाएं, और इस तरह मिलाएं कि उसमें गांठ न पड़ने पाए। अब बचे हुए दूध में चीनी डालकर उसको धीमी आंच पर पकाएं। अब कस्टर्ड के घोल को धीरे धीरे उबलते हुए दूध में मिलाएं और लगातार चलाते रहें, ताकि गाढ़ा होने पर जब वो गाढ़ा होने लगता है ना, वही जो आपने कहा कि वो चिपकने लगता है, तो चिपकने ना पाए और गाढ़ा हो तो गैस बंद कर दें, और इसे पूरी तरह ठंडा होने पर इसमें फ्रेश क्रीम और वेनिला एसेंस डालकर मिक्सी में एक बार थोड़ा सा चला लें। फिर इसके बाद एयर टाइट डिब्बे में डाल के फ्रीजर में डाल दें, फिर वो जब जम जाए निकालिए, स्कूप करिए और पूरे घर को सर्व करिए और इस गर्मी का लुत्फ उठाइए।
0: बिल्कुल, और देखो मटका कुल्फी है या वेनिला आइसक्रीम है या कोई

0: भी आइसक्रीम, ठंडी ठंडी चीज़ें जब हम खाते हैं और साथ में एक अच्छा सा गीत भी बजता रहे तो उसका जो मज़ा है ना
1: वो अपने आप
0: वो
1: दोगुना
0: दुगना हो
1: हो
0: जाता
1: जाता
0: है।
1: है।
0: तो एक गीत अपने श्रोताओं के लिए हम फिर से सुनवा रहे हैं।

0: दीप्ति, आंखों में हमने आपके सपने सजाए हैं, तो भाई सपनों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और आते हैं हकीकत की दुनिया में। और हकीकत की दुनिया में घड़ी का जो इशारा है वो हमें समझना है, और घड़ी का इशारा है कि हम अपने श्रोताओं के साथ बिताए इन खूबसूरत पलों को यहीं पर समेटते हैं, क्योंकि कार्यक्रम का समय हो गया है पूरा। तो फिर मिलने के वादे के साथ लेते हैं अनुमति और कहते हैं
1: नमस्कार।

बहनें सुन रही थीं अपना पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए समाचार जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोरबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा AI गलियारे की शुरूआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
2: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आईं। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी AI कॉरिडोर यानी CTAC का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिक केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन SME और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी LEADIT के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
3: नियम स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याजमाय विश्वस्ततयुम।
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने UDF सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चिनिथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, K. मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता PK कुन्हा

0: कुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
1: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्ली वासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
2: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन

0: मिशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
2: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकगीत। लोकगीत के कार्यक्रम में लीजिए सबसे पहले सुनिए प्रेमचंद और साथियों की आवाज में देवी गीत।

प्रेमचंद और साथियों की आवाज में अभी आपने सुना दादरा लोकगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए संगीता राय की आवाज में लचारी।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: लोकगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए संगीता राय की आवाज में झूमर।

संगीता राय की आवाज में अभी आपने सुना झूमर। लीजिए अब सुनिए प्रेम शंकर पांडे की आवाज में देवी गीत।

प्रेम शंकर पांडे और साथियों की आवाज में अभी आपने सुना कहरवा। इसी के साथ लोकगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3 बजे हैं। प्राइमरी चैनल पर हमारी आज की ये सभा यहीं समाप्त होती है। सायंकालीन सभा में शाम 5 बजे आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, विविध भारती पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा। सुनते रहिए विविध भारती।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है। थोड़ी ही देर में नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम सुनेंगे नन्ही दुनिया। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम सुने नन्ही दुनिया।

0: बच्चों जय हिंद।
1: कैसे हैं आप सब?
0: उम्मीद है दीदी कि बच्चे बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आप जानते हैं आज आपके साथ कौन है इस कार्यक्रम में?
1: मैं हूँ निकहत दीदी और
0: मैं हूँ दीप्ति दीदी।
1: तो दीदी देखिए, हमारे जो नन्हे साथी कार्यक्रम सुन रहे हैं इस समय, उनमें से कई बच्चों की तो गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, है ना? तो ऐसे में कहीं ना कहीं तो जाना बनता ही है ना? मम्मी पापा से तो आप रोज ही कहते होंगे, लेकिन आज हम आपको ले चलेंगे टाइम मशीन पर।
0: अरे अरे अरे, टाइम मशीन, टाइम मशीन। आहा, तो

0: ये टाइम मशीन क्या है?
1: देखो भाई, बच्चे सोचने लगे होंगे और हो सकता है कि वो घबरा भी गए होंगे कि दीदी ये क्या कह रही हैं, है ना। तो भाई मेरे पास इसके लिए एक सीक्रेट है। बच्चों को टाइम मशीन असलियत में वो होती है कि हम सबके लिए एक शहर में होती है, और हम उसे कहते हैं म्यूजियम, यानी कि संग्रहालय।
0: और संग्रहालय का मतलब क्या होता है दीदी?
1: संग्रहालय का मतलब ये होता है कि बहुत सी वस्तुएं, चीजें कलेक्शन करके वहां पर रखी जाती हैं।
0: जो हमारे पास्ट से जुड़ी होती है ना
1: हाँ, अब
0: दीदी?
1: आप ये मत पूछिएगा बच्चों कि भाई ये तो बहुत बोरिंग जगह होती है, ये मत कहिएगा, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि म्यूजियम म्यूजियम जो होता है वो पुरानी चीजों का घर नहीं बल्कि कहानियों का खजाना होता है।
0: बहुत सुंदर बात कही दीदी आपने कि कहानियों का खजाना, और हमारे बच्चे कहानियां सुनने में तो उस्ताद होते
1: हाँ, पसंद
0: हैं।
1: भी बहुत होती है उनको कहानी
0: अब
1: सुनना।
0: सोचिए बच्चों कि अगर आपको वो तलवार देखने को मिल जाए जिसे किसी वीर बहादुर राजा ने, जैसे शिवाजी महाराज ने,

0: सा सपना, कितना सुंदर गाना था, पूरी स्टोरीज हमारी
1: इसमें
0: कवर
1: आ
0: कर
1: गई थी। हाँ, और
0: ली
1: बच्चों
0: है
1: को तो जरूर पसंद आया होगा। अच्छा बच्चों,
0: ना।
1: क्या आपके भी मन में ये सवाल आया है कि ये जो आकाश है ये कितना बड़ा है
0: और
1: और
0: ये
1: ये
0: तारे
1: तारे
0: कितने चमकीले
1: इतने सुंदर
0: हैं।
1: क्यों हैं? या अगर आपकी हमारी अर्थ इस स्पेस में घूम रही है तो ये यूनिवर्स कितना बड़ा है?
0: और या कभी आपको लगा है कि हम इतनी बड़ी यूनिवर्स में हमारी जो अर्थ है वो चक्कर लगा रही है, कहीं हम लुढ़क तो नहीं जाएंगे?
1: जानते हो बच्चों, ये सारे सवाल जब हम बच्चे थे तो हमेशा आते थे कि हमारा जो इतना प्यारा सा यूनिवर्स है जिसमें तारे हैं, सूरज है, चांद है, और तो और हमारी धरती, और धरती की तरह और प्लेनेट्स
0: और भी
1: प्लेनेट्स
0: प्लेट्स।
1: कैसे बने और कैसे हम टंगे हैं इस आकाश में? क्या आकाश इतना ही है जितना हम देखते हैं, या फिर बहुत विशाल?
0: हम मनुष्य बस धरती पर कैसे आए, इसका जवाब तो कभी कभी मम्मी दे देती हैं, कैसे तुम तो बंदर ही थे, ये कह के या एक चाटा लगाया पूरी पृथ्वी घूम जाती थी। लेकिन अब ये सोचिए कि ये नदी कैसे बनी, और ये कैसे बनी
1: ये
0: कि
1: जमी
0: जमी
1: कैसे
0: कैसे
1: बनी
0: बनी,
1: और ये
0: इतना
1: इतना विशाल
0: विशाल जंगल कैसे बना, ये सब
1: समुद्र कैसे
0: कैसे बना,
1: बना? कहीं समतल जमीन है तो कहीं
0: ये
1: ऊंचे
0: ऊंचे
1: ऊंचे
0: ऊंचे
1: पहाड़
0: पहाड़ हैं,
1: हैं।
0: बिल्कुल।
1: चलिए आज हम आपको बताते हैं बिग बैंग की कहानी। तो आप सबने राई या सरसों का दाना तो देखा होगा, है ना? कितना छोटा सा होता है ये।
0: अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है बच्चों कि ऐसे छोटे राई समान दाने यानी बिंदु के अंदर ये सारी धरती, तारे, आकाश, ग्रह सब बंद थे। लेकिन एक दिन वो नन्हा सा पॉइंट गर्म होने लगा, इतना गर्म हो गया कि वो फट पड़ा। अरे फट पड़े का मतलब बॉम्ब नहीं था जो धमाका हो गया, बल्कि एक फैलाव सा होता गया, तीज फैलाव। वैसे ही जैसे गुब्बारे को फैलाते हैं तो वो फैलने लगता है ना, और सेम वैसे ही। और
1: और बच्चों
0: बच्चों सबसे
1: सबसे
0: रोचक बात ये है कि ये पॉइंट अभी भी लगातार फैल रहा है, इसी को कहते हैं बिग बैंग
1: बहुत थ्योरी।
0: थ्योरी।
1: लेकिन बच्चों, मात्र फैलाव हो जाने से सब अचानक से

0: जीव जंतु, मनुष्य, हवा, पानी नहीं बन गए। शुरुआत में सब कुछ इतना गर्म था कि कोई चीज नहीं बन सकता था, सब कुछ एक गर्म सूप की तरह ही था। पर जैसे जैसे इसमें फैलाव बढ़ता गया तो ये धीरे धीरे जो है वो ठंडा होने लगा। फिर धूल और गैस के बादल मिले और उनसे बने चमचमाते तारे और गैलेक्सी, और उस विशाल गैलेक्सी का एक पार्ट हमारी अर्थ है। तो बच्चों कैसी लगी ये बिग बैंग थ्योरी? इस पर और भी बातें हैं तो भाई आज आप अपने मम्मी पापा या भैया दीदी से जरूर पूछिएगा।
1: बच्चों ये भी जानिए आप कि बिग बैंग के पहले वक्त यानी टाइम और समय यानी स्पेस कुछ भी नहीं था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे वीडियो गेम को स्टार्ट बटन दबाकर छोड़ दिया जाए। हाँ, और अभी भी बिग बैंग यानी ब्रह्मांड बनना रुका नहीं है अभी भी, बल्कि इसकी गूंज अभी भी स्पेस में सुनी जा सकती है। तो बच्चों आज रात जब आप आसमान में तारों को देखें तो उन्हें थैंक यू कहना, क्योंकि उन्हीं के अंदर वो जादू बना जिससे आज हम और आप है। कितनी मजेदार बातें हुई ना दीदी आज बच्चों के साथ, कि आज हमने टाइम ट्रेवल भी किया और इस ब्रह्मांड के क्रिएशन को भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की।
0: बिल्कुल। और दीदी देखिए अब हमें कोशिश करना ये है कि टाइम देखना है घड़ी, और घड़ी इशारा कर रही है कि बच्चों को टाटा बाय बाय कहने का समय आ गया है। तो बच्चों अगले नन्ही दुनिया कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए
1: जय हिंद।

0: अभी नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम सुन रहे थे नन्ही दुनिया। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। बस थोड़ी ही देर में युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: आवाज़ वो ताकत है जो सरहदों से नहीं दिलों से जुड़ती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवानी में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अंबुज पांडे, और मेरे साथ हैं
1: मैं हूं पूजा यादव। और अंबुज के साथ पूजा भी आप सभी का स्वागत करती है हमारे खास कार्यक्रम युवानी में।
0: दोस्तों, गर्मी की तपती दोपहर हो या सर्द रातों की तन्हाई, रेडियो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। और आज का दिन तो और भी खास है, क्योंकि देश की आवाज़, जन जन की धड़कन आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो अपने 90 गौरवशाली वर्ष पूरे कर चुका है।
1: बिल्कुल, 8 जून 1936, यही वो ऐतिहासिक दिन था जब इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया, और बाद में इसे आकाशवाणी नाम मिला, जिसका मतलब होता है आसमान से आने वाली वाणी।
0: और सच कहें तो ये सिर्फ एक रेडियो

0: रेडियो स्टेशन नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, संगीत, साहित्य, समाचार और भावनाओं का जीवंत इतिहास है।
1: आज जब मोबाइल और इंटरनेट का दौर है, तब भी रेडियो की जो आत्मीयता है वो आज भी वैसी ही बनी हुई है जैसे अपने समय में थी। आज हम देखें अंबुज की किस तरह से गांव से लेकर शहरों तक रेडियो ने सबको जोड़ कर रखा है।
0: बिल्कुल, चाहे गांव की चौपाल हो, वहां से देखें तो शहर की भाग दौड़ तक, किसान कार्यक्रमों से लेकर युवानी तक, भक्ति संगीत से लेकर समाचार बुलेटिन तक, आकाशवाणी ने हर वर्ग को आवाज दी है।
1: यकीनन, स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में रेडियो ने जागरूकता फैलाई, युद्ध के समय देश को जोड़ा, प्राकृतिक आपदाओं में लोगों तक जरूरी सूचनाएं पहुंचाई, और यहाँ तक कि कोरोना के समय, इतना विकट समय हमारे साथ चल रहा था, लेकिन आकाशवाणी ने हमेशा लोगों को जागरूक करने का काम किया।
0: बिल्कुल, लोगों का मनोबल बनाए रखा, और आज आकाशवाणी देश की अनेक भाषाओं और बोलियों में प्रसारण करती है। ये केवल सूचना का माध्यम नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति को जीवंत अभिलेख है।
1: यकीनन, आकाशवाणी की सबसे बड़ी खूबी या खासियत यही है कि लोगों का विश्वास आज भी इस पर बना हुआ है। जब भी देश को सही जानकारी चाहिए होती है तो लोग अक्सर यही कहते हैं कि भाई रेडियो पे क्या चल रहा है।
0: बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल सत्य है, इसलिए आकाशवाणी हमेशा से सभी का विश्वसनीय रहा है। एक जो सही जानकारी होती है ऑथेंटिसिटी के साथ, पूरी सारी चीजें हमें आकाशवाणी के माध्यम से प्राप्त हो जाती हैं।
1: और 90 साल हम पूरे कर रहे हैं, एक माध्यम 90 साल समाज में अभी भी बना हुआ है, और अंबुज मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कई सालों तक आकाशवाणी इसी तरह से लोगों का विश्वास जीतता रहेगा।
0: बिल्कुल पूजा, और हम और भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं हमारे आज के कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि जब भी हमें सही जानकारी चाहिए होती है, सही खबर चाहिए होती है, तो हमेशा हम एक जो विश्वास होता है वो आकाशवाणी पर दिखाते हैं। और हमेशा जब हमें ये क्लियर करना होता है कि ये सच में सही जानकारी है कि नहीं है, तो हमेशा हम ये पूछते हैं कि रेडियो पर क्या खबर है। लेकिन साथियों, आज की चर्चा सिर्फ आकाशवाणी के गौरव तक सीमित नहीं है। आज देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने इस साल कई राज्यों में सामान्य से अधिक गर्मी और लू की आशंका जताई है।
1: ऐसे में हम सभी का सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है श्रोताओं। तो आइए अब बात करते हैं गर्मी से बचाव के कुछ ज़रूरी उपाय और सरकार ने यानी गवर्नमेंट ने किस तरह की गाइडलाइंस जारी की है, हम उस पर बात करते हैं।
0: दोस्तों, अगर बात करें हीट वेव यानी लू की, तो जब तापमान सामान्य से बहुत अधिक हो जाता है और लगातार जो गर्म हवाएं हैं वो चलें, तब उसे हीट वेव कहा जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA के अनुसार 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक का जो तापमान होता है, ये बेहद ही खतरनाक हो सकता है हमारे लिए।
1: और अम्बुज, गर्मी में सबसे ज़्यादा ख़तरा बच्चों को या जो लेडीज़ हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं खास तौर पर, उनको सबसे ज़्यादा होता है। और ऐसे लोग भी जो काम के लिए बाहर निकलते हैं, तो
0: बिल्कुल
1: गर्मी का सबसे ज़्यादा असर इन लोगों पे पड़ता है।
0: बिल्कुल सही बात है। और सबसे पहली बात है कि अगर आपको गर्मी से अपने आप का बचाव करना है, तो पानी खूब पीजिए जितना हो सके। अगर आपको प्यास लगे भी नहीं, तब पर भी आप पानी का सेवन कीजिए, उसे पीते रहिए बराबर। शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत ही ज़रूरी है।
1: ORS भी आप ले सकते हैं आई थिंक। और ऐसे फ्रूट्स आप ज़रूर खाइए जिसमें पानी खास तौर पर पाया जाता है। अम्बुज, मुझे ऐसा लगता है कि हर फूड का अपना एक सीज़न है। जैसे अभी खरबूज मिल रहा है, तरबूज मिल रहा है, ये आपको ठंडी में नहीं मिलने वाले हैं, तो गर्मी में मिल रहे हैं सही प्राइस पे, तो आप खूब खाइए, जी भर के खाइए।
0: बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक तेज़ धूप में निकलने से बचें। और IMD ने विशेष रूप से सलाह दी है कि इस समय भारी मेहनत वाले काम ना करें।
1: तो आखिर में हम यही कहेंगे कि गर्मी से बचिए, सुरक्षित रहिए और पानी पीजिए, हाइड्रेट रहिए।
0: बिल्कुल। और अगर और इम्पोर्टेंट अगर एक बात बोलना चाहेंगे कि हल्के रंग के जो ढीले और सूती वस्त्र होते हैं, कपड़े
1: बिल्कुल
0: होते हैं, उन्हें पहने। बाहर निकलते समय छाता, टोपी या गमछे का उपयोग करें, इससे आप गर्मी से अपना बचाव कर सकते हैं। और अगर आपको या किसी को चक्कर आ जाए, सिर दर्द हो या बहुत ज़्यादा पसीना आए या शरीर बहुत गर्म लगे, तो हल्के में बिल्कुल ना लें इसे, ये हीट स्ट्रोक का संकेत हो सकता है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को तुरंत छांव में ले जाएं, शरीर को ठंडा करें और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर की मदद भी लें। तो दोस्तों, इस वर्ष जो है, सरकार और प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं, जैसे कि IMD ने विस्तृत हीट वेव गाइडलाइंस जारी की है।

0: में स्कूलों, अस्पतालों और श्रमिकों और आम नागरिकों के लिए अलग अलग सलाह दी गई है कि कैसे वो अपना बचाव कर सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: जैसे कि पीने की पानी की व्यवस्था करना हो गया हर जगह पे जहाँ पे आवश्यकता होती है, और आराम के लिए जो छायादार जो स्थान होते हैं उसकी व्यवस्था करना, और
1: बिल्कुल
0: दोपहर के समय जो भारी कार्य होते हैं वो ना करना। तो ये कुछ ज़रूरी जो बातें थी, एक पॉइंट्स थे जिसके द्वारा हम गर्मी से, हीट वेव से अपना बचाव कर सकते हैं।
1: और गर्मी में खुद का ख्याल ज़रूर रखिए, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: अगर एक बार तबीयत अगर ख़राब हो जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाती है हमारे
0: हाँ
1: लिए।
0: बिल्कुल, अगर हीट वेव का जो स्ट्रोक है, अगर आप उन्हें ये आप उससे प्रभावित हो जाते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद ही ख़तरनाक हो सकता है। फिलहाल पूजा, हम अपने कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक और म्यूजिकल।

तो दोस्तों, हम आज हमारे स्पेशल सेगमेंट में लेकर आए हैं विशेष रूपक, जिसका विषय है घर आंगन की चहकती चिड़िया। वाचन स्वर है दिव्या द्विवेदी और सुधांशु पांडे की। तो आइए सुनते हैं।

20वीं शताब्दी का वो समय जब भारत अपने भीतर एक नए युग की आहट सुन रहा था। देश बदल रहा था, समाज बदल रहा था, लोगों की जिंदगी बदल रही थी, किंतु संवाद के साधन अभी भी सीमित थे। दूरियां इतनी लंबी थीं कि एक प्रांत की धड़कन दूसरे प्रांत तक पहुंचते पहुंचते थम सी जाती थी। ऐसे समय में आकाश की अनंत नीरवता को चीरती हुई एक आवाज़ जन्म लेती है, एक ऐसी आवाज़ जो आगे चलकर करोड़ों भारतीयों के सुख दुख, आशाओं और स्मृतियों की सहभागी बनने वाली थी। ये था आकाशवाणी का जन्म।

0: भारत में रेडियो प्रसारण की प्रारंभिक आहट 1920 के दशक में सुनाई दी, किंतु वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो के औपचारिक गठन के साथ उस ऐतिहासिक यात्रा का आरंभ हुआ जिसने भारतीय जनजीवन को एक नई दिशा दी। स्वतंत्र भारत ने जब अपनी पहली सांस्कृतिक आत्मा को पहचानना शुरू किया, तब इस संस्थान को वह आत्मीय नाम मिला, आकाशवाणी। यह नाम केवल एक शब्द नहीं था, मानो स्वयं आकाश धरती से संवाद करने को उतर आया हो।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।
2: धीरे धीरे ये आवाज शहरों की सीमाओं से निकलकर गांवों की पगडंडियों तक पहुंची। शहरों में इसकी गरिमा कुछ और थी। विश्वविद्यालय के प्रांगणों में, साहित्यिक सभाओं में, बड़े बड़े घरों के शांत कमरों में लोग रेडियो के सामने बैठकर समाचार सुनते, शास्त्रीय संगीत का आनंद लेते और कविताओं की स्वर लहरियों में डूब जाते। वहां आकाशवाणी केवल मनोरंजन नहीं था, एक सांस्कृतिक अनुशासन भी था।
0: और जब यही आकाशवाणी गांवों की ओर बढ़ी तो उसकी भाषा बदल गई, उसका अपनापन बदल गया। मिट्टी के आंगनों में चौपालों की

0: ट्रेन की धीमी रोशनी में रखा वो छोटा सा रेडियो पूरे गांव को एक साथ जोड़ता। कोई किसान, कोई बच्चा उत्सुकता से रेडियो के पास बैठ जाता। कोई दीदी लोकगीत सुनते सुनते मुस्कुरा उठती। खेती किसानी की बातें, मौसम की जानकारी, लोकगीत, आल्हा बिरहा, सब कुछ जैसे गांव की अपनी बोली में रंगा उनको अपना बनाता था।
1: आकाशवाणी ने न केवल समाचार सुनाए, उसने लोगों के अकेलेपन को बांटा भी है। उसने उस भारत को आवाज दी जो किताबों और शहरों से बहुत दूर था। जिन गांवों तक अखबार नहीं पहुंच पाते थे, वहां देश दुनिया की हलचलें रेडियो के सहारे पहुंचती थी। जिन लोगों की कला अपने गांव की चौहद्दी से बाहर कभी नहीं निकल पाती थी, उन्हें आकाशवाणी ने राष्ट्रीय मंच दिया।
0: ये वही समय था जब आकाशवाणी की विकास यात्रा केवल तकनीकी विस्तार नहीं थी, बल्कि भारतीय समाज की आत्मा से जुड़ी हुई एक सांस्कृतिक यात्रा बन गई। उसने साहित्य को घर घर तक पहुंचाया, संगीत को जन जन तक पहुंचाया और लोक कलाओं को विस्मृति के अंधकार से बचाकर नई पीढ़ियों तक पहुंचाया।
1: भारतीय साहित्य के क्षेत्र में आकाशवाणी का योगदान अमूल्य है। कविता जब माइक्रोफोन से निकलकर हवा में बहती थी, तब वो केवल शब्द नहीं रहती थी, वो अनुभव बन जाती थी। कहानियाँ जब रेडियो पर प्रसारित होती थी, तब श्रोता अपने मन में पात्रों के चेहरे स्वयं गढ़ लिया करते थे। आकाशवाणी ने हिंदी सहित अनेक भारतीय भाषाओं के साहित्य को वो मंच दिया है जहां भाषा की सीमाएं समाप्त होकर केवल भावों की सत्ता रह जाती थी।
0: यह संस्थान भारतीय संस्कृति की सजग संरक्षिका भी रहा। लोकगीतों की मिट्टी की महक, शास्त्रीय संगीत की गंभीरता, सूफियाना गायन की रूहानियत और जनपदीय कलाओं की सहजता, इन सब को आकाशवाणी ने अपनी स्वर तरंगों में सहेज लिया। जब अनेक लोक कलाएं समय के अंधेरे में कहीं खोने सी लगी थी, तब आकाशवाणी ने उन्हें अपने प्रसारणों में स्थान देकर जीवित रखा।
1: आकाशवाणी केवल कला का संरक्षण नहीं करती रही, बल्कि कलाकारों को सम्मान और आजीविका भी देती रही। क्षेत्रीय केंद्रों पर लोक गायकों, वादकों, नाटक कर्मियों और जनपदीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करने का खूब अवसर मिला। उनकी प्रस्तुतियों के लिए उन्हें पारिश्रमिक भी दिया गया। कितने ही कलाकारों के घरों में पहली बार उनकी कला की कमाई से चूल्हा जला होगा। किसी लोक गायक ने अपने बच्चों की पढ़ाई करवाई होगी, किसी वादक ने नया साज खरीदा होगा, किसी कलाकार ने पहली बार अपने गांव में सम्मान पाया होगा। इस प्रकार आकाशवाणी ने कला और रोजगार के मध्य एक जीवंत सेतु का निर्माण किया है।

0: इसी गौरवशाली परंपरा का एक उज्जवल अध्याय है आकाशवाणी प्रयागराज केंद्र। संगम की यह भूमि सदियों से ज्ञान, साहित्य और संस्कृति की तपोभूमि रही है। यहाँ की हवाओं में कविता बहती थी, गलियों में साहित्य सांस लेता है और घाटों पर संगीत की अनुगूंज सुनाई देती है। ऐसे नगर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना होना मानो समय की स्वाभाविक मांग थी।
1: इस भीड़ को आप देखें, गांव का आदमी किस तरह से तैयारी कर रहा है और इसका नाम मैंने रखा है अमावस्या का मेला, यानी अमावस्या का मेला। ये भक्ति के रंग में रंगल गांव देखा, ये भक्ति के रंग में रंगल गांव देखा, धर्म में कर्म में सनल गांव देखा, अगल में बगल में सगल गांव देखा, अमावस्या नहाए चलल गांव देखा। एहू हाथे झोरा वहू हाथे झोरा, या कान्ही पर बोरी कपारे पर बोरा। एहू हाथे झोरा वहू हाथे झोरा, या कान्ही पर बोरी कपारे पर बोरा, या कमरी में केहू रजाई में केहू, या कथरी में केहू दुलाई में केहू।

0: आजी रंगावत हई गोड़ देखा हंसत हूँ बब्बा तनी जोड़ देखा घुघुटवे से पूछे पतोहिया की अय्या घुघुटवे से पूछे पतोहिया की अय्या गठरिया में अबका रखा ही बतैया एहर हुए लुग्गा ओहर हुए पूड़ी रामायण के लगे हो मड़ुआ का ढूंढी अचाऊर अचूरा किनारे के ओरी अनेका चपलवा या चारे के ओरी अमौसा का मेला अमौसा का मेला यह हुए भैया अमौसा का मेला।
1: 1 फरवरी वर्ष 1949 को प्रयागराज केंद्र की स्थापना हुई। ये केवल एक भवन का उद्घाटन नहीं था, बल्कि शब्दों, स्वरों और संवेदनाओं को एक नए युग का आरंभ था। इस केंद्र की स्थापना और विकास में पंडित नर्मदेश्वर उपाध्याय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। प्रारंभिक सहायक निदेशक के रूप में उन्होंने इस केंद्र को केवल तकनीकी संस्थान नहीं रहने दिया, बल्कि साहित्य और कला की जीवंत अकादमी बना दिया।
2: समय के साथ साथ प्रयागराज केंद्र ने अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की। A.N. कॉल, K.K. माथुर, L.V. सहारिया, विवेक अग्रवाल और पंडित विद्याभूषण जैसी विभूतियों ने अपने नेतृत्व और सांस्कृतिक दृष्टि से इस केंद्र को नई ऊंचाइयां प्रदान की।
1: प्रयागराज केंद्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी साहित्यिक परंपरा रही है। यहां से महादेवी वर्मा की संवेदनशील वाणी गूंजी है। हरिवंश राय बच्चन ने अपने स्वर से कविता को जीवन दिया है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने विचारों को एक नई दिशा दी है। धर्मवीर भारती, कैलाश गौतम, राम कुमार वर्मा, अमृत राय और अमरकांत जैसे दिग्गजों ने इस केंद्र को अपनी वाणी से गौरवान्वित किया है।
3: कई बरस पहले आकाशवाणी इलाहाबाद का स्टूडियो भाव विभोर हो उठा था बच्चन जी के लोक मधुगान से।

0: ये हमारा सौभाग्य भी है कि आकाशवाणी इलाहाबाद से महादेवी वर्मा जी का जुड़ाव बरसों बरस रहा। तो चलिए अपने श्रोता मित्रों को सुनवाते हैं उसी साक्षात्कार के कुछ अंश। और हाँ श्रोता मित्रों, महादेवी वर्मा जी से बातचीत की है नर्मदेश्वर उपाध्याय जी ने।
1: महादेवी जी, आपका आपके काव्य में जो प्रकृति चित्रण होता रहा है वो आपके समकालीन कवियों से काफी भिन्न रहा है, तो प्रकृति भी आपके साथ वेदनामय होती चली जाती है, ऐसा कैसे रहा है, क्यों रहा है?
2: देखिए, छायावाद और राष्ट्रवाद में जो अंतर है वो अपने आप प्रकृति में अंदर ले आता है। तो हमारे समकालीन छायावाद अधिक छायावाद में, और हमने वो देखा नहीं ग्रहण की, तो हमारे लिए प्रकृति मानो वेदांत के वो सांख्य के वो प्रकृति है जिसमें ब्रह्म तो निर्विकार है और प्रकृति चंचल है, वो ही उसको पाना चाहती है। और छायावाद में हर एक वृक्ष लता सब स्वतंत्र हैं, सब सजीव हैं और एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, और उसमें सांख्य में प्रकृति और पुरुष दोनों भिन्न हैं पर दोनों एक दूसरे को पाना चाहते हैं। तो राष्ट्रवाद तो

0: सब में एक तत्व ढूंढता है, एकता ढूंढता है और आत्मा से परमात्मा की एकता ढूंढता है। छायावाद में चेतना संपन्न है, सब हमारे लिए फूल जीवित हैं, वृक्ष जीवित हैं, हर एक तिनका जीवित है, ये मानते हैं। पर इनके पीछे जो एकता है इसे छायावाद नहीं मानता और इसे रहस्यवाद मानता है। तो जब रहस्यवाद आता है तो आत्मा मानव प्रकृति की जगह हो जाती है, जो मिलना चाहती है उससे
1: जी
0: और मिल नहीं पाती है। तो अगर ऐसा कोई लिखेगा, वैसे भी आप देखिए कि आप दुख में हैं और बादल आ जाएं, बिजली चमके या चाहे फूल खिले, सब में आप दुख ही देखेंगे। आपकी मन की स्थिति वस्तु को वैसा बना देगी, रंग देगी। तो जब साधारण जीवन में ऐसा होता है तब काव्य में क्यों नहीं हो गए?
2: संगीत की दुनिया में भी प्रयागराज केंद्र का स्थान अत्यंत ऊंचा रहा। उस्ताद बिस्मिल्ला खान की शहनाई जब यहाँ गूंजती थी तब लगता था मानो स्वयं भारतीय संस्कृति प्रार्थना में लीन हो गई हो। हरिप्रसाद चौरसिया की बांसुरी, बेगम अख्तर की गजलें, सिद्धेश्वरी देवी की स्वर माधुरी, रसूलन बाई की लोकगंध, किशन महाराज की लयकारी, रघुनाथ सेठ की संगीत साधना और तेजन बाई की लोकध्वनि ने इस केंद्र को संगीत का तीर्थ बना दिया। आकाशवाणी की प्रसिद्ध मंगल ध्वनि को स्वर देने वाले उस्ताद बिस्मिल्ला खान ही थे, जिनकी शहनाई आज भी भारतीय सांस्कृतिक चेतना की प्रतीक मानी जाती है।

0: केंद्र से प्रसारित अनेक कार्यक्रमों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। जिन ढूंढा तिन पाइया नाटक के लिए पूर्व स्टेशन निदेशक आशुतोष सुंदरम को सर्वश्रेष्ठ फीचर का पुरस्कार प्राप्त हुआ।
1: खुशी वाला या खुशी वाला, खुशी ले लो खुशी, छोटी खुशी बड़ी खुशी, सबकी खुशी अपनी खुशी। खुशी वाला आया, खुशी वाला।
2: ए फेरी वाले भैया, ये क्या आवाज लगा रहे हो? बेच तुम रहे हो चूरन, चटनी, गुब्बारे, लॉलीपॉप, और बातें इतनी ऊंची ऊंची, खुशी ले लो खुशी, ये सब क्या है? कैसी खुशी, कौन सी खुशी?
1: अरे बहन जी, मैं तो रोज ही आता हूँ ऐसे ही इसी वक्त, और ऐसे ही आवाज लगाकर मैं सब सामान बेचता हूँ। बच्चों को मेरा चूरन, खट्टी मीठी चटनी बहुत पसंद है। मेरी साइकिल की घंटी सुनकर ये दौड़ आते हैं मेरी तरफ। देखिए देखिए, वो देखिए कैसे दौड़े आ रहे हैं मेरी तरफ। अभी मुझसे चवन्नी अठन्नी का चूरन चटनी लेंगे और ढेर सारी खुशी मन में समेट कर ले जाएंगे।
0: वर्ष 2016 में अभिनय श्रीवास्तव की डॉक्यूमेंट्री डायरी ऑफ अ टाइगर के लिए एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। पुस्तक के 9 प्रतिबिंब को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। वर्ष 2003 में आकाशवाणी को राष्ट्रीय राजभाषा की ट्रॉफी से सम्मानित किया गया, जबकि 2006 और 10 में बेस्ट मेंटेनेंस अवार्ड प्राप्त हुआ। अभिनय श्रीवास्तव के निर्देशन में निर्मित कुंभ की पुनर्यात्रा को 2013 में इनोवेटिव श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। युवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित एवरीवन इज नॉट अ फ्रेंड फीचर को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित किया गया और युवाओं के बीच ये विशेष रूप से सराहा गया।
3: 1960 और 70 के दशक में बच्चों के लिए प्रसारित होने वाले संवादात्मक कार्यक्रमों ने भी विशेष लोकप्रियता

0: अर्जित की। उन कार्यक्रमों में हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, कैलाश गौतम जैसे साहित्यकार बच्चों से आत्मीय संवाद किया करते थे।
1: आज तकनीक बदल गई है, मोबाइल और डिजिटल माध्यमों ने दुनिया को तेज बना दिया है, लेकिन आकाशवाणी की आत्मा आज भी वैसी ही है। आज भी किसी गांव की सुबह रेडियो की आवाज से खुलती है। आज भी कोई बुजुर्ग कान से रेडियो लगाकर समाचार सुनता है। आज भी कोई कलाकार पहली बार स्टूडियो में प्रवेश करते समय उसी गर्व और घबराहट को महसूस करता है।
0: आकाशवाणी केवल एक प्रसारण का माध्यम नहीं है, भारत की जीवित स्मृति है। उसमें शहर की रोशन शामें भी हैं और गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू भी है। उसमें शास्त्रीय संगीत की गंभीरता भी है और चौपाल की सहज हंसी भी है। उसमें साहित्य की ऊंचाइयां भी हैं और लोक जीवन की आत्मीयता भी है।
1: सचमुच आकाशवाणी हर आंगन की चहकती चिड़िया है, ऐसी चिड़िया जिसकी आवाज पीढ़ियों से भारतीय जनमानस के आकाश में गूंज रही है और आने वाले समय में भी यूं ही गूंजती रहे।

0: तो दोस्तों, अभी आपने सुना विशेष रूपक, जिसका विषय था घर आंगन की चहकती चिड़िया। वाचन स्वर था दिव्या द्विवेदी और सुधांशु पांडे की। प्रस्तुति थी भूपेंद्र कुमार मिश्र की। अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट यानी कि प्रेरणा पुंज की, जहां पर हम बात करेंगे हमारे आज की प्रेरणा पुंज की।
1: महात्मा गांधी। महात्मा गांधी केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसी सोच थे जिसने पूरे भारत को एकजुट कर दिया। जब देश गुलामी की अंधेरी रात में खोया हुआ था, तब गांधी जी ने सत्य और अहिंसा की मशाल जलाकर आगे बढ़े।
0: सत्य, अहिंसा और शांति उनके जीवन के सबसे बड़े सिद्धांत थे। उन्होंने अपने विचारों और संघर्षों से पूरे विश्व को प्रभावित किया।
1: गांधी जी ने भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए अनेक आंदोलन चलाए, जैसे असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा और भारत छोड़ो आंदोलन उनके प्रमुख आंदोलन थे। वे मानते थे कि बिना हिंसा के भी बड़ी से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है, और यही वजह है कि लोग उन्हें बापू कहकर पुकारते थे।
0: अगर प्रमुख आंदोलनों की बात करें तो चंपारण आंदोलन 1917 में बिहार के चंपारण में किसानों पर अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ उन्होंने किया था।
1: खेड़ा आंदोलन 1918, गुजरात के खेड़ा जिले में अकाल पड़ने के बाद भी अंग्रेज किसानों से कर वसूल रहे थे। गांधी जी ने किसानों का साथ दिया और अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर किया।
0: उसके बाद असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में हुआ, गांधी जी ने अंग्रेजी वस्तुओं, स्कूलों और सरकारी नौकरियों का बहिष्कार करने को कहा और अंग्रेजों को कमजोर करने के उद्देश्य से ये बातें कही गई। उसके बाद नमक सत्याग्रह, जो कि 1930 में होता है, साबरमती आश्रम दांडी तक पैदल यात्रा की उन्होंने साबरमती आश्रम से, और समुद्र से नमक बनाकर अंग्रेजी कानून का विरोध किया।
1: भारत छोड़ो आंदोलन, ये गांधी जी का सबसे बड़ा आंदोलन था। उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था और अंग्रेजों से भारत छोड़ने की मांग की थी।
0: तो ये थी कुछ बातें हमारे आज की प्रेरणा पुंज की। अब बारी है हमारे आज के प्रश्न की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम प्रतिदिन आपसे एक प्रश्न करते हैं और उसका सही उत्तर हम अगले दिन के कार्यक्रम में आपको बतलाते हैं। तो इसी क्रम में जो हमारा कल का प्रश्न था वो ये था कि नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है। इसका सही उत्तर है

0: कि नोबेल पुरस्कार मुख्य रूप से स्वीडन द्वारा दिया जाता है, लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार नार्वे द्वारा प्रदान किया जाता है। और इसी कड़ी में हमारा आज का जो प्रश्न है वो ये है कि चंद्रमा पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी। आप अपना सही उत्तर हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल आईडी पर भी आप हमें अपने सही उत्तर को भेज सकते हैं, जो कि है yuvvanielde@gmail.com, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। तो इसी के साथ दिव्या, चलते चलते सुन लेते हैं हमारे आज के कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।
1: तो हमें उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा।
0: बिल्कुल, और समय हमारे पास बिल्कुल नहीं है कि हम गीत सुने पूजा, और इस वजह से हम आप सभी से लेते हैं विदा। हम हमारे अगले दिन के कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं अंबुज
1: और मैं पूजा
0: आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।

अभी युवा साथी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गौर स्टोर ने ओस्लो में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत नॉर्वे संबंधों को हरित रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, जो स्वच्छ ऊर्जा, नीली अर्थव्यवस्था और हरित परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: भारत और नॉर्वे की ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए लाभदायक होगा। नॉर्वे आज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ रहा है। दो बड़े मैरिटाइम देश होने के नाते हम साथ मिलकर मरीन इकोनॉमी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग में सहयोग को मजबूत करेंगे।
0: वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, चक्रीय अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष और आर्किटेक क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने भारत EFTA व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते से उत्पन्न होने वाली विशाल अवसरों, विशेष रूप से व्यापार, प्रौद्योगिकी सहयोग और रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी प्रकाश डाला। वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे को धन्यवाद दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे। वे आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस दौरान सामरिक सहयोग बढ़ाने, रक्षा औद्योगिक साझेदारी मजबूत करने, समुद्री सहयोग सुदृढ़ करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त

सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। विदेश मंत्रालय खाड़ी के अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास 2400 घंटे हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने अमेरिका के साथ बातचीत करने के अपने निर्णय को उचित ठहराया है और कहा है कि कूटनीति में गरिमा जरूरी है, लेकिन ईरान अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरेनियम के भंडारों, प्रतिबंधों में राहत और पश्चिम एशिया में महीनों से जारी संघर्ष के लिए क्षतिपूर्ति को लेकर बातचीत में गतिरोध रहते हुए ईरान को नई चेतावनी जारी की है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 जगहों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। अब तक की जांच में परीक्षा से जारी हुए रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न पत्रों के वास्तविक स्रोत का पता चला है।

और कहा है कि कूटनीति में गरिमा जरूरी है, लेकिन ईरान अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरेनियम के भंडारों, प्रतिबंधों में राहत और पश्चिम एशिया में महीनों से जारी संघर्ष के लिए क्षतिपूर्ति को लेकर बातचीत में गतिरोध रहते हुए ईरान को नई चेतावनी जारी की है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 जगहों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। अब तक की जांच में परीक्षा से जारी हुए रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न पत्रों के वास्तविक स्रोत का पता चला है। प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच करने वाले आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के दौरान महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच करने वाले आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद जीत दर्ज कर प्लेऑफ के और करीब आना चाहेगा, जबकि चेन्नई की नजर शीर्ष 4 में प्रवेश करने की होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar.
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। शाम 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे लोक भाषा कविता पाठ अनिल कुमार श्रीवास्तव से। शाम 7:31 पर राजेश प्रसाद की वार्ता सुनवाई जाएगी विश्व संग्रहालय दिवस पर। 7:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा, इसमें हम आपको सुनवाएंगे सुजाता सिंह के गाए भजन और गीत। रात 8 बजे विश्व एड्स वैक्सीन दिवस पर सुनिएगा डॉक्टर अमिताभ उपाध्याय से मोहम्मद शमीम की विशेष भेंटवार्ता, इसका विषय होगा एड्स के टीके का भविष्य। रात 8:30 कानून और हम, इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे अधिवक्ता धीरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव की वार्ता सीनियर सिटीजन एक्ट के प्रावधान। रात 9:30 गजलों पर आधारित कार्यक्रम सुनिए कहकशां। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में संगीता शंकर का वायलिन वादन आप सुन सकते हैं रात 10:30। तो ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। खेल दर्पण कार्यक्रम रात 10 बजे होगा, इसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर उषा यादव से की गई बातचीत आम की फसल में कीट प्रबंधन। 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर रंजीत कुमार की वार्ता पेट दर्द में कारगर होम्योपैथी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित विद्याधर प्रसाद मिश्र का ख्याल गायन होगा सुबह 7:30। पंडित ब्रिज नारायण का सरोद वादन आप सुन सकते हैं दोपहर 12:15 और उस्ताद अमजद अली खां का सरोद वादन रात 10:30। नमस्कार प्रयागराज, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 8:45 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में विभा विश्वास के गाए भजन और गीत प्रसारित होंगे सुबह 9:50 पर। कीर्ति चौधरी के गाए भजन और गीत आप सुनेंगे शाम 7:45 पर। राधेश्याम कुशवाहा और साथी रंजना त्रिपाठी, इनके गाए लोकगीत आप सुनेंगे सुबह 10:05 पर लोक माधुरी कार्यक्रम में। उदयराज सिंह और साथी मोहिनी श्रीवास्तव और प्रशांत मिश्र के गाए लोकगीत आप सुन सकते हैं दिन में 2:30। छेदीलाल और साथियों के गाए लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे शाम 5:00 धरती के गीत कार्यक्रम में। एनसीईआरटी की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम होगा 10:30। दिन में 11:00 सुनिएगा कार्यक्रम एक ही कलाकार। 12:30 श्रोता अपने पसंदीदा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनेंगे हेलो फरमाइश, प्रस्तुति मधु कुमार की होगी। 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी गरिमा यादव की।

अर्थात सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव। शाम 5:15 बजे युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युवाणी, इसमें श्रोता सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो युवा। शाम 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम होगा, इसमें रामायण पाठ सुनवाया जाएगा। 7:31 पर डॉक्टर विंध्यवासिनी त्रिपाठी की वार्ता होगी, यत्नम बिना रत्नम ना लभ्यते। तो ये थे कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रम। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। शिक्षा व्यक्ति में आत्मविश्वास भरती है, कठिन से कठिन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए खुद शिक्षित बनिए, औरों को भी साक्षर बनाइए और सुनते रहिए आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर।

0: एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्स और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं देशगान संवेद स्वरों में।

अभी आप सुन रहे थे देशगान समवेत स्वरों में। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: गीत जो कह जाते हैं कहानी, कार्यक्रम बोलते नगमे की जबानी।
1: तुम इतने दिन की कहां ढूंढता ही रहा, कभी लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड, कभी कैडल रोड, कभी पेडल।
2: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग।
1: पहली बार हुआ।
0: सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
2: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे च ओस्लो नगरे प्रतिबंधित प्रतिनिधिस्तरीय वार्तालापं कृतवन्तौ। कांग्रेस नेता वीडी सतीशनः अद्य प्रातः तिरुवनन्तपुरम नगरस्य केन्द्रीय क्रीडांगणे आयोजिते भव्य समारोहे केरलम राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री रूपेण शपथवचनं स्वीकृतवान्। पश्चिमबंग सर्वकारेण स्वस्य निर्वाचनस्य प्रतिज्ञानुसारं कथित संस्थागत भ्रष्टाचारस्य महिला विरुद्धम् अत्याचारस्य च अन्वेषणार्थं द्वौ अन्वेषणायोगौ निर्मितौ। स्वास्थ्य परामर्शपत्रे उष्णतरंगस्य स्थितिं निवारयितुं आयुर्वेदादि विविध आयुष प्रणाल्याः पारंपरिक स्वास्थ्य निवारक उपायाः अपि समाविष्टाः सन्ति। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स दलं एमए चिदंबरम क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलं सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे च ओस्लो नगरे प्रतिबंधित प्रतिनिधिस्तरीय वार्तालापं कृतवन्तौ। स्वक्षोर्जायाः नील अर्थव्यवस्थायाः हरित संक्रमणस्य च क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं महत्वपूर्णं सोपानं लक्ष्यीकृत्य भारत नॉर्वे सम्बन्धं हरित सामरिक सहभागित्वं प्रति उन्नतीकर्तुं उभावपि नेतारौ सहमतौ अभवताम्।
1: आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी।
0: वार्तालापावधौ उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिक सम्बन्धानां सम्पूर्ण क्षेत्रस्य समीक्षाम् अकुरुताम्।
1: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य स्वीडन देशस्य द्विदिवसीया यात्रा समापिता। स्वीडन देशस्य प्रवासे अनेकानि महत्वपूर्णानि परिणामानि प्राप्तानि येन द्वैपाक्षिक

0: सम्बन्धेषु नूतना गतिः प्राप्ता इति श्रीमोदिना सामाजिकान्तर्जालीयपटले उक्तम्। सः अवदत् यत् तेषां द्वैपाक्षिक उपबन्धान् व्यूहात्मक सहभागित्वं प्रति उन्नतीकरणात् आरभ्य संयुक्त नवान्वेषण सहभागित्वम् इत्यस्य द्वितीयो भागः अथ भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता मार्गस्य आरम्भात् आरभ्य आगामिषु पञ्चवर्षेषु द्वैपाक्षिक व्यापारं द्विगुणीकरणस्य लक्ष्यम् अभवदिति। सः स्वीडन देशस्य जनेभ्यः स्वीडन देशस्य सर्वकाराय प्रधानमन्त्री उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यस्मै च स्नेहाभिवर्षणाय धन्यवादभावान् प्रायच्छत्। अग्रिमेषु पञ्चवर्षेषु द्वैपाक्षिक आर्थिक विनिमयं द्विगुणीकर्तुं मेक इन इण्डिया मेड विद स्वीडन इत्येतयोश्च उपक्रमयोः विशेषतः हरित हाइड्रोजन सेमीकंडक्टर्स उन्नत विनिर्माणम् इत्यादिषु क्षेत्रेषु सहकारं सुदृढीकर्तुं समग्र मार्गचित्रस्य लक्ष्यम् अस्ति इति सः प्रावोचत्। कांग्रेस दलस्य वीडी सदीशनः अद्य प्रातः तिरुवनन्तपुरम नगरस्य केन्द्रीय क्रीडांगणे आयोजिते भव्य समारोहे केरलम राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री रूपेण शपथवचनं स्वीकृतवान्। राज्यपालः राजेन्द्रन विश्वनाथ आर्लेकरः श्रीसतीशनं पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं कारितवान्। मुख्यमन्त्रिणा सह एकविंशतिः सदस्याः मन्त्रिपरिषदः कार्यभारं स्वीकृतवन्तः। अस्मिन् कार्यक्रमे कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड्गे, कांग्रेस दलस्य नेता राहुल गांधी, कर्णाटकस्य मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, तेलंगाना राज्यस्य मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेशस्य मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, केरलस्य भाजपा पक्षस्य राज्याध्यक्षः राजीव चंद्रशेखरादयः नेतारः उपस्थिताः आसन्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। पश्चिमबङ्गसर्वकारेण स्वस्य निर्वाचनस्य प्रतिज्ञानुसारं कथितसंस्थागत भ्रष्टाचारस्य महिलाविरुद्धम् अत्याचारस्य च अन्वेषणार्थं द्वौ अन्वेषण आयोगौ निर्मितौ। मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी अद्य राज्यमंत्रिमण्डलस्य अनुमोदनानन्तरम् अस्य निर्णयस्य घोषणां कृतवान्। केन्द्रीय गृहसहकारिता च मन्त्री अमितशाह अद्य रायपुरे राज्यस्तरीय कार्यक्रमे अत्याधुनिक डायल 112 इति आपत्कालीन प्रतिक्रियावाहनानाम् आधुनिक फॉरेंसिक मोबाइल यानानां च ध्वज प्रदर्शनपूर्वकं शुभारम्भं विहितवान्। राज्यस्य विभिन्नेषु मण्डलेषु नियोजनार्थम् अद्य आहत्य 400 नूतनोन्नतापत्कालिक वाहनानि लोकार्पितम्। अस्मिन् अवसरे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, छत्तीसगढ़ विधानसभाध्यक्ष रमण सिंहश्च उपस्थिताः आसन्। सर्वकारः अवदत् यत् देशे तैलेन्धन शोधनागाराणि सामान्यरूपेण कार्यं कुर्वन्ति। भारते च वर्तमानिक पश्चिम एशिया संकटेन आयात बाधायाः अनन्तरम् अपि पर्याप्तानि अशोधित तैलेन्धन भण्डाराणि सन्ति इति। पश्चिम एशियायाः साम्प्रतिक स्थिति विषये अद्य नवदिल्ली नगरे अन्तर्मन्त्रालयीयं विवरणं प्रायच्छन् पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिव पदासीना सुजाता शर्मा इत्येषा अवदत् यत् देशे पेट्रोल डीजल एलपीजी प्राकृतिक गैस इत्येतेषां पर्याप्त भण्डारम् अस्ति इति।
1: हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर है और हमारे पास सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज हैं, पेट्रोल डीजल एलपीजी और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं और किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर या रिटेल आउटलेट पर ड्राई आउट नहीं है, लेकिन कई जगह पर अफवाहों के चलते पैनिक बाइंग देखी जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि जो बल्क सेल था वो पंप सेल पर भी शिफ्ट हो रहा है।
0: आयुष मन्त्रालयः अद्य वर्तमान ग्रीष्मकालाय अत्यधिक उष्णतायाः सह उष्णतरङ्गस्य च विषये विस्तृतं सार्वजनिक स्वास्थ्य परामर्शं प्राकाशयत्। परामर्शत्वेन मन्त्रालयेन उक्तं यत् पर्याप्ततया जलग्रहणं, व्यस्ततायाम् अपि सूर्यप्रकाशस्य प्रत्यक्ष संसर्गात् निवारणं, विद्युत्श्लेष्यै समृद्धानां ऋतुकालिक फलानां द्रवाणां च सेवनं करणीयमिति प्राकाशयन्। स्वास्थ्य परामर्श पत्रे उष्णतरङ्गस्य स्थितिं निवारयितुम् आयुर्वेद सिद्ध योग यूनानी होमियोपैथी इत्यादीनां विविध आयुष प्रणाल्याः पारम्परिक स्वास्थ्य निवारक उपायाः अपि समाविष्टाः सन्ति। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः अवदत् यत् वैश्विक समस्याभिः सह अनिश्चिततासु अपि भारतं द्रुतगत्या प्रगतिं कुर्वदस्ति। अद्य नवदिल्ल्यां भारत व्यापार महोत्सवस्य अन्तर्जालीय पटलस्य उद्घाटने श्रीगोयलः अग्रे गन्तुम् उत्साहः कदापि न न्यूनीभवति। तथा च सर्वे अविरामं कार्यं कुर्वन्ति।

0: तो इति उक्तवान।
1: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच। और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा स्विट्जरलैंड देशस्य जिनोवा नगरे आयोजिते 79वें विश्व स्वास्थ्य सभायाः अनन्तरं विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य महानिदेशकेन सह मिलितवान्। सामाजिक पटले स्वास्थ्य मंत्रालयेन उक्तं यत् श्री नड्डाः पुनः दृढीकृतवान् यत् वैश्विक स्वास्थ्य समता परिवर्तयितुं भारतस्य प्रतिबद्धता अस्ति इति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अद्य वियतनाम दक्षिण कोरिया देशयोः यात्रायाम् अस्ति। सः वियतनाम देशस्य हनोई इत्यत्र संप्राप्तवान्। वियतनाम देशस्य प्रवासावधौ राजनाथ सिंह वियतनाम देशस्य राष्ट्रीय रक्षामंत्रिणा जनरल फॉन वॉन जियांग इत्यनेन सह द्वैपाक्षिकं वार्तालापं करिष्यति। सामाजिक अंतर्जालीय पटले मंत्री अवदत् यत् सः द्वैपाक्षिक संबंधानां व्याप्तिम् अधिकं विस्तारयितुम् उभयोः देशयोः भ्रमणार्थम् उत्सुकः अस्ति इति। सः अवदत् यत् सामरिक सैन्य सहयोगस्य गहनता, रक्षा औद्योगिक सहभागित्वस्य सुदृढीकरणं, समुद्रीय सहयोगस्य संवर्धनार्थं भारत प्रशांत क्षेत्रे शान्तेः स्थिरतायाः च प्रोत्साहनम् अस्य केन्द्रबिन्दुः भविष्यति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य आतिथेय चेन्नई सुपर किंग्स दलम् एमए चिदंबरम क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलम् सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं 7:30 भविष्यति इति वार्ताः।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ डीआरएम।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। किसान भाई अपना कार्यक्रम सुने पंचायत घर।

0: राम राम।
1: और बद्री भैया,
2: हाँ सुमिरन भैया, बड़ी दिन बाद पंचायती,
1: आज बड़े दिन बाद पंचायती में भेट भाई बा। हम देखा थई मार गमछा उमछा लपेटे हया।
2: ए भैया समझोगे तो लागत यह है लूक।
1: अरे एकदम लूक लागत बाटे, दिन में निकला रहे देखे रहे कि एकदम मार कपार बरत बाटे। और भाई दौराजा तो भाई अपने पूरे चरम पर हैं, और जहाँ जीव जंतु प्राणी सब भैया परेशान बाटेन कि भाई जोन गर्मी पड़त बाटे।
2: ए भैया घरे से निकले से पहले 100 बार सोचे पड़त है निकलब तो भूंज के लौटब कि सोझे लौटब।
1: सही बात बाटे, मगर यही देखा यही गर्मी में खेती किसानी के काम भी पड़ा बाटे और सब चीज उन चीज काम पड़ा बा।
2: सही बात
1: भैया, कुल मिलाई के कहे के मतलब ये बा कि अगर निकले के बाटे आपके तो भाई बच बचाए के निकले, कपड़ा लत्ता कायदे से पहने रहे, खाई पी के निकले।
2: बिल्कुल,
1: जो निफराद बाटे खीरा ककड़ी ई जो निफराद बाटे एकर प्रयोग करें खाई पिए एक, तो भैया जोन स्वास्थ्य पर आपके दुष्प्रभाव पड़त बा उ ना पड़े, आपके लू ना लगे, आप स्वस्थ रहेंगे।
2: बिल्कुल, और सही क्या भैया, देखा खेती किसानी में काम है इसमें भैया बहुत भेटान बा। देखा जे उर्दी मूंग बोइल हैं अगर उनका तो काम बढ़िया बा, जे नहीं बोए हैं देखा अब हम विलंब कौनो कारण से ना करें। अगर खेत आपको सुखाएगा हो माटी पाक ना हो तो एक बार हम पानी का भैया दुगला डाय दिया या तो पट्टा मार दिया और हम कम से कम 3 दिन का गैप दे क्योंकि जोताई करा के बोई दे।
1: बद्री भैया बात ये बाटे ना कि भाई खेती किसानी का काम ऐसा होता कि भाई जानकारी अगर सही मिले और सही समय पर अगर काम अगर किया जाए तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ आपके फायदा मिले।
2: बिल्कुल,
1: अब जैसे खेती किसानी के बाद भाई तो भाई जोन किसान भाई सब्जियन का खेती किए हैं, अब देखा सबसे जरूरी बात कुलव खेती हो जोन बाटे, चाहे सब्जियन का हो चाहे जे तरह का खेती हो। अब सब्जी की बात अगर की जाए तो जोन सब्जी आपका पक गई बाटे, जोन सब्जी आपके हो गई बाटे, ओकर सबसे जरूरी बात सही समय पे तोड़ाई। अगर सही समय पे ओकर तोड़ाई ना करी तो भाई जोन मौसम चलत बाटे।

0: कि एक दो दिन में सारा कहानी खत्म हो जाए और
1: एकदम
0: अच्छा
1: एकदम
0: मूल्य ओकर ना मिले।
1: एकदम
0: तो भाई
1: भैया,
0: ओका देखा ही संजय सवेरे जहाँ देखा ही आपका फसल कौने अवस्था में बाटाई, तोड़ाई के अवस्था में बाटाई, तो ओका तोड़ाई के तुरंत ही भाई ओका जो है बाजार लेके आवे तभी सही मूल्य मिले।
1: हम कहे कि सुमिरन भैया
0: हाँ
1: देखा आज एक बड़ा विशेष दिन बा
0: हाँ
1: भैया,
0: बताओ बताओ।
1: आज भैया अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस बा।
0: अच्छा
1: और भैया ई समझा के देखा आपने तो प्रयागराज में संग्रहालय बा, आपन इतिहास जाने को होए, आपन संस्कृति जाने को होए,
0: बिल्कुल।
1: और हमारे शुरुआत कहाँ भय रही और ओका कैसे स्वयं से जोड़ सकी, ओकरे बर ई दिन बड़ा भैया खास हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया, कौनो भी समाज हो था अगर सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो भाई संग्रहालय की भूमिका बहुत महत्ती हो जाता है। भाई संग्रहालय में ऐसा इंसान चीज होती है कि भाई जेके आप अगर समय में जावा चाह, पुराने समय में अगर जावा चाह तो वो चीज देख के आप समझ सकते कि उस समय का समय का रहा,
1: सही
0: उस
1: बात है
0: समय आप
1: भैया,
0: कैसे रहा, उस समय कला कैसन रही, उस समय संस्कृति कैसन रही, उस समय भाषा कैसन रही।
1: भैया उस समय हम एक एक बार गए अपने ही प्रयागराज वाले में संग्रहालय में, अब समझा भाला पुरान पुरान देखे,
0: हाँ
1: तलवार पुरान पुरान देखे, पत्थरे का नोक वाला हथियार देखे, तो भैया लगा कि देखा हमारे पुरानिया लोग कैसे कैसे धीरे धीरे आज ही युग आई का है कि भैया बटन दबाए ना मिसाइल निकल
0: तब
1: जाती
0: देखा
1: है।
0: तो ये चीज देखा, इतिहास से आदमी सीख सकत है और इतिहास हमें पचन के कैसे पता चले, जोन ये कला संस्कृति में तमाम किताब बाटें, जोन और रचना भाई हैं या जोन संग्रहालय बाटें, ये सब चीज एक तरह से भाई सिखावे के काम करते हैं, समाज में नई अलग अलग जगावे के काम करते हैं। तो जोन हम सब देखी था, समझी था, पढ़ी था, भाई वही चीज के अपने जीवन में उतार के अपने जीवन के बेहतर बनाई जा सकत
1: बिल्कुल
0: है।
1: भैया, और ये भैया अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जोन बा ये 1977 में एका भैया अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा शुरू किया गया रहा, और यह बार भैया 2026 में एकर जोन विषय रखा गया है, थीम रखी गई है, शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय।
0: बिल्कुल। अब देखा अनुसंधान की बात की है तो अपने खेती किसानी में भी अनुसंधान का कितना महत्व होता
1: सही
0: है।
1: बात
0: अब
1: है
0: खेती
1: भैया।
0: किसानी पहले कैसन होत रही, भाई पहले हम सब क्या करते रहे थे कि अपने खाए बड़े जोन उगे भाई उसका खावा जाए और वही से भाई अपन जीवन यापन होत रहा।
1: ये सुमरन भैया आप
0: हाँ
1: बहुत सही याद दिया, देखा पहले जो हमारे लोगों को खेती किसानी रही, बहुत पहले की बात करें, आज से 4-5 हज़ार साल पीछे चला जा तो भैया तब केवल नदी घाटी की तरह खेती होत रही है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता वगैरह हम लोग सुने ही कि नदी के किनारे जो केवल रहत रहा तब खेती होत रही, तनिक हम लोग सिविलाइजेशन आवत बढ़े बढ़ेन तो भैया क्या करें कि तालाब उलाब गाँव बनावे लगे, तो फिर तालाब से फिर नहर आई गए नहर से, और आजकल तो भैया पानी बचाओ बड़े सुविधा शुरू भेला किसान
0: बिल्कुल। तो
1: का।
0: बद्री भैया जो नहीं
1: हाँ
0: बात कहे ना कि
1: हाँ
0: पानी बचावे बिना,
1: हाँ
0: देखा कौनो तकनीक आवे, कौनो अनुसंधान होता, कौनो पढ़ाई लिखाई होता, वो यही बड़े होता कि संसाधन का सही से प्रयोग कैसे किया
1: प्रयोग
0: जाए।
1: कैसे
0: भाई
1: करें,
0: अगर पानी की बात की है तो पानी का सही प्रयोग कैसे किया जाए।
1: सही
0: अपने
1: बात
0: खेती
1: है।
0: किसानी में सिंचाई का जो नया नया तरीका आवत बाटे, भाई सिंचाई कई तरीके से की जा सकता है। एक तरफ पहले पारंपरिक जो सिंचाई होती रही वो
1: सही
0: बाटे,
1: बात है।
0: दूसर तरह की सिंचाई बा ड्रिप तरीके, ड्रिप विधि से आप कह सकते हैं,
1: आ
0: नाली विधि से आप कह सकते हैं,
1: बिल्कुल।
0: आप जय का नाम बा स्प्रिंकलर विधि से कह सकते हैं। तो जो नई तकनीक आई गई बाटे ओकर मतलब यही बा कि कैसे संसाधन बचावा जाए, और
1: बिल्कुल
0: हम सब तभी प्रगतिशील किसान कहलाऊ जब हम खेती किसानी जोन विशेषज्ञ भैया बतावतिन, जोन वैज्ञानिक भैया बतावतिन, ओ तरीके से अगर खेती किसानी होए तभी भैया देखे प्रगतिशीलता अपनी खेती किसानी में आए।
1: बिल्कुल सुमिरन भैया, और देखा मानसून भैया जल्दी नावे वाला है, तो सबसे जरूरी बात कि अगर आप जितना पानी का उपयोग करा यानी प्रकृति से जितना चीज लेहे यहाँ ओका आप कैसे संयोजबा, एकरे बरे आप तैयारी अभिने शुरू कर दे।
0: शुरू कई द, और जैसे कहा जाता है ना कि जब खाली बैठे रहे ना तो भैया आगे की सुध लेत रहे। अब
1: बिल्कुल
0: आगे की सुध कैसे, जैसे बद्री भैया बताएं कि मानसून जल्दी आवे वाले के बाटे, तो मानसून आवे के पहले जोन बाग बागवानी का काम बाटे ऊ पहले कैला, जोन गड्ढा
1: बिल्कुल
0: खोदे के बाद जोन आपके पौधा लगावे के बाटे ओकर तैयारी कैला। दूसर चीज ये बा कि भाई मेड़बंदी जोन किसान भैया हरे ना किए हुए तो मेड़ डाण बांध लेबा तो भैया आगे जोन पानी आवे वाला बाटे उनमें आपके फायदा होए,
1: सही
0: कहे कि
1: बात
0: जोन
1: है
0: आपके खेत का जोन ऊपरी सतह होता है भाई सारा पोषक तत्व वही सतह में होता
1: बिल्कुल
0: है,
1: बिल्कुल
0: मेड़ ना बंद बा तो जोन पानी बरसे, पानी बरस के जोन ऊपर सतह रहे ओके बहाई के ले जाए,
1: सही बात
0: आपके
1: है
0: खेत के जोन गुणवत्ता रहे, जो ना आपके खेत में ताकत रहे, भाई ताकत तो बही जाए तो क्या करे फिर भाई, होए कि भैया एक दुई बोरा खाद डाला, चार बोरा खाद डाला।
1: सही बात है भैया, और ये बहुत बढ़िया बात बताया कि देखा ओका तो रुकता है आपके खेते जो ऊपर वाली माटी रही, ई बहाना हो तो भैया जो ना आपके गाँव में तालाब बा ओका बढ़िया।

0: चाहे सुमित तैयार कराओ, कर
1: एकदम
0: खुदाई
1: एकदम
0: करा और चाहे श्रमदान करा। और देखा भैया अपने किया तो इतनी बढ़िया बढ़िया, चाहे मनरेगा योजना वगैरह है तो नामों देखा होगा बदल दिए हैं, तो भैया खुदाई के तालाब वहीं अगर तैयार कर ले बया, तो जोन बम्बा कहा थी नहीं कि भैया छोड़ दे था पानी
1: हाँ
0: नहीं पकड़ता
1: हाँ
0: है, बोरिंग से पानी नहीं आवता है, तो अगर आप वह पानी इकट्ठा कर लिया और नीचे जाए के चला जाता है तो समझा कि साल भर एक रिचार्ज करे का आवश्यकता आपको जोन रही वो कब पूरी
1: बिल्कुल
0: कर लिया।
1: भैया, भूमिगत जल तो भैया देखा हमरे आपका ई कर्तव्य बाटे ही। जो ने एक बात कहा ना कि भाई प्रकृति से जितना लेत है उतना तो ना दे पाऊबा, काहे कि बहुत कुछ लेत है,
0: सही बात
1: पर
0: है।
1: तोहार ई कर्तव्य बाटे कि जितना तोहार पावरुख बाटे ओ हिसाब से ओका उतना वापस कर दे। अब जैसे ये बात की है कि भाई भूमिगत जल अगर देखा जाए तो ये जोन पोखरा बाटे जोन ई जल संसाधन होतीन भाई, एक अगर साफ सुथरा कर लिया जाए तो इमन जोन बारिश का पानी आए इसे कम से कम नहीं तो कुछ तो अच्छा होए, कम से कम कुछ तो जल स्तर बढ़े। तो ये सब चीज सोच समझ के भाई अगर खेती किसानी का काम किया जाए और भाई प्रकृति के साथ लेके भाई संसाधन वही सही बाटे वही तरीका सही बाटे, जब संसाधन के यह तरीके से प्रयोग किया जाए कि आज का आवश्यकता पूरी करत करत वो कल बड़े भी बचा रहे।
0: बिल्कुल सुमरन भैया, आज देखा एक चीज को और बात हो जाए, बहुत जरूरी बात
1: हाँ
0: यह है।
1: बतावा।
0: देखा भैया आज 18 मई आ, और आज के दिन विश्व एड्स वैक्सीन दिवस पूरे भारत में
1: अच्छा
0: मनाया जाता है।
1: अच्छा
0: और
1: अच्छा
0: भैया एक ऐसी बीमारी जिकरे बारे कहा जाता है कि जागरूकता एकर बचाओ।
1: जागरूकता एकर बचाव बटाई, और देखा कौनो दिवस मनावा जाता बद्री भैया तो उकर सबसे बड़ा ई कारण होता कि भाई लोगन में जागरूकता फैले। अब जैसे बात किया कि एड्स बीमारी के बारे में बात किया तो भाई ई बीमारी ऐसन बाटे कि एकर कोनो इलाज नहीं बाटे, पर अगर आप भैया जोन सावधानी डॉक्टर भैया बतावत हैं भाई अगर वो सावधानी रखें तो निश्चित तौर पे बीमारी से बच सकते हैं।
0: बिल्कुल। असुमरन भैया देखें, एड्स के लिए वैज्ञानिक लोग अनुसंधान के जो टीका निर्मित
1: अच्छा
0: करे हैं
1: हाँ हाँ हाँ
0: ओकरे बड़ी दिन विशेष आ कि जेका नहीं पता है उनका लोग को जागरूक करा कि एक टीका लगाए से आप अपने जीवन से एचआईवी जो वायरस है
1: हाँ
0: उसी लड़े का क्षमता बढ़ा सकत है।
1: बिल्कुल बिल्कुल कही गया भैया। देखा अगर लोगन में जागरूकता फैले बीमारी हो या कोनो हो अगर जागरूक रही तो निश्चित तौर पर ये बीमारी से बच सकते हैं। जो बात बताया ना कि भाई टीका लगाई अगर नहीं तो अपने आसपास भी भाई देखा कोनो बीमारी हो तो फैलत है, एक आदमी दूसरे आदमी में फैलत है, अगर टीका लग जाए तो कतौ ना कतौ वो बीमारी से रोकदाम हो जाए। भाई
0: बिल्कुल
1: समाज में अगर ये सब चीज मनाई जाता कोनो दिवस मनावा जाता या कोनो जागरूकता का ऐसा आंदोलन होता तो भाई ओकर यही मतलब होता कि भाई ज्यादा से ज्यादा वो बीमारी के बारे में जागरूक हुए।
0: बिल्कुल सुमरन भैया देखा पंचायती में आए कि आज हम लोग खूब बतियाए और
1: हाँ
0: पंच भाइयन के जानकारी दे के साथे साथे हमहू लोग अद्यतन भय जानकारी
1: अरे
0: से।
1: बिल्कुल अद्यतन, यही तो भाई कार्यक्रम का उद्देश्य बाटे कि जो ना अपन किसान भैया आ रहे हैं जो रेडियो के बगल कान लगाए के सुनत हिन भाई इतना समय देथिन तो उनका अच्छी अच्छी जानकारी मिले भाई, अच्छा अच्छा उनके खेती किसानी में खूब परिवर्तन होई, अच्छा अच्छा पैसा कमावें। तो भाई हमार पसंद का तो उद्देश्य यही रहा था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा उनका जानकारी दी जा
0: दीन जय
1: सके।
0: सुमरन भैया, ये बतावा कि जैसे कि अपने पंचायती का बड़ा एक निशान बा
1: हाँ
0: कि भैया हम लोग जब पंचायत कर बैठे तो ध्यान रखे का है उनकर जे बैठा है उम्मीद कि भैया रे इनको ढोल मजीरा
1: अरे
0: बजवाइए
1: तो बिल्कुल, तो अपने पंचायती की शुरुआत में देखा एक ठे बहुत बढ़िया लोकगीत बाटे
0: का बा भैया।
1: कमलेश चंद्र यादव और संघातिन का विकास गीत
0: अरे
1: बाटे,
0: वाह वाह
1: हम
0: भैया
1: कही कि
0: वाह।
1: तनी ढोल मजीरा हो जाए तो फिर आगे बात
0: हाँ
1: बताए
0: भैया
1: हुए।
0: बिल्कुल सुनवा।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: हाँ, बद्री भैया देखा जोन लोग गीत रहा, कमलेश यादव संघातिन का।

0: सुना गवा, साथ ही साथ संदेशों सुना गवा।
1: अब भैया लाइन कितनी बड़ी रही कि चला खेतवा की
0: चला
1: ओर।
0: खेतवा के ओर भैया, तो खेतवा के ओर जब जा भैया,
1: तो दुपहरिया बचाए के
0: दुपहरिया बचाए के जा, और संझा और सवेरे ही जा। और सबसे जरूरी चीज ये बात है ना कि भाई जो किसान भाई सब्जियन के खेती कई रहा है, तो भैया देखा जैसे कहें बद्री भैया कि दोपहरिया जिन जा, और दोपहरिया में एक काम और जिन करे कि भैया कोनो चीज हो सिंचाई के तो दशा में जिन करा।
1: सही
0: जो अगर करे के बाटे तो संझा कैले या सवेरे कैले।
1: सुमिरन भैया देखा जो गर्मी का जब मौसम आवा था, एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि तोहका सबेरे 5 बजे धुंधियर छोड़ा एकदम मजोर हो जाई, अहमुर संझा की तो है 6:30-7 बज जात होकर तब तक लागत है कि दिन दिखा रहा है। तो भगवान इतनी व्यवस्था करे यहाँ ये अपने किया कि मौसम इतना बढ़िया है कि आप सुबेरे चाहा तो 5 बजे से लेके 7-7:30 बजे तक, और यह कहती संझा की 5 बजे से 7-7:30 बजे तक
0: समय आपको मिल जाता,
1: चाहे खेती करा निर्वाही करा और चाहे पानी लगावा। और ये मौसम भैया जानता है अपने पर इंतजाम तो करबे करा, जानवरों पर देख ले
0: घास न मिली और जोन हरा चारा के मिलत है ना, ये चीज गलती हो जाता है कि भाई हरा चारा काट के चरी लेके आए और सीधे कुरे दिए जानवर के सामने। भैया देखा ये गलती जिन कर, जैसे अगर काट के ले आवा तो रच के ओका झुराई द, ओकर जोन गर्मी बा ऊ निकल जाए, चारा का जोन गर्मी बा ऊ निकल जाए, तब ओका हाउदम डाला या जोनो पात्र बाटे आपके पशु भरे ओ मन तब डाला। अब जैसे पशु के बात किए बद्री भैया, तो पशु के साथ एक चीज जरूर बाटे कि जो नबाई आवे वाला समय बाटे मानसून के बात हम सब करत रहे, तब मानसून में तमाम तरह की बीमारी हो जाते हैं पशुअन में, चाहे वो खुरपका हो मुंहपका हो, तमाम तरह के ऐसा बीमारी लग जाते हैं पशुअन में। तो भाई उसे बचे बिना अब जोन समय चलत बाटे यानी मानसून से पहले ये टीका का समय बाटे, आप जाब सामुदायिक जोन पशु केंद्र बाटन, स्वास्थ्य पशु केंद्र बाटन, वहां जाब तो भाई जोन पशुधन आपका है उनका टीका लग जाए। ये टीका लगवाई ल जरूर लगवाई ल, कहे कि हमारे ये अरदास बाटे भाई अगर 2-4 जानवर पाले है तब तक लगवा कर। बहुत किसान भाई ऐसा है जो कि बड़े स्तर पे पशुपालन कर रहा है, कहे कि एक बार बीमारी जब होता तो भैया 1-2 पशु में नहीं होता, वो फैला चली जाता आपके 100-200 अगर पशु रखे है सब में वो बीमारी हो जाए। संक्रमण जोन होता भैया एक पशु से दूसरे पशु में देर नहीं लगा था।
1: बिल्कुल सुमिरन भैया इसमें बहुत अच्छी सरकार व्यवस्था करेगा कि आप केवल फोन नंबर रखा और या वेबसाइट पे चला जा, आप फोन करवे तो मेडिकल वाहन आ गया है भैया, अब आपके घरे तक डॉक्टर चला ही है अगर तबियत ज्यादा खराब या है तो, और टीका लगवा बड़े आप पहले देखा रहा कि मनई ले के 2 किलोमीटर चला जाता है, आजकल वाहन वाहन चलत रहा थी तो गोरू बिदक जा थी, तो उनका लाइक जाए जरूरत न पड़ी, तोहरे घरे डॉक्टर साहब चलाई है और बढ़िया इंजेक्शन विंजेक्शन लगा दी है तो बहुत परेशान होने की जरूरत ना पड़ी।
0: देखा जब इतनी सुविधा आपके बाटे तो भैया काहे नहीं टीका लगवावत है। बिल्कुल हम तो ये कहब कि भाई अरदास बा कि जल्दी से जल्दी मानसून आवे के पहले टीकाकरण जोन बाटे पशुओं का वो हो ही जाए।
1: बिल्कुल ए सुमिरन भैया हम कहे आज देखा सुमार सुमार बहुत बढ़िया कविता ही होता हर बार।
0: बिल्कुल कविता ही होता,
1: बतावा कुछ है कि नहीं?
0: अरे काहे ना आए, अब अपने पिटारे में पंचायत घर के भैया देखा बहुत चीज बाटे
1: भैया,
0: कुछ ना कुछ जोन लाई के आई था।
1: हाँ।
0: आज अपने देखा लोक भाषा कविता पाठ में अनिल कुमार श्रीवास्तव भैया का
1: हाँ।
0: एक कविता पाठ बात है
1: बहुत बढ़िया,
0: हम कही तुह सुना और जोन पंच भैया सुनत हैं भाई वो आनंद लेंगे।
1: बिल्कुल भैया सुनाओ।
2: हमने पहली कविता एक शीर्षक बाटे महक फूलों की। कर भाई फूलवा कई की सनिया बढ़ऊ भैया पनया मनिया, बढ़ऊ भैया पनया मनिया, सफल हुई है जिंदगनिया हमार, सफल हुई है जिंदगनिया।

अय्यार करबै फूलवा कलकी सनिया बढ़ौबै आपनया मदनिया बेचबै हम जाइ हथि गहाँ बजरिया बेचबै हम जाइ हथि गहाँ बजरिया फूले कैहार जब अहें घर में धन कई लक्ष्मी जब अहें घर में धन कई लक्ष्मी कट जई हैं दुखवा हमार कट जई हैं दुखवा हमार वृक्ष लगाई के धरती ककरबै हरियार वृक्ष लगाई के धरती ककरबै हरियार।

बची जन है पर्यावरण दूषित हो उल्फे, बची जन है पर्यावरण दूषित हो उल्फे, महकी घर आंगन हमार, महकी घर आंगन हमार, देवी जौता कमनऊ बै, देवी जौता कमनऊ बै, फुलवा उनके चरणन में चढ़ऊ बै, फुलवा उनके चरणन में चढ़ऊ बै, अहें जिंदगनिया में बहार, अहें जिंदगनिया में बहार, कहल बहोरिकपुरी, कहल बहोरिकपुरी, मह मह मह की फुलवरिया हमार, मह मह महकी फुलवरिया हमार, जसवा हुई हैं खुशहाल, जसवा हुई हैं खुशहाल, गौना कई डगरिया खुश हुई हैं, गौना कई डगरिया खुश हुई हैं, खुश हुई हैं पूरा संसार, महकी महकी फुलवरिया हमार। अगली कविताई बाटे भैया हमार सिंदूर, सिंदूरवा कैलाज बचावल के परी, सिंदूरवा कैलाज बचावल के परी, पति के सम्मान बढ़ावल के परी, पति के सम्मान बढ़ावल के परी, आपस में प्रेम सद भाव बढ़ावल के परी, आपस में प्रेम सद भाव बढ़ावल के परी, देशवा

सेना में भर्ती करावल के परी, अपने लाल का सेना में भर्ती करावल के परी, जसवा के बलिदान बदे, जसवा के बलिदान बदे, जे कई उजड़ गए न सिंदूर, जे कई उजड़ गए न सिंदूर, उन शहीदन के चीता पे, उन शहीदन के चीता पे माला फूल चढ़ावल के परी, माला फूल चढ़ावल के परी, शीश झुकावल के परी, शीश झुकावल के परी, देश भक्ति के गीत गावल के परी, देश भक्ति के गीत गावल के परी, कहल बहोरिक पूरी शहीदन के सम्मान बढ़ावल के परी, बढ़ावल के परी। भैया हमार अगली कविता आई बा मलमास को महीना, लागल बाट मलमास कल महीनवा, चलो फ्यू मंदिर में दर्शन कराई आई सजनी, चलो फ्यू मंदिर में दर्शन कराई आई सजनी, गंगा नहाई जमुना नहाई, गंगा नहाई जमुना नहाई, संगम में डुबकी लगाई आई, चलो संगम नहाई आई, शिव के चरणन में शीश झुकाई, शिव के चरणन में शीश झुकाई, भोलेनाथ के मंदिर में दीपक जलाई, चलो जल पुष्प चढ़ाई आई, किसानन के दुखवा मिटाव के बदे, किसानन के दुखवा मिटाव के बदे, शिवजी से अर्जी लगाई आई, शिवजी से अर्जी लगाई आई, कहें बहोरिक पूरी भक्ति में मनवा लगाई आई, शिवजी का मनाई आई, काशी विश्वनाथ का दर्शन कराई आई, शिवजी का मनाई आई, शिवजी का मनाई आई। अगली कविता आई बा भैया हमार वीरों की कहानी।

के परी, देशवा में एकता बनावल के परी, परिवार में एकता बनावल के परी, मनवा से मनवा मिलावल के परी, मनवा से मनवा

पूतन कई झांकी दिखावल के परी बिरसा पूतन कई झांकी दिखावल के परी कहल बहोरी के पूरी सहीजन के सम्मान बढ़ावल के परी बढ़ावल के परी बीरन के कहानियाँ सुनावल के परी देशवा के विकास बदे सबहीं के आगे आवल के परी सबहीं के आगे आवल के परी देशवा के विकास बदे सबहीं के आगे आवल के परी। अगली कविता यह है भैया हमारे गर्मी, गर्मी का महीना आएगा बाबा तो हम गर्मी पे कविता लिखे ही सुनावते ही आपके।

लगे हैं खेतवा में लहराए फसलिया चहूँ और, खेतवा में लहराए फसलिया चहूँ और, गेंदा गुलाब कई लगी फुलवरिया, गेंदा गुलाब कई लगी फुलवरिया, फन फन बहाई हवा पुरवैया, फन सन बहाई हवा पुरवैया, फैले महकिया चहूँ और, फैले महकिया चहूँ और, आवा चली गुजरिया गौना की ओर, आवा चली गुजरिया खेतवा की ओर, रिम झिम पनिया बरसे, रिम झिम पनिया बरसे, ताल पोखरिया में मेंढक बोले, ताल पोखरिया में मेंढक बोले, ताल पोखरिया में मेंढक बोले, चमकई जुगनू चहुओर, चमकई जुगनू चहुओर, चमकई जुगनू चहुओर, अरे कहें अलबहोरिकपुरी, कहें अलबहोरिकपुरी, गौना में हमरे अहल भाईचारा, आवा चली खेतवा की ओर, आवा चली खेतवा की ओर। अगली कविता भैया हमारे किसान, खेतवा में जब हुई है निकल नीक फसलिया मगन।

0: गर्मी या सर्दी मिलजुल के झेला, फुकवा में हंसी हंस के बोला, मगन रही है किसान, प्रसन्न रही है किसान, आए हैं अकेला लगा किसानन कै मेला, आए हैं अकेला लगा किसानन कै मेला, आपस में सबसे हंसी हंस के बोला, आपस में सबसे हंसी हंस के बोला, ईर्ष्या जलनिया हिया से मिटावा, ईर्ष्या जलनिया हिया से मिटावा, प्रेम सज भाऊ कै चादर ओढ़ावा, प्रेम सज भाऊ कै चादर ओढ़ावा, मगन रही है किसान, मगन रही है किसान, कहें बहोरिदपुरी प्रेम रस पी के, कहें बहोरिदपुरी प्रेम रस पी के, किसानन के जय बोला, किसानन के जय बोला, मगन रही है किसान, मगन रही है किसान।
1: हाँ हाँ बद्री भैया, देखा दिन भर काम करे के बाद अगर ऐसन गीत गाऊ नहीं और ऐसन लोक भाषा कविता पाठ सुने के मिल जाए तो हम तो कहब कि भाई जोन पूरी जोन आपके थकान रहा था ना सब निकल जाता।
2: सही बात भैया, अनिल कुमार श्रीवास्तव भैया ऐसा कुछ सुनायन, मतलब खेती किसानी से लय के मलमास तक और बूंदा बांदी से लय के भैया जौन आदमी के समस्या होता होगा सब एकदम संजोगी है। कहा दिन भैया कि जहां न पहुंचे रवि हुआ पहुंचे कब।
1: बिल्कुल बद्री भैया, देखा जोन दृश्य भैया अनिल भैया बताएं भाई, गांव का दृश्य बाटे मेढक टर रात

0: अभी तब देखा बारिश ना ही भाई बाटाई, पहलवन बताई दी है, मगर देखा कितना बढ़िया दृश्य बताएं कि भाई जब एक प्राकृतिक रूप से भैया जब वो होता वो तो कितना मनोहर लगा था वो चीज और कितना आनंद आवत हो मन। तो भैया हम तो ये कहब कि भाई अगर ये प्रकृति के बचावे के बाटे, ऐसे एक लाइन कह रहे हैं ना कि देशवा के विकास बरे सबके आगे आवे के पड़ी, तो वही तरह देखा पर्यावरण हो प्रकृति हो एका अगर संजोय के रखे के बाटे तो एक जने का ये काम नहीं बाटे, ये सब का काम बाटे। भले तू शहर में रह, भले तू गाँव में, सब का भैया देखा जरूरत बाटे कि सब जने एका बचावाई, सब जने अपन जिम्मेदारी समझाएं।
1: बिल्कुल भैया सही कहा, और जिम्मेदारी से भैया देखा याद आ गया कि हम लोग तो भैया अपन बात कही दी थी, हम लोग तो अपन जिम्मेदारी निभाए दीन। अब पंच भाई अगर का चाहत है कि पंचायती में अगर वो चाहत हो कि कोनो डॉक्टर बुलावा जाए, कोनो विशेषज्ञ बुलावा जाए, या कोनो विषय पे बातचीत चाहत है, तो उन्हों को तो जिम्मेदारी बा कुछ फोन ओन पे, नंबर पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कुछ बताई है।
0: अरे बिल्कुल बताई है भैया बद्री, जब उनका नंबर कुछ बताऊ बा तू।
1: हाँ तो फिर नंबर

0: तो अपन जिम्मेदारी निभाए दिन। अब पंच भाई अगर का चाहत है कि पंचायती में अगर वो चाहत हो कि कोनो डॉक्टर बुलावा जाए, कोनो विशेषज्ञ बुलावा जाए या कोनो विषय पे बातचीत चाहत है,
1: बिल्कुल,
0: तो उनहू को तो जिम्मेदारी बा कुछ फोन ओन पे, नंबर पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कुछ बताई है।
1: अरे बिल्कुल बताई है भैया बद्री, जब उनका नंबर कुछ बताऊबा तो।
0: हाँ तो फिर नंबर बतावा जल्दी,
1: हम ही बताई देते हैं। नंबर बाटे 800-4926250।
0: एक बार और बताए दे भैया।
1: बिल्कुल बताई देव, 800-4926250 भैया व्हाट्सएप नंबर बाटे। ए पर जाए के भैया कौनो संदेश हो आपका, जैसे बद्री भैया कहें ना कि कौनो विशेष अगर जानकारी चाहे आपके, कौनो चाहत है कौनो खेती किसानी से जुड़ी हुई कौनो विषय बाटे भाई, ऊपर कुछ जानकारी अगर चाहत है तो भैया जाए के अपन संदेश लिख देबा, तो भैया अपने कार्यक्रम में वो जरूर शामिल किया जाए। इकरे अलावा अगर बतावत है कि भाई पंचायत घर कार्यक्रम के और कैसे अच्छा किया जाए, कोनो लोकगीत सुनाई के मन बाटे, कोनो आपका फरमाइश बाटे, तो भाई अगर लिख के देबा तो जरूर वो चीज पंचायत घर में शामिल होए।
0: हम कहे सुमिरन भैया,
1: हाँ।
0: देखा आप पंच भैया हरे सिर्फ हंदिन नहीं जानते हैं, हाँ। अब अंग्रेजी जाना थे।
1: अच्छा अंग्रेजी जाना
0: थे। हाँ, तो हम आज कहा एक मतलब तो समझिन गया हो गया,
1: समझ गए। हाँ। देखा जो सोशल मीडिया बाटे,
0: हाँ।
1: सोशल मीडिया पे तमाम तरह का जो है पेज बाटे, आकाशवाणी प्रयागराज के नाम से जोन पेज बाटे, चाहे फेसबुक हो चाहे अन्य जोन प्लेटफॉर्म बाटे, भाई ऊपर अगर कोनो पोस्ट बाटे ऊपर जाए के कमेंट कई के भाई चीज अपन संदेश भाई अपन जोन प्रतिक्रिया बाटे उ लिख सकते।
0: बिल्कुल भैया, आप तो पेज पे भैया सीधे सुविधा उपलब्ध बा, आप हुआ पे जा और सीधे जहां पे जैसे आप फेसबुक पे अपने बरे लिखा था वैसे पोस्ट करे बरे आप विकल्प आएगा बा, सीधे हुआ अपन मैसेज टाइप करा लिखा संदेशा और सीधे पंचायत घर के लोगन को दिखाई जाए कि भैया रामदीन भैया करे हैं कि राम काका करे हैं, सब जने भोला भैया के मैसेज तक आई जाए।
1: बिल्कुल बद्री भैया, और हम देखी था कि जो किसान भैया न केवल खेती किसानी कर रहा है बल्कि जो सोशल मीडिया पे जो बात कहे ना सारा कार्यक्रम सुना थीन, सारा कार्यक्रम पे प्रतिक्रिया दे थीन, और भैया बड़ा अच्छा लगा था जब भैया अरे कहा थीन कि भाई कार्यक्रम आपका अच्छा लगा, कार्यक्रम में आप ये चीज शामिल करा तो कार्यक्रम और अच्छा हो। देखा आप बड़े ये कार्यक्रम बांटे, अगर आप ऐसे जुड़ा थीन, आप एक पर प्रतिक्रिया दे थीन, तो हमहू पचन के अच्छा लगा, तो हमहू मैं आउ मेहनत करी था हम सभी।
0: कही गया सुमिरन भैया, प्रोत्साहन भैया इंसान का जीवन बदला था, प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। हम कहे कि भैया देखा जब कार्यक्रम नजदीक आए जा तो जैसे शुरुआत में भाई के एकदम ढोल मजीरा बजवाए रहा, एक बार अगर चलत चलत भैया फिर से बात जाए ना तो जौन दिन भरे गर्मी और थकान रही ना भैया मिटाई जाए।
1: अरे बद्री भैया देखे जिन प्रोत्साहन का बात की है ना, कहीं तो हूँ थोड़ा प्रोत्साहित कही दे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज भैया सुमिरन भाई, देखा मलमास शुरू हो गया तो कुछ मलमास है अगर
1: देखा रंजीत कुमार संगातिन भैया का एक शिवगीत बाटे।
0: अच्छा
1: हाँ, अब तुम मलमास की बात किया तो आवाज देखा शिवगीत बाटे।
0: हाँ।
1: अब ओके सुना जाए और पंच भैया भी सुना।
0: बिल्कुल भैया सुनाओ।

0: हाँ बद्री भैया, देखा जो उन लोग गीत रहा रंजीत कुमार और संघातिन का, शिव गीत रहा।
1: सही
0: अब देखा
1: बात है।
0: मलमास लत भाटे तो मलमास कहा कि भाई बढ़िया एक शिव गीत सुनवावा, तो शिव गीत भैया सुना गवा। अब देखा जोन मौसम चलत बाटे ना, जोन गर्मी अब देखा बढ़ भाई करे,
1: बिल्कुल भैया।
0: और बढ़े तो देखा तीन तरीके से आपके ध्यान रखे के बाटे। एक तो हो गई आपके फसल, भाई
1: सही बात
0: फसल
1: है।
0: का ध्यान रखबा तो जोन ओमन खर्चा पानी किए हया वो वापस निकल के भाई आए, लागत जोन
1: बिल्कुल।
0: लगाए है वो लागत वापस आए। दूसर चीज बा जो बेजुआन जानवर आप पाले है, पशु प्राणी पाले है, भाई उन्हू का जिम्मेदारी आप ही के ऊपर बाटे
1: बिल्कुल
0: कि उनका
1: बिल्कुल
0: सही से खाना मिले, उनका ताजा पानी मिले, भाई उनका कोनो रोग बीमारी ना हो।
1: बिल्कुल भैया बिल्कुल।
0: तीसरा सबसे जरूरी चीज बाटे कि जब ये सब कुछ सही रहे तभी सही रहे जब आपका खुद का स्वास्थ्य सही
1: हाँ
0: रहे,
1: नहीं, जितना आवक रही उतना
0: उतना
1: अस्पताल में
0: चला
1: चला
0: जाए।
1: जाए।
0: तो देखो बद्री भैया आपन स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें जब वो घरे से बाहर। पहली चीज तो ये बाटे कि भाई बहुत जरूरी ना हो तो ना निकलें,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और
1: भैया।
0: अगर जैसे निकले को बाटे तो भैया पहिन ओढ़ के कायदे से पानी पी के भैया, और जोन वैज्ञानिक भैया बतावत हैं

0: भाई खीरा ककड़ी ये तरह का जो चीज बा एकर भैया खात पियत रहें तबे भाई स्वस्थ रहें।
1: बिल्कुल। और अपने साथे जैसे भैया कहा कि जो मवेशी जानवर पाले हा, देखा यह एक ऐसे मौसम भैया रहा था कि जब सांझ ढल जाए तो अगर भैंस रखे हा तो का बढ़िया नहलाए दे,
0: एकदम एकदम
1: अगर सुबेर भा है तो 5 से 6 से 7 बजे के बीच में उनका नहलाए दे, अगर दुधारू पशु है तो सेम यह प्रक्रिया आपका अपनावे का है, नहलावा जरूर और कोशिश ही करा कि हैंडपम्प से या ताजा पानी जहां से मिल जाए उनका पिलावा जरूर।
0: बिल्कुल बद्री भैया। देखे इतना बात बत कही होई, अब बात करत करत देखे भैया चली चला के बेला
1: हाँ
0: हो गई
1: पंचायती
0: बाटही।
1: चल एक समय आएगी
0: तो
1: भैया।
0: भैया पंचो
1: राम
0: राम राम।
1: राम।

अभी किसान भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे पंचायत घर। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी घर की

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युवावाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत, हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग।
1: सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: गीत जो कह जाते हैं कहानी, कार्यक्रम बोलते नगमे की जबानी।
1: तुम इतने दिन थी कहाँ।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्ताव पारित। पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और लखनऊ समेत आगरा मेट्रो के विस्तार को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में यूपी ट्रिपल एससी 2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने में युवाओं की अहम भूमिका। लखीमपुर खीरी में सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी। मौसम विभाग ने 22 मई तक अधिकांश जिलों में लू चलने का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के निर्धारण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि ये आयोग पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए उनके सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ेपन की जाँच करेगा।
1: माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। आप सब लोग जानते हैं, बड़ा प्रदेश है, 59,000 से भी ज्यादा पंचायतें हैं, हमारे सैकड़ों विकास खंड हैं, 75 जनपद हैं। तो पंचायत चुनाव कराने से पहले हमें आरक्षण की व्यवस्था को लागू करना और भी चीजों को देखना है। उसके लिए अब आयोग अध्ययन करेगा और आयोग जैसा रिपोर्ट देगा उसके आधार पर पंचायत के चुनाव की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे।
0: वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। इनमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। श्री खन्ना ने कहा कि केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से बसंत कुंज तक के पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रूपये के अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृत
2: मंत्री परिषद के दिनांक 5/3/24 को संपन्न बैठक में लखनऊ मेट्रो परियोजना फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर DPR पर माननीय मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदन पहले प्रदान किया गया। ये खास तौर से इसी सरकार संबंध में लखनऊ मेट्रो फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर चारबाग से बसंत कुंज परियोजना की अनुमोदित लागत 5,801.05 करोड़ रुपए पर सहमति प्रदान की गई। इसमें 50-50% हिस्सा है भारत सरकार, 50% राज्य सरकार।
0: बैठक में मंत्रिमंडल ने पशु चिकित्सा के छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते को 4,000 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 12,000 रूपये प्रतिमाह किए जाने और मिर्जापुर में 2,799 करोड़ रूपये की लागत से बिजली ग्रिड उन्नयन के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बीते 9 वर्षों में 9,00,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाने में राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं ने भी अहम भूमिका निभाई है। परिणामस्वरूप आज प्रदेश देश के ग्रो

0: ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।
1: 9 वर्ष की शानदार यात्रा में चुनौतियां थी, लेकिन उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया गया। एक टीम भावना के साथ परिणाम लाया गया कि 9 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी। प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी। उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है, अब तो उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत के विकास में अग्रिम भूमिका के साथ अपने आप को खड़ा कर रहा है।
0: प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कल शाम मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया गया। नवनियुक्त कैबिनेट मंत्रियों में भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग सौंपा गया है, वहीं मनोज कुमार पांडे को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग आवंटित किया गया है। सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के रूप में पदोन्नत किए गए अजीत पाल सिंह को राजनीतिक पेंशन के साथ साथ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग दिया है, जबकि सोमेंद्र तोमर को सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षा दल विभाग सौंपा गया है। 4 नवनियुक्त राज्य मंत्रियों में कृष्णा पासवान को पशुपालन और दुग्ध विकास विभाग, सुरेंद्र दिलेर को राजस्व विभाग, हंसराज विश्वकर्मा को लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और कैलाश राजपूत को ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग सौंपा गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज वाराणसी में जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने देश में पेट्रोल, पीएनजी और एलपीजी की उपलब्धता को लेकर लोगों को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक घरों तक पीएनजी सुविधा पहुंचाना है।
2: भारत एक ऐसा देश है विश्व भर में जिसमें ना कच्चे तेल की, ना पाइप नेचुरल गैस की, ना एलपीजी की कोई कमी हमने होने दी। एक हमने जो बहुत कोशिश की है काशी में, हम ये चाह रहे हैं जो एलपीजी कनेक्शन थे उसको ज्यादा तेजी से पाइप गैस में कन्वर्ट किया जाए। उससे सुविधा लाभार्थियों को भी होगी, एक तो पाइप गैस ज्यादा एफिशिएंट है, उस सस्ती भी है।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण आयात में बाधा के बावजूद देश में रिफाइनरियां सामान्य रूप से काम कर रही हैं। आज नई दिल्ली में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
3: हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर है और हमारे पास सफिशिएंट क्रूड इन्वेंटरीज हैं। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं और किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर या रिटेल आउटलेट पर ड्राई आउट नहीं है, लेकिन कई जगह पर अफवाहों के चलते पैनिक बाइंग देखी जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि जो बल्क सेल था वो पंप सेल पर भी शिफ्ट हो रहा है।
0: डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल ने अपने क्षेत्रवासियों से आग्रह किया है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के अनुसार डीजल, पेट्रोल के न्यूनतम प्रयोग के साथ साथ सोने की खरीद से बचें। देश भर में ईद उल अजहा यानी बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी। कल देश में कहीं से भी चांद दिखने की पुष्टि नहीं हुई। इसके बाद लखनऊ स्थित मरकजी चांद कमेटी फरंगी महल के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद और शिया मरकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास ने बताया कि बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी। लखीमपुर खीरी में आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक और सवारी वाहन की आमने सामने से टक्कर हो गई। ट्रक चालक हादसे के बाद घटनास्थल से फरार हो गया। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है। साथ ही दोनों ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा देश में सर्वाधिक गर्म जनपद के रूप में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल से 22 मई तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की आशंका है। मौसम के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।

0: रिपोर्ट। भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड में रहने को कहा है। साथ ही सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा है। श्री योगी ने सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था और बिजली आपूर्ति बाधित न होने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि अत्यधिक गर्मी और लू के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकले। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्ताव पारित। पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और लखनऊ समेत आगरा मेट्रो के विस्तार को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में यूपी ट्रिपल एससी 2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने में युवाओं की अहम भूमिका। लखीमपुर खीरी में सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी। मौसम विभाग ने 22 मई तक अधिकांश जिलों में लू चलने का किया ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए सुधांशु कुमार मालवीय की वार्ता, भारतीय भाषाओं में कलात्मक अभिव्यक्तियां।
3: भारतवर्ष प्राचीन काल से विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं का देश रहा है। इन भाषाओं में विपुल परिमाण में विविध प्रकार का साहित्य भी रचा गया है। किसी भी देश की भाषाओं का विकास उस देश की जातियों की संपूर्ण संस्कृति के विकास के स्तर को दर्शाता है। भाषा के विकास का तात्पर्य है उसकी अभिव्यक्ति की सामर्थ्य का विकास। यह संभव होता है भाषा को बरतने में निपुणता से, यानी बात को कहने में कला और कौशल के प्रयोग से। इसी को हम कहते हैं कलात्मक अभिव्यक्ति। कलात्मक अभिव्यक्ति के द्वारा भाषा की सामर्थ्य बहुत बढ़ जाती है। भाषा की सामर्थ्य बढ़ने का तात्पर्य है उसकी प्रभाव शक्ति या कार्य शक्ति में इजाफा। ऐसी स्थिति में भाषा केवल स्थूल भावों, विचारों के विनिमय का माध्यम नहीं रह जाती, वरन व्यक्ति को प्रेरित, प्रभावित करने वाली वस्तु भी बन जाती है। बिहारी के दोहों के बारे में कही गई सतसैया के दोहरे, ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगें, घाव करें गंभीर, वास्तव में बहुत दूर तक सभी प्रकार की कलात्मक अभिव्यक्तियों के बारे में लागू होती है। भारतवर्ष की विभिन्न भाषाओं में जो काव्य, नाटक, कथा, निबंध आदि के रूप में जो साहित्य रचा गया है उसमें विपुल परिमाण में कलात्मक अभिव्यक्ति के दर्शन होते हैं। संस्कृत से लेकर आधुनिक भारतीय भाषाओं तक सभी के साहित्य में इसका प्रचुर वैभव दिखाई देता है। उर्दू, बंगला, असमिया, कश्मीरी, पंजाबी, उड़िया, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम आदि भाषाओं में इस प्रकार की कलात्मक अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों को देखा जा सकता है। महकते फूल की खुशबू फजा में घोल कर देखो, समाअत झूम उठेगी तुम उर्दू बोल कर देखो। इसलिए सबसे पहले उर्दू से ही एक मिसाल, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, ये वो सहर तो नहीं कि जिसका इंतज़ार था। इस छोटे से शेर में 15 अगस्त को लंबे संघर्षों और इंतज़ार के बाद

अभी आप सुन रहे थे सुधांशु कुमार मालवीय की वार्ता, भारतीय भाषाओं में कलात्मक अभिव्यक्तियां। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुगम संगीत, आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सुजाता सिंह के गाए भजन और गीत। तो लीजिए सबसे पहले इनके स्वर में सुनिए मलूक दास की लिखी ये भक्ति रचना।

अभी आप सुन रहे थे सुजाता सिंह के गाए भजन और गीत। सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए, डॉक्टर अमिताभ उपाध्याय से मोहम्मद शमीम की विशेष भेंट वार्ता, एड्स के टीके का भविष्य।
2: आज 18 मई है और आज के दिन मनाया जाता है विश्व एड्स टीका दिवस। ये उन कर्मचारियों या वैज्ञानिकों के सम्मान के लिए मनाया जाता है जो एचआईवी टीके के निर्माण से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। एचआईवी टीके के निर्माण में अभी कितना समय लगेगा, कब ये आम लोगों के लिए उपलब्ध हो पाएगी, इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में प्रख्यात एड्स रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमिताभ उपाध्याय को आमंत्रित किया है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: एड्स के टीके के बारे में बात करने से पहले हम संक्षेप में ये जानना चाहेंगे कि एड्स है क्या।
3: एड्स बेसिकली एक वायरस का इन्फेक्शन कह लीजिए, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एचआईवी एक वायरस होता है। जब शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो ये रोग से लड़ने की क्षमता को बहुत कम कर देता है और समय के साथ साथ शरीर इतना दुर्बल हो जाता है, इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर हो जाता है कि किसी भी इन्फेक्शन को रेजिस्ट नहीं कर पाता है। और करीब करीब मोटे लहजे में कहें तो इसी कंडीशन को हम एड्स कहते हैं।
2: तो इसके इलाज के बारे में जो टैबलेट्स हैं, आज हम उन पर बात नहीं करेंगे, हम आज टीके पर बात करेंगे। क्या टीके का निर्माण अभी तक हो पाया है?
3: अगर वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो एचआईवी की कई वैक्सीन्स पर शोध चल रहा है, लगातार प्रयोग भी हो रहे हैं, ट्रायल्स भी हो रहे हैं, पर कोई भी वैक्सीन अनफॉर्चुनेटली अभी तक मानव के प्रयोग के लिए उपलब्ध नहीं है। इसका कारण बेसिकली ये है कि एचआईवी एक आरएनए वायरस होता है और आरएनए वायरस में एक बड़ी खास पिक्युलिटी होती है, ये अपने अनुवांशिक मटेरियल को जिसको जीनोम कहते हैं, इसको बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट करता है, उत्परिवर्तित करता है, बदलता रहता है। और जब भी उत्परिवर्तन होता है तो एक नया वेरिएंट खड़ा हो जाता है। तो वैक्सीन पहले वाले के लिए बन रही थी, अब नया वेरिएंट खड़ा हो गया तो वैक्सीन उस पर काम नहीं करती है। यही कारण है कि आज तक अभी कोई वैक्सीन नहीं आ पाई है।
2: डॉक्टर साहब, एड्स फैले हुए या एड्स की बीमारी आम हुए लगभग 40 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी तक ये टीका नहीं बन पाया है, आखिर क्या संभावना है, आगे ये कब तक बन पाएगा?
3: जैसे मैंने बताया कि ये बहुत तेज़ी से अपने को वेरिएट करता है, बहुत तेज़ी से उत्परिवर्तित म्यूटेट करता है। यही कारण कि मल्टीपल फेल्योर्स के कारण अगाध पैसे भी खर्च हुए पर अब तक कोई भी एक आउटकम नहीं निकल पाया। मूल कारण यही है कि एचआईवी वायरस बहुत तेज़ी से अपने आप को म्यूटेट या उत्परिवर्तित करता है और बनाए गए टीके का जब तक परीक्षण पहले या दूसरे फेज में खत्म होता है तब तक वायरस अपने रूप को बदलकर कई नए रूप धारण कर चुका होता है। और यही सबसे बड़ी समस्या एचआईवी के विरुद्ध टीके के निर्माण में आई। इस समय समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिकों ने एक ऐसे वैक्सीन का निर्माण किया जो काफ़ी लंबी जद्दोजहद, बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च के बाद हुआ है, जिसे हम ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी वैक्सीन या टीका कहते हैं, जो न सिर्फ वायरस के मूल रूप पर कारगर है बल्कि इसके बदलते हुए सभी रूपों पर भी कारगर होगा। और इस टीके का वर्तमान में विस्तृत ट्रायल चल रहा है, अपने प्रथम और द्वितीय फेज में है, कहीं पर प्रथम फेज में है, कहीं द्वितीय फेज में है। अगर इस वैक्सीन का परीक्षण सफल रहा तो इस बात की पूर्ण संभावना है कि 2030 तक एचआईवी का एक टीका मानव में इनोकुलेट करने के लिए बाजार में उतर चुका होगा।
2: जैसा कि डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं कि बहुत जल्दी म्यूटेट करता है अपने आप को ये वायरस एचआईवी का, तो क्या किसी मरीज में दो वेरिएंट हो सकते हैं?
3: बिल्कुल हो सकते हैं।
2: तब तो उस पर टीका का असर भी बहुत मुश्किल से हो पाएगा, फिर अलग अलग वेरिएंट के फिर टीके लगाने पड़ेंगे?
3: नहीं नहीं, इसीलिए एक ऐसा वैक्सीन खोजा गया जो कि सभी वेरिएंट पे काम कर सके।
2: जी,
3: तो जिस टीके का मैंने अभी बात बताया,
2: अच्छा ये सारे वेरिएंट पे काम करेगा ये टीका,
3: ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी जो होती है उस सब पे काम कर जाएगी।
2: अगर भविष्य में ये टीके का उत्पादन शुरू हुआ तो इसके कौन कौन से रूप हो सकते हैं?
3: बेसिकली टीके को दो रूप में बनाया जाता है।
2: जी,
3: अभी तक जो भी वैक्सीन बनी है उसमें दो ही प्रकार हैं, वैक्सीन का ट्रायल जो चल रहा है वो भी दो प्रकार की वैक्सीन पे चल रहा है, पहले को हम प्रिवेंटिव कहते हैं और दूसरे को थेरेप्यूटिक कहते हैं। प्रिवेंटिव का मतलब ये उन लोगों के लिए बनाया

0: गया जो हाई रिस्क ग्रुप के हैं। अब हाई रिस्क ग्रुप क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं बता
1: जी
0: दूं। हाई रिस्क ग्रुप उन लोगों को कहते हैं जिनकी जॉब प्रोफाइल बहुत ज़्यादा बाहर घूमने की होती है, जैसे ट्रक का ड्राइवर हो गया,
1: जी
0: भट्टा वर्कर हो गया, या एक्सक्यूटिव्स हो गए जो अक्सर
1: जी
0: सफ़र में रहते
1: जी
0: हैं, या कॉमर्शियल सेक्स वर्कर्स हो गए। ये लोग हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं क्योंकि ये बड़ी संभावना लेके चलते हैं कि कहीं एचआईवी हो ना जाए।
1: जी
0: तो प्रिवेंटिव उनके लिए बनाई गए जिनमें कि ये चांसेस रहते हैं कि इनको एचआईवी हो सकता है, तो उनको पहले से ही वैक्सीनेट कर दिया जाए कि वायरस अंदर प्रवेश करे।

0: इस संभावना लेके चलते हैं कि कहीं एचआईवी हो ना जाए।
1: जी
0: तो प्रिवेंटिव उनके लिए बनाए गए जिनमें कि ये चांसेस रहते हैं कि इनको एचआईवी हो सकता है, तो उनको पहले से ही वैक्सीनेट कर दिया जाए कि वायरस अंदर प्रवेश करे तो
1: जी
0: एक्टिवेट ना हो पाए।
1: यानी उनमें अगर एचआईवी की पुष्टि ना हो तब भी ये टीका लगा दिया जाए।
0: बिल्कुल
1: जी
0: बिल्कुल। पर ऐसे लोगों में सरकार ने ऐसा कुछ नियम कानून बना दिए हैं कि जो ऐसे प्रोफेशन में है और हर जगह ये फ्री ऑफ
1: जी
0: कॉस्ट होती है,
1: जी
0: सरकार खुद इसको मुहैया कराती है,
1: जी
0: तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ऐसे हाई रिस्क ग्रुप पे जो भी व्यक्ति अपने आप को पाते हैं वो अपना एचआईवी की जांच हर 6-8 महीने पे जरूर करा लें, इस
1: बिल्कुल,
0: टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट।
1: यानी अगर कोई शंका है तो आप एचआईवी का जांच कराएं।
0: बिल्कुल। और दूसरी जो वैक्सीन है उसको हम थेरेप्यूटिक कहते हैं,
1: जी
0: और थेरेप्यूटिक वैक्सीन उन लोगों के लिए बनाई गई जो ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुके थे, दवाओं
1: जी
0: पे चल रहे हैं, चूंकि दवाएं जीवन भर खानी पड़ती हैं, तो कई पेशेंट ये पाया गया कि उन्होंने बीच में दवा छोड़ दी। और सबसे मुश्किल बात ये आती है कि अगर एक बार दवा छोड़ दी गई तो वायरस बड़ी तेज़ी से अपने को फिर से बढ़ाना शुरू करता है और फिर से ये म्यूटेट करना शुरू करता है,
1: जी
0: तो दवाओं का फेलियर भी हो जाता है। दवाएँ बहुत कॉस्टली हैं, आगे की दवाएँ जो आती हैं वो ग्रेडिंग में होती हैं कि लेवल 1 की हो गई, लेवल 2 की
1: जी
0: हो गई, लेवल 3 की हो गई,
1: जी
0: तो वो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव ना होने के कारण सरकार भी मुहैया नहीं करा पाती है
1: जी
0: और परेशानी होती है।
1: जी
0: तो ये उन लोगों के लिए बनाया गया जो दवा नहीं लेना चाहते हैं, तो उनको थेरेप्यूटिक वैक्सीन लगा दी जाए, कि अगर लेनी भी पड़े तो कुछ ऐसी दवाएं भी मार्केट में आ गई हैं जो 6 महीने में एक बार लेनी पड़ती हैं,
1: जी
0: पर दे आर फेयरली कॉस्टली, बहुत महंगी हैं वो दवाएँ अभी।
1: जी तो अगर टीका लग जाए मरीज को तो क्या उसके बाद भी दवा खानी पड़ेगी?
0: ये अभी थोड़ा सा संशय का विषय है,
1: जी
0: क्योंकि जब तक कोई भी टीका मल्टीपल फेजेस से गुजरता है, आमतौर
1: जी
0: पे 4 फेज होते हैं, उसके बाद ही मार्केट में आता है,
1: बिल्कुल
0: चौथे फेज के बाद सब कुछ कंफर्म हो जाता है कि इसके दवाओं का कितना स्कोप है, दवाएं लेनी पड़ेंगी कि नहीं लेनी पड़ेंगी,
1: जी
0: और दवाई लेनी भी पड़ेंगी तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगी
1: जी
0: लेने की। अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है, पर
1: जी
0: संभावना इस बात की बड़ी प्रबल है कि हो सकता है कि शायद टीके के बाद, थेरेप्यूटिक टीके के बाद दवाओं की आवश्यकता न पड़े।
1: जी कोविड के दौर में डॉक्टर साहब देखा गया कि एक वैक्सीन के बाद दूसरी वैक्सीन लगी और उसके बाद बूस्टर डोज भी लगे, तो क्या अगर एचआईवी का जो टीका आएगा क्या इस पे भी बूस्टर डोज की कुछ?
0: आपने बहुत बढ़िया कोरिलेशन दिया है
1: जी
0: कि कोविड का वायरस भी
1: जी
0: आरएनए वायरस था, इसीलिए मल्टीपल वो रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता रहा।
1: जी
0: एग्जैक्टली यही वायरस करीब करीब एचआईवी का भी है, वो भी एमआरएन का आरएनए का
1: जी
0: वायरस है। जो अभी तक परीक्षण चले हैं उनके आधार पे ये तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है
1: जी
0: कि सिंगल डोज से काम नहीं चलेगा,
1: जी
0: मल्टीपल डोजेज लेनी पड़ेंगी। वो डोजेस कितने होंगे, वो बूस्टर डोजेस कितनी देनी पड़ेंगी, ये समय के साथ ही मालूम पड़ पाएगा
1: जी
0: जब तक कि फेज 4 का ट्रायल पूरा नहीं हो जाता है।
1: जी परीक्षण के समय ही डॉक्टर साहब ये पता चल जाता है कि इस वैक्सीन को बनाने में कितना खर्च आ रहा है या कितनी लागत आ रही है, तो एक अंदाजे के हिसाब से आप ये बताइए कि अगर ये मार्केट में ये वैक्सीन आई तो उसका कॉस्ट क्या होगा?
0: अभी निर्धारित करना तो बड़ा मुश्किल होता है, पर जो वर्तमान में चल रहा है उसको देखते हुए कह सकते हैं, और ये कॉस्ट बहुत कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है कि आप किस इकोनॉमी को बिलोंग करते हैं। एक वैक्सीन जो यहाँ पे 3 से 5 हज़ार रुपये की मिलती है अगर इंडिया में, तो डेफिनेटली वो 25-30 हज़ार रुपये की अमेरिका में होगी,
1: जी
0: तो ये वेरिएशन देखने को मिलते हैं। पर अभी तक जो डेटा आए हैं उसके हिसाब
1: तो
0: से मोटा मोटा भारत की मुद्रा में ये 3 हज़ार से 5 हज़ार रुपये के बीच में वेरी करेगी।
1: कॉस्टली एक हिसाब से नहीं है, 3,000 और 5,000 तो आप इस बीमारी के लिए लगवा ही सकता है
0: ये भी
1: कोई।
0: और कम होगा, क्योंकि
1: जी
0: जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा रेट घटते जाएंगे,
1: जी
0: और भारत में वैसे भी माना जाता है कि दुनिया की
1: जी
0: सबसे सस्ती दवाएं भारत में ही बनती हैं।
1: जी डॉक्टर साहब हम आखिरी में एक सवाल इसके अलावा ये पूछना चाहेंगे कि आपके पास इसके कितने मरीज आते होंगे एक दिन में लगभग?
0: अब मरीजों की संख्या काफ़ी घट गई है,
1: जी
0: क्योंकि जब से नाको ने अपने कार्यक्रम को बहुत आगे बढ़ाया,
1: जी
0: तो करीब करीब 25 लाख मरीज
1: जी
0: भारत में ऐसे हैं जो कि ट्रीटमेंट पे हैं।
1: जी
0: पर फिर भी इधर कुछ दिनों के अंतर में, मैं पीछे 4-5 महीने के अंतर में जरूर देखा है कि मरीजों की संख्या अचानक बढ़ी है, दिन में तो नहीं पर महीने में निश्चित रूप से 5 से 7 मरीज नए आते हैं। जब मैंने मेडिकल कॉलेज को छोड़ा था, जिस समय
1: जी
0: मैं एआरटी
1: जी
0: में
1: जी
0: था वहाँ पे, तो उस समय कोई 5700 पेशेंट छोड़ के आया था,
1: जी
0: और ये करीब आज से 10-12 साल पहले की बात
1: जी
0: है।
1: क्या वजह हो सकती है डॉक्टर साहब ये कि अभी मरीज बढ़ रहे हैं?
0: वजह देखिए, एक तो थोड़ा सा
1: जी
0: जो उन्मुक्त वातावरण मीडिया के थ्रू आया है वो एक बहुत बड़ा कारण रहा है। दूसरी चीज़ कि हर वो व्यक्ति अपनी जांच नहीं कराता है जो कि जानता है कि मैं एचआईवी हो सकता हूँ,
1: जी

0: तो अभी जो हम देखते हैं जो आइसबर्ग के नीचे डूबा हुआ है, केवल टिप दिखाई पड़ती है, समुद्र से ऊपर केवल टिप तैर रही है, अभी अभी हम देख रहे हैं उसको। अगर जांच कराई जाए तभी तो इसकी संख्या बहुत बढ़ सकती है, क्योंकि इसी में लोग न जांच कराते नहीं हैं, अनभिज्ञ होकर किसी भी रोग से मर जाते हैं, पता नहीं चलता कि एचआईवी थे भी कि नहीं थे अपने, और जाने से पहले कईयों को पॉजिटिव कर चुके होते हैं।
1: इस
0: तो
1: बीमारी को डॉक्टर साहब पता चलने में क्या लंबा वक्त लगता है?
0: नहीं
1: बहुत
0: नहीं ये तो बिल्कुल 2 घंटे 4 घंटे मालूम पड़
1: नहीं,
0: जाती
1: अगर
0: है।
1: आप एफेक्टेड हो गए आज तो कहते हैं कि एचआईवी वायरस बहुत दिनों में
0: नहीं,
1: पता चल पाता है।
0: जो ही बॉडी के अंदर एचआईवी जाता है शरीर में उसके खिलाफ प्रतिक्रिया शुरू होती है, तो कुछ टेस्ट तो ऐसे हैं जो कि हफ्ते भर के अंदर में ही पॉजिटिव आ जाते हैं, पर प्रायः वो टेस्ट बड़े महंगे होते हैं, सरकार नहीं कर पाती है, तो जो टेस्ट हम लोग करते हैं कार्ड टेस्ट या एलाइजा करते हैं, ये 1.5 महीने पे अक्सर पॉजिटिव आ जाता है।
1: अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस संबंध में?
0: एचआईवी के विरुद्ध बनने वाली वैक्सीन निश्चित रूप से भविष्य के लिए एक वरदान के स्वरूप होगी, परंतु वैक्सीन के इंतजार में वह सभी बंधु जो एचआईवी से पीड़ित हैं अपनी दवाएं नियमित रूप से लेना न छोड़ें। मेरी यही आप लोगों से आज के लिए संदेश भी है और विनम्र निवेदन भी है, अपनी दवाओं को नियमित रूप से लें, जब वैक्सीन आएगी तो निश्चित रूप से आपके लिए वो एक बहुत सुनहरा अवसर होगा।
1: डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अमिताभ उपाध्याय से मोहम्मद शमीम की विशेष भेंट वार्ता, एड्स के टीके का भविष्य। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर। तू शायर है,
1: मैं तेरी शायरी। समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है,
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: गीत जो कह जाते हैं कहानी, कार्यक्रम बोलते नगमे की जबानी।
1: तुम इतने दिन थी कहाँ, मैं ढूंढता ही रहा।
0: कहाँ?
1: कभी लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड, कभी कैडल रोड, कभी पेडल।
2: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग।
1: पहली बार हुआ।
0: सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
2: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म हम दोनों के गाने से। इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। गीत के बोल लिखे हैं साहिल लुधियानवी ने और धुन बनाई जयदेव ने।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म पुष्पांजलि से। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आवाज मुकेश की है।

धरती कहे पुकार के। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। मजरूह के बोलों को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो आइए सुनते हैं फिल्म धरती कहे पुकार के का ये प्यारा सा गीत।

0: इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
1: एहसास की धूप छाँव में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

0: नमस्कार श्रोताओं, श्रोताओं जिंदगी बहुत खूबसूरत, प्यारी, सुनहरी है ना। और पता है, ये जिंदगी और गरिमामयी बन जाती है जब हमें अपनों का साथ हर मोड़ पर मिलता है। जी हाँ, जब एक पिता उसका बच्चा छोटा होता है, या यूं कह लें जब एक व्यक्ति पिता बनता है, एक महिला माँ बनती है, तो कहीं ना कहीं उसके ये दिमाग जहन में होता है कि उसका बच्चा बड़ा होगा, जैसे वो अपने बच्चे को हाथ पकड़ के चला रहा है, चला रही है। शायद ये अपेक्षा स्वतः ही आ जाती है कि जब उम्र होगी तो यही बच्चा दो वक्त की रोटी दे देगा, और हाँ, दिल के कोने में वही प्यार होगा जो आज मैं दे रहा हूँ, मैं दे रही हूँ। कितनी अच्छी जिंदगी बन पड़ती है ना। लेकिन कई बार दिल में हम ऐसे रोष भर लेते हैं कि ये जिंदगी बड़ी भारी लगने लगती है, और फिर हम अपने ही माता पिता से बड़ी रुखाई से पेश आते हैं, और उन्हें बड़ा दर्द भी होता है, माता पिता भी नहीं समझ पाते कि क्या करें और बच्चे भी नहीं। इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ कानून बनाए गए, प्रावधान किए गए कि भाई आपको इस तरह से जिंदगी हम सभी को जरूर जीनी है। जी हाँ, माता पिता, खासकर बुजुर्ग माता पिता का ध्यान रखने के लिए सिटीजनशिप एक्ट 2007 में बना, फिर 2019 में कुछ संशोधन होता है। आखिर इसके प्रावधान क्या हैं? इसी पर खास बातचीत के लिए आज हमारे साथ बड़े ही मशहूर एडवोकेट धीरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका धीरेन्द्र जी।
1: धन्यवाद नेहा जी।
0: धीरेन्द्र जी, हमारे सुनने वालों, जो हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं श्रोतागण, उन्हें बताएं कि आखिर क्या वजह पड़ी 2007 में कि सिटीजनशिप एक्ट बनाना पड़ा?
1: जी, इस एक्ट में प्रावधान इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि पहले के बच्चे जो थे, बहुत सारे बच्चे अपने बुजुर्ग को ध्यान नहीं करते थे, अपने माता पिता का ध्यान नहीं करते थे, तो उनको मजबूरन कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट में जाके अपील करनी पड़ी कि हमको इसका गुजारा भत्ता के लिए हमको अपने बच्चों से खर्चा दिलाया जाए। इसके लिए एक एक्ट 2007 में धारा सीआरपीसी एक्ट के अंतर्गत धारा 125 बनाई गई, जिसके अंतर्गत ये प्रावधान है, अगर किसी सीनियर सिटीजन ने अपनी संपत्ति चल अचल दोनों से कैश या घर जायदाद अपने बच्चों के नाम की है, और इस शर्त के साथ कि उनका जो वारिस होगा वो उनकी देखभाल करेगा, उनकी जरूरतें पूरी करेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, तो ये बात कोर्ट में साबित हो जाती है। कोर्ट में वो अपील करता है और उसके अंतर्गत वो फिर भरण पोषण के लिए कोर्ट उनको एक निर्धारित राशि देती है कि इनको हर मंथ इतनी राशि बच्चों के द्वारा अपने माता पिता को दिया जाए।
0: आपने वारिस शब्द का जिक्र किया जी। कई बार माता पिता अगर ये फर्ज कर लें कि अभी अपनी वसीयत नहीं किया है उन्होंने, ये संभावना बनती है कि बच्चे को मिलेगा और अभी संपत्ति उन्हीं के नाम पर है, और बेटा, बहू, दामाद या कोई भी उनका ख्याल नहीं रख रहा है, तो क्या इस संदर्भ में भी, इस स्थिति में भी वो अपने बच्चों से गुजारा भत्ता की मांग कर सकते हैं?
1: जी, कई बार ऐसे मामले देखने में आते हैं कि जहां लोग अपने घर के बुजुर्गों को कहीं बाहर छोड़ आते हैं क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, लेकिन भारत का कानून इस मामले में बुजुर्गों को बहुत सारे अधिकार देता है। अगर आपने जो प्रश्न किया कि वारिस अगर वो
0: वसीयत अभी उन्हीं के नाम पर, माता पिता के नाम पर,
1: माता पिता के नाम है, उस पे एक कोर्ट का प्राविधान है जिसको वसीयत बोलते हैं, विल। वो विल अगर किसी बच्चे के नाम, मान लीजिए दो बच्चे हैं, किसी के नाम करते हैं, तो वो विल जो है उनकी लाइफ टाइम में जारी नहीं होती। विल आफ्टर डेथ, यानी मृत के पश्चात ही विल कारगर होती है। जब उनकी मृत हो जाएगी माता पिता की, तभी विल वो जिस बच्चे के नाम करेंगे वही बच्चा उनकी देखभाल करता है।
0: धीरेन्द्र जी, कई बार ये देखने में आया है कि जब माता पिता जीवित हैं और उन्होंने अपनी वसीयत कर दी, आप विल शब्द का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर,
1: वसीयत हिंदी में बोल सकते हैं,
0: तो उन्होंने नाम पर कर दी अपने बच्चों के, तो बच्चों को ये लगा कि भाई अब तो ये जमीन चल अचल संपत्ति हमारी हो गई है, अब तो माता पिता का कोई काम रहा नहीं, तब वो आप जैसे कह रहे हैं कि समाज में कई बुजुर्ग आप राह चलते देखे जा सकते हैं, तो इस संदर्भ में अगर माता पिता को बच्चों ने निकाल दिया है तो क्या कर सकते हैं, कहां जाएं?
1: कानून उसमें यही कहता है कि वो उनकी मृत के पश्चात ही लाई करेगी,

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कानून और हम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अधिवक्ता धीरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव की वार्ता, सीनियर सिटीजन एक्ट के प्रावधान।

0: जो भी वसीयत है वो उनकी लाइफ टाइम में उनकी वसीयत का कोई महत्व नहीं।
1: इसका मतलब वो धौंस नहीं दे सकते।
0: हाँ, वो धौंस नहीं दे सकते। वो अगर वो लास्ट तक चाहें, अगर बुजुर्ग माता पिता, तो अपनी वसीयत को चेंज कर सकते, वो अपने बच्चों को ना देके। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे समाज में हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति अपने बच्चों को ना देकर किसी और को दे दी, किसी संस्था को दे दी, किसी अनाथालय को दे दी, किसी ऐसी जगह पे दान कर दी, अपने बच्चों को नहीं दी लेकिन दे दी। अगर ऐसी कंडीशन में उनको पूरा अधिकार होता है कि वो इस तरह का निर्णय ले सके।
1: ये तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है और शायद कई लोग नहीं जान रहे होंगे इस बात को कि विल करने के बाद भी उसमें परिवर्तन किया जा सकता है।
0: जी, जी, जी।
1: अब अगर माता पिता चाहते हैं कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है
0: जी।
1: तो वो कहाँ जाएं? कोई तो ऐसा दरवाजा होगा जहां पे वो अपनी बात रखें कि भाई मुझे दिक्कत है, मुझे रहने के लिए जगह नहीं है या खाने के लिए दो रोटी नहीं मिल रही, कहाँ जाएं वो?
0: एक इसके लिए एक अलग से अभी एक कोर्ट बनाई गई है जिसको पारिवारिक न्यायालय कहते हैं
1: जी। ये पारिवारिक न्यायालय कहाँ होता है?
0: पारिवारिक न्यायालय जिला न्यायालय के अंतर्गत होता है
1: जी।
0: इसमें अलग से जज बैठाए जाते हैं जो सिर्फ पारिवारिक न्यायालय का ही देख, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो पारिवारिक डिस्प्यूट्स होते हैं उसी पे वो काम करते हैं। जैसे कि सेक्शन 13 होता है हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत जिसमें तलाक के मुकदमे चलते हैं
1: जी। अब धीरेन जी, आप कह रहे हैं कि पारिवारिक न्यायालय होता है, उसमें कोई भी बुजुर्ग जा करके अपनी बात रख सकते हैं
0: जी।
1: और ये जिला न्यायालय के अंतर्गत आता है। अब मान लीजिए धीरेन्द्र जी कि वो व्यक्ति जिला न्यायालय से काफी दूर, दूसरे शहर, दूसरे कहीं दूर गांव में रहते हैं, तो वो अपनी बात कैसे वहां तक पहुंचा सकते हैं कि वो किस दिन आए कि उनकी सुनवाई हो जाए? कोई तरीका है क्या?
0: जी, इसके लिए तो जिला न्यायालय ही एक, हर जिले में एक जिला न्यायालय बनाई गई है। अगर वो किसी तहसील में रहते हैं और वो अगर किसी ब्लॉक्स में रहते हैं, उस कंडीशन में वहाँ एक तहसील में एक SDM बैठते हैं
1: जी,
0: उप जिलाधिकारी जिनको बोलते हैं, उनके पास भी जाके ये अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। लेकिन जो मुकदमे होते हैं वो जिला न्यायालय में ही होंगे, इसके लिए अलग से कोई कोर्ट और नहीं बनाई गई, वो केवल जिले में ही होता है, जिले में जो प्रधान न्यायालय होता है।
1: कोई टोल फ्री नंबर भी होता होगा जहां से इन्फॉर्मेशन ली जा सकती? कोई ऐसा हो कोर्ट का जिसे कोई बुजुर्ग जो बहुत परेशान हो, उनको समझ में नहीं आ रहा हो कि किस दिन आए, क्या लेकर के आए, किस तरह के कागज लेकर के आए, साथ में कितना समय लेकर के आए?
0: जी, कुछ प्राविधान ऐसे बनाए गए हैं, कुछ टोल फ्री नंबर बनाए गए हैं जो कि महिला समाज के हैं, कुछ पुरुष समाज के हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो इस टाइप की काम कर रही हैं, इस तरह का काम कर रही हैं, जो ऐसे बुजुर्गों को ढूंढती हैं जिनका कोई नहीं है या जिनके पास मुकदमा लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं, जिनको कोई कानूनी सहायता नहीं मिल रही है। ऐसी कंडीशन में वो ऐसे लोगों को ढूंढ के उनके लिए उनकी तरफ से वो संस्था पैरवी कर उनके लिए।
1: यानी कि थोड़ा सजग होने की जरूरत है। अगर आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो बहुत परेशान ना हो, थोड़ा धैर्य रखें और उपयुक्त नंबर तलाशें, उपयुक्त पता को भी पता करें कि हम कहाँ अपनी बात रख सकते हैं।
0: जी, जी, जी।
1: अब अगर वो दंपति, वो बुजुर्ग लोग पारिवारिक न्यायालय में पहुंच जाते हैं जो धारा 125 आप बता रहे हैं उसके तहत सुनवाई होगी, तो कितना गुजारा भत्ता मिल सकता है बच्चों से उन्हें?
0: जी जी,
1: अमाउंट
0: बहुत अच्छा प्रश्न किया नेहा जी आपने। ये देखिए, एक प्राविधान हमारे यहाँ बना हुआ है पारिवारिक न्यायालय के अंतर्गत कि वैसे तो अभी संशोधन होने के लिए गया हुआ है लेकिन संशोधन होके अभी आया नहीं है। अभी यह है कि अगर किसी वजह से तलाक हो जाता है पत्नी का या भरण पोषण माता पिता, वो कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि कितना धनराशि वो उनको
1: सौंपती है, आदेशित करती है,
0: सैंक्शन कर सकती है कितना।
1: यानी इसका सीधा संबंध क्या जीवन स्तर से जुड़ा हुआ है?
0: जी जी,
1: कि
0: जी,
1: हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है, बच्चे कितना कमाते हैं तो उस हिसाब से ही अपनी आय में से देंगे।
0: उनकी सरकारी पे जो होती है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि नहीं देते, तो कोर्ट ये भी आदेश कर देती है कि उनकी पे में से जो उनकी तनख्वाह है जो उनको सरकार से प्राप्त होती है किसी भी पोस्ट में या प्राइवेट जॉब में कहीं भी है, वो उस कंडीशन में उनकी पे में से भी इतनी धनराशि काट के उनके माता पिता को सीधे उनके खाते में पहुंचा
1: दीजिए। अब धीरेन्द्र जी, पारिवारिक न्यायालय में ये तय हो चुका है कि भाई अमुक धनराशि एकमुश्त माता पिता को हर महीने बच्चों के जरिए या बिटिया के जरिए जानी ही जानी है।
0: जी,
1: लेकिन बच्चों ने एक महीने दो महीने कोर्ट की बात मानी, अब वो बात नहीं।

0: नहीं मानते,
1: जी
0: कहते कि जाओ जी जो करना है कर लो,
1: जी, नहीं,
0: उसके बाद क्या होगा?
1: जी ऐसी कंडीशन नहीं है उसमें। जो है हमारे यहाँ अलग से प्राविधान है, समन भेजा जाता है, वारंट भेजा जाता है, पुलिस के जरिए वारंट जाता है, पुलिस उनके घर जाके उनको गिरफ्तार कर सकती है। इसके लिए ये अलग से एक प्राविधान है, वो ऐसा नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो उसके लिए अलग से एक कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट हमारे यहाँ बना हुआ है, जिसके अंतर्गत वो माता पिता जाकर उनसे ये अपील कर सकते हैं कि ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। उसके लिए उनको सजा का भी प्रावधान है।
0: अरे सजा भी मिल सकती है,
1: जी सजा
0: अब
1: मिल सकती
0: कितनी अधिकतम सजा हो सकती है
1: जी,
0: उनको?
1: इसमें 2 वर्ष की सजा उनको निर्धारित की गई है कि
0: हाँ
1: 2 वर्ष तक उनको सजा दी जा
0: हाँ
1: सकती है।
0: शुरुआत में 3 महीने की सजा
1: शुरुआत में
0: होगी,
1: 3 महीने की होती है उनकी,
0: होती
1: मैक्स
0: है।
1: अधिकतम 2 वर्ष की और शुरुआत 3 महीने की।
0: जी, अब बुजुर्ग लोगों के लिए कुछ केयर होम्स भी बनाए गए हैं
1: जी
0: इस
1: जी
0: धारा के तहत
1: जी
0: जो जिक्र किया गया है, तो ये केयर होम्स कहाँ होते हैं और जो इसमें किस किस तरह की सुविधाएं मिल जाती हैं अगर जो माता पिता हैं उनके बच्चे नहीं रहे किसी कारणवश, मिस हैपनिंग, अनहोनी होती है
1: जी
0: जिंदगी
1: जी
0: में,
1: जी जी
0: फिर क्या किया जाएगा उस
1: जी
0: संदर्भ
1: जी
0: में?
1: जी ऐसे कंडीशन में हमारे यहाँ बहुत, हर जिले में, हर बड़े सिटी में जितने मेट्रोपोलियन सिटी होते हैं या हर जिले में कहीं ना कहीं हर संस्था द्वारा एक वृद्धाश्रम जरूर बनाया गया है। उस
0: जी
1: वृद्धाश्रम में उनको विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, जिसमें अलग से उनका इलाज किया जाता है, उनको रखा जाता है और उनको सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
0: जी धीरेन्द्र जी, ये बात घर में ही हो जाए
1: जी
0: समझौता
1: जी
0: कि माँ बाप अच्छे से रहें और बच्चे भी बढ़िया से रहें,
1: जी
0: माँ बाप बच्चों को सहयोग करें और बच्चे माँ बाप का संबल बने, आप
1: जी
0: क्या कहेंगे?
1: नहीं, बहुत अच्छी बात है। आजकल के बच्चों को ये सोचना चाहिए कि जब वो छोटे थे तो उनकी माँ बाप ने उनकी किस तरह से देखभाल की,
0: जी
1: तो उसी तरह से वो आज बुजुर्ग हो गए हैं, तो बच्चों को चाहिए कि उसी तरह से वो देखभाल करें जिस तरह वो छोटे थे तब उनके माता पिता ने उनकी देखभाल की थी, और आज वो बुजुर्ग हो गए हैं तो हमको उसी तरह उनकी देखभाल करनी चाहिए। हर बच्चे को अपना ये कर्तव्य समझना चाहिए कि वो इसको उसी तरह से अपने माँ बाप का ख्याल रखें, तो कोर्ट की और न्यायालय की ऐसी दशा ही ना आए
0: बिल्कुल
1: कि जी
0: जी,
1: जी
0: धीरेन्द्र जी आप स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सुनने वाले श्रोताओं को दी, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
1: धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, ये बात ध्यान रखें कि माँ बाप की भी आंखों में वैसे ही सपने हैं, बस शायद वो आपको धुंधले नजर आते हैं लेकिन सपने हैं, तो क्यों ना अपने सपने को उनके सपने को एक साथ लेकर के चलें और जिंदगी को सुरमई और सुंदर बनाते हैं। नमस्कार।
2: कानून और हम, आज इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अधिवक्ता धीरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव से नेहा गुप्ता की बातचीत। विषय था सीनियर सिटीजन एक्ट के प्रावधान। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर।
3: एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्स और 100.3 FM आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

0: हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गॉर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गॉर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
2: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
1: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
2: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
1: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
2: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और

0: शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
1: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्वभर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को
2: हो कि अब विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट न हो और आगे बड़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे में अमरीकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमरीका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमरीका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
3: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
1: इस बीच सरकार ने YouTube के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नाशिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: एक्सपेंसेस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo. Agreed to elevate bilateral ties in green strategic partnership focusing on clean energy and blue economy. Prime Minister Modi awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by King Harald V. Government targets $1 trillion exports this year. Union Minister Jitendra Singh holds talks with US industry delegation on nuclear energy and private investment opportunities in India. West Bengal government sets up 2 inquiry commissions to probe corruption and atrocities against women. And amid extreme heat conditions, Ministry of Ayush issues advisory to prevent heat-related illnesses. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi's first ever visit to Norway has seen a substantial outcome, with both the countries declaring the upgradation of India-Norway relation to green strategic partnership. In a joint statement today, after delegation-level talks with counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo, Prime Minister Modi highlighted that this partnership will ensure increased collaboration in sectors ranging from clean energy to climate resilience, blue economy to green shipping.
4: आज हम भारत-नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी।
3: Prime Minister Modi said the India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement serves as a blueprint for shared progress and prosperity.
4: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में 100

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। नमस्कार आदाब दोस्तों, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम कहकशा में आप सभी श्रोताओं का दिल की गहराइयों से स्वागत है। रात की खामोशियों में जब एहसासों की धीमी धीमी आहट सुनाई देती है, जब यादों की खुशबू हवाओं में घुलने लगती है और जब दिल अपनी अनकही बातों को शब्दों का सहारा देना चाहता है, तब जन्म लेती है गजल। गजल यानी जज्बातों की वो नर्म बारिश जो कभी मोहब्बत बनकर बरसती है, कभी तन्हाई बनकर दिल में उतर आती है और कभी जिंदगी की सच्चाइयों को बेहद खूबसूरती से बयान कर जाती है। तो आज के इस खूबसूरत कार्यक्रम कहकशा में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। अपने दिल के दरवाजे खोल के बैठिए दोस्तों, एहसासों के दीप जला लीजिए और शामिल हो जाइए इस सुरमई महफिल में, जहाँ हर लफ्ज़ में मोहब्बत है, हर धुन में अपनापन और हर गज़ल में ज़िंदगी की कोई ना कोई कहानी छिपी है। शुरुआत करते हैं एक बेहद खूबसूरत शेर के साथ। दिल में उतर के देखिए एहसास की तरह, दिल में उतर के देखिए एहसास की तरह, ये गज़लें बोलती हैं किसी खास की तरह।

बहुत खूबसूरत एहसास थे इस गज़ल में। गज़ल की सबसे बड़ी खूबी यही होती है दोस्तों, ये कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाती है। कभी ये किसी की याद बन जाती है तो कभी किसी की उम्मीद। दोस्तों, मोहब्बत अगर दिल की ज़ुबान है तो गज़ल उसकी सबसे हसीन आवाज़ है। एक शेर अर्ज़ है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। इन्हीं एहसासों को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं अगली गज़ल।

रंजिश ही सही दिल को दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। दोस्तों, गज़लें हमें सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि महसूस होती हैं। ज़िंदगी भी एक गज़ल की तरह है जिसमें कभी खुशी के शेर होते हैं, कभी गम के मिसरे और कभी उम्मीद की रदीफ। और वक्त है अगली पेशकश का। उम्मीद है ये गज़ल भी आपके दिल को छू जाएगी।

श्रोताओं, गज़ल सिर्फ संगीत नहीं बल्कि अदब की वो खूबसूरत विरासत है जिसने सदियों से इंसानी जज्बातों को संजो कर रखा है। कभी इश्क तो कभी इंतज़ार, कभी शिकायत तो कभी दुआ, हर एहसास गज़ल में अपनी जगह बना ही लेता है। तो दोस्तों, ये महफिल अब अपने खूबसूरत पड़ाव की ओर बढ़ रही है, लेकिन गज़लों का सफ़र तो कभी ख़त्म होता ही नहीं। ये वो एहसास है जो वक्त के साथ और भी गहरा होता जाता है। कभी किसी की मुस्कान में, कभी किसी की याद में और कभी किसी की खामोशी में गज़लें यूं ही जन्म लेती रहती हैं और जन्म लेती रहेंगी। कौन कहता है मोहब्बत की ज़ुबां होती है, कौन कहता है मोहब्बत की ज़ुबां होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है।

अभी आप सुन रहे थे गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म मृत्युदाता का गीत, अलका याग्निक, विनोद राठौर और मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे थे समीर ने, धुन बनाई थी आनंद मिलिंद ने। अगला गीत हमने लिया है फिल्म सीआईडी से, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और शमशाद बेगम की। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है ओपी नैयर ने।

अब आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी को फिल्म बचपन में। रचना आनंद बख्शी की है, संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत आज इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए संगीता शंकर का वायलिन वादन। आपको हम सुनवा रहे हैं वायलिन पर राग।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे संगीता शंकर का वायलिन पर बजाया राग पूरिया। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। शिक्षा व्यक्ति में आत्मविश्वास भरती है, कठिन से कठिन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए खुद शिक्षित बनिए, औरों को भी साक्षर बनाइए। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री

0: यूनुस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में 2 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक शर्मा ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।